और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

0: Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: गर्मी जो सिर्फ मौसम नहीं, एक पूरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की इस कहानी में हम सिर्फ गर्मी की बात नहीं करेंगे, आज के एपिसोड में हम उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इंडियन समर ही दे सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, दोपहर के 2 बजे हैं, सड़क ऑलमोस्ट खाली, धूप इतनी तेज कि लगता है हवा भी गर्म हो गई है, और इस गर्मी के बीच अचानक एक आवाज, टन टन टन। कुर्सी वाले की घंटी समर का एक एंथम होता है, बस ये आवाज ही होती है जो बचपन में दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। जैसे ही घंटी बजती है, घर के अंदर से रॉकेट स्पीड से बच्चे बाहर निकलते हैं। माँ कुल्फी चाहिए, कुल्फी वाला आ गया, और मम्मी अपनी इटर्नल डायलॉग के साथ रेडी। रोज रोज नहीं मिलती कुल्फी, और हम पर मम्मी आज स्पेशल है, कल से नहीं मांगूंगी पक्का, और ये डायलॉग हम रोज बोलते हैं। फिर बार्गेनिंग शुरू होती है, एक ही ले लो भैया, छोटी वाली देना, और फाइनली हाथ में एक ठंडी जमी हुई कुल्फी, उसका पहला बाइट और वो इंस्टेंट ठंडक दिल के भी नीचे उतरती है। लगता है जैसे पूरी गर्मी उसी कुल्फी में डिसॉल्व हो गई हो। सच बताओ, आप कौन सी कैटेगरी के थे? ऑरेंज वाली स्टिक आइसक्रीम, मलाई कुल्फी, या वो रॉकेट वाली जो गिरते गिरते बचती थी? समर का सुपरस्टार। अब बात करते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स आम की। गर्मी का मतलब ही होता था घर में आम की पेटी आना, और मम्मी का स्ट्रिक्ट रूल, गेस्ट के लिए है, पर हम ऑलरेडी 2 आम वॉशरूम में छुपके खा चुके थे, और वो आम का रस स्टील के बड़े भगोने में पूरी फैमिली के साथ, कोई रोटी के साथ खा रहा है, कोई पूरी के साथ खा रहा है, और कोई डायरेक्ट सिप्स ले रहा है, और लास्ट में हाथ पे चिपका रस और उसे चुप चुप के लिक करना। उफ, क्या दिन थे। और जब हीट लेवल्स एक्सट्रीम हो जाते थे, तब एंट्री होती थी आम पन्ना की, कच्चे आम का आम पन्ना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, एक सिप लो तो लगता है पूरी बॉडी रिबूट हो गई हो, मम्मी प्राउडली बोलती, ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, और हम, ये तो लाइफ स्ट्रोक से बचाता है मम्मी। कूलर वर्सेस गर्मी की अल्टीमेट बैटल। पहले एसी नहीं था घर में, पर कूलर, कूलर हीरो था। कूलर के सामने बैठ जाओ और लगता था नेचर ने पर्सनली हवा भेजी है, और उसकी आवाज, कूलर के फैन में मुंह डाल के खड़े होना और अपनी ही आवाज को घर से सुनना, याद आया? वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा बजता है कानों में, जो बिना प्लेलिस्ट के चल रहा होता है पूरे समर्स में, और जब पानी खत्म हो जाता है तो सडनली हवा का तंदूर मोड ऑन, फिर घर में एक ही आवाज, पानी डालो कूलर में, लाइट चली गई। और समर का सबसे आइकॉनिक ट्विस्ट,
0: बिजली का जाना, फैन बंद, कूलर बंद, सब बंद। और मम्मी का सोल्यूशन, हाथ से पंखा चलाओ। और हम, ये कौन सा जिम है भाई? टेरेस वाली चांदनी रात। और फिर रात को टेरेस पे सोने के प्लान्स, छत पे बिस्तर, ऊपर तारों भरा आसमान, एक सफेद चादर और दूर कहीं से रेडियो की आवाज, हल्की हल्की ठंडी हवा। और मम्मी, मम्मी कहती, मच्छर का कॉइल जला दो। हम स्टार्स काउंट करते रहते थे, कॉन्स्टिलेशंस बनाते रहते थे, और कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता। कभी बीच रात उठ के आसमान देखना, ऐसा लगता था मानो दुनिया रुक सी गई। कहाँ गए वो दिन, दिल सच में ढूंढता है फुर्सत की वो रात दिन। अब आते हैं गोले वाले के कलर थेरेपी पे। जी हाँ, गोले वाले भैया, बर्फ का गोला, ऊपर से कलरफुल सिरप्स। और वो पूछता, कौन सा फ्लेवर दीदी? हम झट से बोलते, भैया फुल मिक्स बना दो या फिर काला खट्टा। रिजल्ट होता एक रेनबो गोला, और टंग भी उसके साथ साथ रेनबो हो जाती। समर का एक फनी ट्रूथ होता है दोस्तों, गर्मी में तीन चीजें पक्की होती हैं, आइसक्रीम का गिरना, बिजली जाना और मम्मी का गुस्सा। और जब कोई गेस्ट आ जाता था तो मम्मी की पहली लाइन, आम उन्हें दो। और हम अंदर से कुड़कुड़ाते रहते थे, दोस्तों गर्मी सिर्फ टेम्परेचर नहीं होती, एक इमोशन होती है। वो कुल्फी की घंटी, वो आम की मिठास, वो कूलर की ठंडी हवा, वो टेरेस की रात, सब कुछ सिंपल था पर दिल को इतना खुश कर देता था जैसे चांद छू लिया हो। आज की गर्मी वर्सेस कल की गर्मी, आज एसी ऑन है, फूड डिलीवरी है, पर वो टन टन की एक्साइटमेंट, वो बिना वजह वाली हंसी शायद थोड़ी कम हो गई है। तो इस समय थोड़ा स्लो हो जाएं, थोड़ा फील करें, एक कुल्फी जरूर खाएं, आम का रस हाथ से खाएं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फोन साइलेंट पे हो या ना हो, दिमाग कभी कभी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। कोई कुछ बोल रहा होता है और अंदर से आवाज आती है, प्रोसेसिंग।

नव ग्रहों की एक सभा 2.0, जब ग्रहों ने इंसानों की कंप्लेंट मीटिंग बुलाई। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक कॉस्मिक ड्रामा है जहां 9 ग्रह मिलके इंसानों की आदतें डिस्कस कर रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, सोचिए अंधेरा नहीं, रोशनी भी नहीं, एक अजीब सा शिमरिंग स्पेस जहां हवा नहीं पर एनर्जीज चल रही हैं। यही है नवग्रहों की सभा। आज वहां इमरजेंसी मीटिंग है और एजेंडा। अर्थ के लोग हमें हर चीज के लिए ब्लेम क्यों करते हैं? एंट्री नंबर 1, सूर्यदेव, सीईओ ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले इन्हीं की एंट्री होती है, हमारे प्यारे सूर्यदेव की ब्राइट एंट्री, इतनी ब्राइटनेस कि बाकी सबको सनग्लासेस चाहिए। मीटिंग टाइम पे स्टार्ट होगी, सब अंडर ब्रेथ, सर थोड़ा डिम मोड पे आ जाऊं ना, बट सूर्यदेव तो सूर्यदेव हैं। एंट्री नंबर 2, चंद्रदेव, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। चंद्रदेव आते हैं सॉफ्ट से ग्लो के साथ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? सूर्यदेव कहते हैं ये थेरेपी सेशन नहीं है चंद्र। एंट्री नंबर 3, मंगलदेव, एंग्री यंग ग्रह, हमारे सिपाही। मंगलदेव की एंट्री आती है और फुल एनर्जी मोड ऑन हो जाता है। किसने कंप्लेन किया बताओ, बताओ किसने कंप्लेन किया? बुधदेव कहते हैं बीच में, भाई पहले सुन तो ले। एंट्री नंबर 4 इन्हीं की है, हमारे बुध देव यानी मर्क्यूरी, डेटा एनालिस्ट ऑफ द कॉस्मोस। बुध देव टैबलेट लेकर आते हैं और कहते हैं स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग और बाकी सब इंग्लिश बंद करो बुध देव, ये हिंदी कॉन्फ्रेंस है। एंट्री नंबर 5, सबके फेवरेट, सबसे प्यारे, सबसे बड़े गुरुजी, गुरुदेव मोड ऑन, बृहस्पति। बृहस्पति देव काम ले आते हैं और कहते हैं हर प्रॉब्लम की एक सीख होती है। मंगलदेव इंटरप्ट करते हैं, आप हर जगह ज्ञान क्यों देते हो? एंट्री नंबर 6, शुक्र, स्टाइल और रोमांस की किंग। शुक्रदेव की एंट्री परफ्यूम की खुशबू के साथ। लाइफ में थोड़ा ग्लैमर भी जरूरी है, शनि साइड आए देता है। एंट्री नंबर 7, शनि देव, न्याय के देवता। सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, शनि देव आते हैं स्लो और इंटेंस, सब सीधा होके बैठ जाते हैं। कौन ब्लेम कर रहा था मुझे जरा बताना, बाकी सब हम नहीं, हमने तो बिल्कुल नहीं। एंट्री नंबर 8, राहु, मास्टर ऑफ इल्यूजन। राहु की एंट्री थोड़ी मिस्टीरियस म्यूजिक के साथ होती है, मैं तो बस इल्यूजन्स क्रिएट करता हूं। इस पे बुधदेव कहते हैं एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एंट्री नंबर 9, केतु, डिटैच्ड बाबा। केतु देव आते हैं थोड़ी से लॉस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, और बाकी सब फिर आए क्यों भाई। सीन नंबर 2, अर्थ की कंप्लेंट्स की एक प्रेजेंटेशन शुरू होती है। बुध स्क्रीन ऑन करता है और स्लाइड नंबर 1, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, फोन टूट गया, बाकी सब व्हाट। स्लाइड नंबर 2, शनि इक्वल्स टू जॉब नहीं मिली। शनि बोलते हैं रेज्यूम देखा है अपना। स्लाइड नंबर 3, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इक्वल्स टू राहु। राहु कहते हैं रेड फ्लैग, इग्नोर किसने नहीं किया। सीन नंबर 3, सारा क्योस शुरू हो जाता है। मंगल कहते हैं मैं तो सिर्फ एनर्जी देता हूँ, चंद्र कहते हैं मैं सिर्फ इमोशंस बढ़ाता हूँ, और शुक्र कहते हैं मैं तो प्यार ही प्यार देता हूँ। शनि फिर कहते हैं मैं सिर्फ टेस्ट लेता हूँ, और सब एक साथ
गलती हमारी कहाँ है? सीन नंबर 4, ट्रूथ बाहर आता है। तब बृहस्पति कामली बोलते हैं, हम रास्ता दिखाते हैं पर चलना इंसान को होता है। चंद्र कहते हैं, मैं मूड बनाता हूँ, डिसीजंस उनके होते हैं। और बुध कहते हैं, मैं कम्युनिकेशन देता हूँ, बोल क्या रहे हैं वो तो उनकी चॉइसेस हैं।

इंसान। अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की, और इसमें शनिदेव कैसे पीछे रह जाए। वो एकदम से खड़े होते हैं और बोलते हैं, डिसीजन सुनाया जाता है, हम इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल नहीं। ब्लेम बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सूर्यदेव बोलते हैं, हम आसमान में हैं, पर जिंदगी उन्हीं के हाथ में है। सब ग्रह धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं और एक आवाज गूंजती है, अपनी कहानी खुद लिखो। दोस्तों, प्लैनेट्स आपको सिर्फ गाइड करते हैं, पर आपको डिफाइन नहीं करते। आपकी मेहनत, आपकी चॉइसेस, आपका एटीट्यूड, वही आपकी डेस्टिनी बनाता है। सच सच बताओ, आपने लास्ट बार कब किसी ग्रह को ब्लेम किया था? मैं हूं आपकी दोस्त, और आप सुन रहे थे एक प्यारी ग्रहों की कहानी। स्टार्स को देखिए, इंस्पिरेशन लीजिए, पर स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में रखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: चार्जिंग पे जिंदगी। फोन चार्ज पे लगाओ तो लगता है कंट्रोल में हो। खुद की लाइफ चार्ज पे लगाने का ऑप्शन होता तो सब लाइन में खड़े होते।

स्नैक्सीडेंट एपिसोड, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें इंश्योरेंस भी काम नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आज का वर्ड ऑफ द डे है स्नैक्सीडेंट। नाम सुनते ही लगता है ना ये कोई नया क्राइम है या कोई फूड स्कैंडल, पर नहीं, स्नैक्सीडेंट एक ऐसी लाइफ सिचुएशन है जिसमें आप बिल्कुल इनोसेंट होते हो, ट्रस्ट मी, पर एविडेंस सब आपके खिलाफ होता है। डेफिनेशन थोड़ी फिल्मी है। स्नैक्सीडेंट का मतलब होता है जब आप कहते हो बस थोड़ा सा खाऊंगा और 10 मिनट बाद पैकेट खुद आपको देख के कहता है भाई मैं तो खत्म हो गया, और आप शॉक में चले जाते हो, ये किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ, और घर में सिर्फ आप होते हो। बस एक बाइट से शुरू होती है ये स्नैक्सीडेंट की कहानी। हर स्नैक्सीडेंट एक इनोसेंट शुरुआत होता है। शाम का टाइम, आप थोड़े से बोर्ड, टीवी या फोन चल रहा है और आपका दिमाग बोलता है थोड़ा स्नैक हो जाए। आप फ्रिज खोलते हो, स्नैक निकालते हो और खुद से प्रॉमिस करते हो सिर्फ 2 बाइट्स। ये वही प्रॉमिस है जो कभी पूरा नहीं होता फ्रेंड्स। स्नैक की कैरेक्टर एंट्री अब जरा इमेजिन करो। स्नैक्स भी अगर इंसान होते, चिप्स का पैकेट बोलता आओ आओ मैं क्रंची हूं, चॉकलेट बोलती मैं तो मेल्ट हो जाऊंगी जल्दी खा लो, और बिस्किट्स बोलते हम तो चाय के बिना इनकम्प्लीट है, और आप इमोशनली मैनिपुलेटेड हो जाते। द ब्लैक होल इफेक्ट। स्नैक्सीडेंट एक ब्लैक होल जैसा होता है, जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। चिप्स, पॉपकॉर्न, नमकीन सब गायब, और आप सोच रहे होते हो मैं तो बस थोड़ा सा खा के रहने वाला था। चॉकलेट वाली ट्रेजेडी। चॉकलेट के साथ स्नैक्सीडेंट अलग ही लेवल का होता है दोस्तों। आप एक पीस तोड़ते हो, फिर सोचते हो ये तो अनइवन हो गया, थोड़ी सी और खा लेता हूँ। फिर आप बैलेंस करते हो और बैलेंस करने के लिए एक और पीस, और फिर एक और, और फिर एक और एंड में पूरी चॉकलेट गायब सिर्फ रैपर हाथ में। और आपका लॉजिक ये रहता है शायद सिमेट्री के लिए जरूरी था ना। मिडनाइट स्नैक्सीडेंट हॉरर स्टोरी, इससे ज्यादा डरावनी कोई स्टोरी नहीं है, ट्रस्ट मी। रात के 1 बजे सब सो रहे हैं और आपको आवाज आती है किचन से। आप जाते हो, लाइट्स ऑन करते हो और फ्रिज के अंदर स्नैक्स आपको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। आप बोलते हो बस पानी पीने के लिए आया हूँ, और 15 मिनट बाद सारी प्लेट साफ। डाइट प्लान का मर्डर, ब्रूटल मर्डर। सुबह उठते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, बस अब डाइट स्टार्ट ही करने वाला हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट, सैलेड, डिटॉक्स वाटर, और रात को स्नैक्सीडेंट का फिर से अटैक होता है। डाइट प्लान का RIP, प्रॉपर रेस्ट इन पीस। एक इल्यूजन है दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ स्नैक करना एक मिथ है, सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और रियलिटी एक बंदा सब खा जाता है और बाकी लोग हम तो सिर्फ देखते ही रह गए। पिज्जा स्नैक्सीडेंट, डेंजरस लेवल है ये। पिज्जा ऑर्डर करो, प्लान करते हैं 2 स्लाइसेस ही खाएंगे, और फिर ये लास्ट स्लाइस ही तो है, और फिर अब एक ही तो बचा है, वेस्ट नहीं कर सकते, आखिर हम इंडिया में रहते हैं, और एंड में पूरा पिज्जा फिनिश। पैकेट का बिगेस्ट स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम क्या है जानते हैं? फैमिली पैक। ये फैमिली के लिए नहीं होता, एक इंसान के लिए चैलेंज पैक होता है, और जब खत्म होता है आप कहते हो ये इतना छोटा कब हो गया। स्नैक्सीडेंट का डीप मीनिंग दोस्तों, स्नैक्सीडेंट सिर्फ फूड नहीं है,
ये लाइफ का एक पैटर्न है। हम कहते हैं बस 5 मिनट स्क्रॉल और 2 घंटे निकल जाते हैं इंस्टाग्राम पे, पता भी नहीं पड़ता। बस एक एपिसोड और रातों रात पूरी सीरीज खत्म। बस थोड़ा सा और कंट्रोल चला जाता है सिस्टम के हाथ में। जिंदगी भी थोड़ी सी स्नैक्सीडेंट जैसी है दोस्तों, अगर कंट्रोल ना रखो तो छोटी चीजें भी ओवर हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्नैक्स छोड़ दो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। बस एंजॉय करो पर कॉन्शियस होके। सच बताओ, आपने अपना लास्ट एक्सीडेंट कब किया था और किसके साथ किया था? चिप्स के साथ, आइसक्रीम के साथ या फ्रिज का फुल ऑन रेड? दोस्तों आज का वर्ड याद रखिएगा, खैर याद तो रहेगा, रोज होता जो है। स्नैक्सीडेंट जब स्नैक खुद नहीं खाता आपसे खुलवा लेता है, और अगली बार जब आप बोलो बस एक बाइट तो याद रखना ये कहानी पहले भी शुरू हो चुकी है। मैं हूँ आपकी दोस्त, खुश रहिए, हंसते रहिए और स्नैक्स एंजॉय करते रहिए, पर थोड़ा कंट्रोल और कॉन्शियसनेस के साथ, वरना स्नैक्सीडेंट FIR लिखवा देगा। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मीटिंग में सिर्फ हाँ बोलने वाला। मीटिंग में एक बंदा होता है जो सिर्फ सर हिलाता है, हाँ हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और बाद में पूछता है, मीटिंग किस बारे में थी?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी द्वारा रचित कहानियों पर आधारित गीतों की श्रृंखला कथा गीत।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम आग की कहानी।
1: ना भैया, मुझे माचिस नहीं जलाने दे रहा।
2: भैया ठीक ही कह रहा है बिटिया, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें माचिस नहीं जलानी चाहिए।
1: लेकिन दादी माँ, मुझको तो जलानी है।
2: क्या करोगी माचिस जलाकर?
1: मैं भी माँ की तरह चूल्हा जलाऊंगी, रोटी सब्जी बनाऊंगी। नहीं तो दादी माँ
2: नहीं तो क्या?
1: नहीं तो मेरे गुड्डे गुड़िया को कच्ची रोटी और कच्ची सब्जी ही खानी पड़ेगी दादी।
2: वाह बेटिया वाह, खूब जानती है आग का उपयोग।
1: ओ दादी माँ, लाइट चली गई।
2: हाँ बेटी, लाइट तो गई।
1: भैया लाइट चली गई।
3: अरे चिल्लाओ मत, मैं अभी माँ से मोमबत्ती लेकर आता हूँ।
1: हाँ लाओ जल्दी। ओ दादी माँ, आप किधर गई?
2: डरो मत मुन्नी, मैं भी यही हूँ, लेकिन अंधेरे में तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ। ये लो, भैया भी मोमबत्ती लेकर आ गया।
1: दादी माँ लाइट चली गई तो हमने फौरन मोमबत्ती जला ली,
3: और माँ ने भी रसोई घर में लालटेन जला ली।
1: ये माचिस तो बड़े काम की चीज है।
2: उस वक्त की सोचो जब दिया सलाई या लाइटर नहीं होते थे, आग जलाना कितना मुश्किल काम था।
1: अच्छा दादी माँ, क्या पहले मनुष्य को आग जलाना नहीं आता था? तो फिर वो खाना कैसे बनाता था?
2: बेटा बहुत पुरानी बात है, जब मनुष्य ने आग जलाना नहीं सीखा था, वो कंदमूल कच्चे ही खाता था।
1: अच्छा?
2: यहाँ तक कि आदि मानव कच्चा मांस ही खाता था।
3: फिर आग की खोज कैसे हुई दादी माँ?
2: बेटा आग तो प्रकृति में पहले से ही थी, हमने आग की खोज नहीं की, बल्कि प्राकृतिक वस्तुओं से ही आग जलाना सीखा। देखो ऐसा माना जाता है कि विशेष चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी निकली, और फिर आग जलाना मनुष्य ने अचानक ही सीख लिया।
1: चकमक पत्थर से?
2: हाँ बेटी, उन दिनों सूखे तिनकों और पत्तों को इकट्ठा करके पत्थर या सूखी लकड़ी को रगड़कर चिंगारी पैदा की जाती थी। सुनो आग की कहानी पर ये कविता।

0: कच्चा मांस खाता था?
1: हाँ, क्योंकि उसे आग जलाना आता ही नहीं था। पत्थर से पत्थर को रगड़ा, सूखे पत्तों ने आग को पकड़ा।

0: हड्डी से हड्डी टकराना सीख लिया था आग जलाना।
1: कहानी सुनकर मजा आ गया।
2: वाह वाह दादी माँ, क्या कहानी सुनाई है। दादी माँ, दो हड्डियों को रगड़ने से आग क्यों निकलती है?
3: बेटा, क्योंकि हड्डियों में फास्फोरस होता है।
1: सूखी लकड़ियों को रगड़ने से भी आग जल जाती है ना दादी माँ?
2: लो, ये छोटी दादी भी पूछेगी सवाल।
1: देखो ना दादी माँ, भैया मुझे चिढ़ा रहा है।
3: अरे भैया, आपस में झगड़ा मत करो, मैं समझाती हूँ। तुम अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ो और देखो क्या होता है।
1: दादी माँ, हथेलियों को रगड़ने से तो गर्माहट आ रही है।
3: हाँ, रगड़ने के कारण ही तो ऐसा होता है। इसी रगड़ के कारण ही पत्थर से पत्थर या लकड़ी से लकड़ी टकराने पर आग निकलती है।
2: लेकिन दादी माँ, इन सभी प्राचीन तरीकों से आग जलाना तो बहुत मुश्किल होता होगा ना?
3: हाँ बेटा, इसीलिए जब आदि मानव एक बार आग जला लेते थे तो उसमें सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ डालकर मनुष्य उसे जलाए रखता था।
1: यानी कि वो आग को बुझने ही नहीं देता था।
3: हाँ, क्योंकि आग जलाकर वो गुफा में रोशनी कर सकता था।
2: आग से जानवर भी तो डरते थे ना दादी माँ?
3: हाँ, इस तरह जंगली जानवरों से उनकी रक्षा भी हो जाती थी।
2: दादी माँ, आग तो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: हाँ हाँ दादी माँ, आग के बिना तो जीवन बहुत कठिन रहा होगा।
3: हाँ बच्चों, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।

आ की कहानी। अभी आप सुन रही थी एक कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख बलजीत कौर, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार कुक्कू माथुर, बाल कलाकार उज्जवल और श्रेया, संगीतकार हरभजन सिंह, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और दीपा, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है अनुभवों की विरासत और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं ऐसे व्यक्तित्वों से जिनका जीवन केवल वर्षों का नहीं, अनुभवों का खजाना है।

0: साहित्य की भावनाओं से जुड़ा रहा। वे न केवल एक सफल बैंक अधिकारी रहे बल्कि हिंदी साहित्य के प्रेमी, सामाजिक रूप से सक्रिय नागरिक और अपने 95 वर्षीय पिता के समर्पित पुत्र भी हैं। उनकी कलम सामाजिक पाखंडों को बेनकाब करती है और उनके शब्द समाज के आईने में हमें अपना असली चेहरा दिखाते हैं। आज के इस विशेष संवाद में हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा, उनके साहित्यिक विचार, उनके सामाजिक दृष्टिकोण और वह दर्शन जिसने उन्हें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखा है। तो आइए स्वागत करें डीएन शर्मा जी का और चले उनके साथ एक आत्मीय सफर पर अनुभवों की विरासत के इस प्रेरक संवाद में। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आपके पिछली जिंदगी से। आपने अपना एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग की दुनिया में बिताया, एक अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित यानी टारगेट ओरिएंटेड जीवन। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस यात्रा को कैसे देखते हैं?
1: जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 36 वर्ष 8 माह की मैंने बैंकिंग की सेवा की है। पंजाब नेशनल बैंक में कार्य किया और बैंक ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं बिहार, गुजरात, हरियाणा आदि आदि कई राज्यों में मेरी पोस्टिंग रही, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना हुआ, वहाँ की संस्कृति को देखा, निकट से जाना। बिहार एक बहुत ज़्यादा प्रचारित स्टेट है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने निवास किया, वहाँ रहा, तो ये पाया कि वहाँ के लोग उतने ही सीधे और सरल हैं। बहुत ही अच्छा लगा, हालांकि वो बात बहुत पुरानी हो गई, 90 में हम वहाँ से वापस आ गए। इसके साथ ही बैंकिंग जीवन में जो लक्ष्य थे वो बैंक में थे, बाहरी जीवन में हम ग्राहक सेवा और एक टीम वर्क, ये दो भावनाएं मुझे वहां से सीखने को मिली। आप एक अच्छी टीम के साथ जब चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, और टीम बनाना आपके हाथ में, टीम के हर सदस्य का ख्याल रखना, तो अच्छी टीम का निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु। तो ग्राहक सेवा एक ऐसी सेवा है जो ना सिर्फ बैंक का नाम रोशन करती है, वरन एक जो कहते ना कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है, ये संघ का एक मूल वाक्य है। तो नारायण सेवा यानी कि भगवान की सेवा, आप किसी अत्यंत कष्ट में जो आदमी है उसकी अगर अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं तो वो ग्राहक सेवा बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है, और वो हमने की है। कई बार ऐसा हुआ, एक बार एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। राजकोट में मेरी पोस्टिंग थी, रात 11 बजे मुझे फोन आया कि साहब आपका एटीएम काम नहीं कर रहा। मैंने कहा आप जी? तो बोला मैं अपने पिताजी को शहर वहां गांव से लेके आया हूँ और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, एटीएम काम नहीं कर रहा और मुझे पैसे चाहिए। मैं तुरंत एटीएम पे गया, पास में ज्यादा 1.5 किलोमीटर था राजकोट में जहां मैं रहता था, वहां उसकी परेशानी को समझा और सौभाग्यवश उस समय मेरे पास, मैंने कहा कितना पैसा चाहिए? कि साहब 5,000 चाहिए, आप चाहे तो मेरा ये कार्ड रख लें, मैं सुबह आके बैंक में आपको दे दूंगा पैसे। सौभाग्य से 5,000 रुपए, हम लोग बैंकर पैसे ज्यादा रखते नहीं है, लेकिन उस दिन किसी उस दिन किसी कारण से मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा उसको मैंने वही पैसा दिया, क्योंकि वो बोला अब रात में मैं कहाँ जाऊं साहब, मैं तो इसी विश्वास पे आया था कि एटीएम से पैसे मिल जाएंगे, तो मुझे वो विश्वास उसका बरकरार रखना था। पैसे दिए, दूसरे दिन आके वो मुझे दे गया, बात आई गई हुई। लेकिन उस समय विशेष में अगर उसकी मैं हेल्प कर सका तो ये मेरे लिए अवसर था।
0: संतोष मिला आपको? संतोष मिला आपको? बिल्कुल सही,
1: बहुत ज्यादा। हाँ
0: चलिए,

0: चलिए तो फिर थोड़ा सा और किसी तरफ रुख करते हैं।
1: जी
0: आपकी साहित्यिक रुचि के बारे में मैंने बहुत सुना है, क्या साहित्य की रुचि आपकी नौकरी के साथ साथ रही या सेवानिवृत्ति के बाद उसे गहराई से जीने का अवसर मिला है?
1: साहित्य से लगाव तो शुरू से ही रहा। बचपन में जब हिंदी में भी हमारे सिलेबस में गद्य और पद्य दोनों ही हुआ करते थे, तो बहुत सारे ऐसे गद्यों की पद्यों की मैंने ऐसे कंठस्थ हो गए जिन्हें मैं जोर जोर से बोल करके सुनाता था।
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: दिनकर साहब का रश्मि रथी है,
0: हाँ, अच्छा, रश्मि रथी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: अरे साहब वो बहुत, उसको भी मैंने बहुत गा गा करके भी सुनाया है।
0: अरे वाह, अरे
1: और
0: वाह, अच्छा।
1: हाँ, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही को शीशे खा लेंगे, परिजन परसी न उठाएंगे।
0: वाह, अभी सुनेंगे कभी। वाह, बहुत
1: पर
0: बढ़िया।
1: दुर्योधन वो भी दे न सका शीश समाज की लेने, बहुत लंबी है तो उसके ये 2-3 लाइनें थी। बाद में जब किशोरावस्था आई तो उस जमाने की जो पत्रिकाएं थी उनमें साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी,
0: हाँ,
1: सारिका,
0: धर्मयुग, धर्मयुग।
1: धर्मयुग, ये अब बंद हो गई हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इन्होंने ये साहित्य से ही जुड़ी सारी पत्रिकाएं
0: पत्रिका
1: थी।
0: पर, बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और इनके जो विशेषांक आते थे किसी न किसी एक राइटर, किसी एक लेखक के जीव जी
0: जी
1: को
0: जी
1: लेकर, तो उन
0: जी
1: लेखकों
0: बिल्कुल।
1: से भी मेरा वो हुआ। मुंशी प्रेमचंद हो, निराला जी हो, दिनकर जी हो, मनु
0: दिनकर
1: भंडारी
0: जी,
1: हो,
0: मन मंडा रहो, वृंदावन
1: फणीश्वरनाथ रेड हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, दिन हाँ मोहन
0: लाल
1: राठौर,
0: वर्मा, वृंदावन लाल
1: मोहनलाल
0: वर्मा,
1: कालू,
0: बहुत
1: मोहन
0: बढ़िया।
1: राठौर, और हिंदी गजलों के सर्जक दुष्यंत कुमार, तो मैंने सारिका से
0: अच्छा
1: ही उनके यहाँ
0: अच्छा
1: एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हाँ,
0: तैयार हो, कौन
1: कौन
0: कहता है आसमान में
1: कहता
0: सुराख हो नहीं
1: हो
0: सा।
1: नहीं
0: बिल्कुल
1: सकता। और
0: बिल्कुल
1: दूसरा कि
0: बिल्कुल।
1: हंगामा, सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं
0: रही
1: है,
0: मेरी
1: ये हालात
0: सूरत
1: या बदलने
0: बदलने चाहिए, बिल्कुल
1: चाहिए था वो। तो ये
0: बिल्कुल।
1: काफी इन्होंने जीवन में ये बातें अभी भी दिमाग में कौर की है। हाँ, और
0: आपकी इतनी सी बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी है। क्या बढ़िया
1: एक
0: बढ़िया पुरानी बातें, और वो हिंदी गद्य पद्य संग्रह आपने याद दिला दिया बचपन का, और
1: जी हाँ
0: कादम्बिनी, ज्ञानोदय, और धर्मयुग, और साप्ताहिक हिंदुस्तान की याद दिला दी।
1: जी
0: वाह, मजा
1: जी जी
0: आ
1: कहा।
0: गया।
1: तो
0: चलिए,
1: वहां ना मानव जब
0: वाह,
1: जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है दिनकर जी
0: दिनकर जी
1: का
0: का, दिनकर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत
1: ही है।
0: बढ़िया।
1: ये ऐसी लाइन है, अमिट है, ये हमेशा रहेगी जीवन जी, मानना सीख पे
0: बिल्कुल।
1: मैं है माँ जो

0: आपको हिंदी साहित्य से तो विशेष लगाव है ही है। कौन से विशेष लेखक, हालांकि आपने दो तीन लेखकों अभी नाम दे दिया, या कवि जो आपके मन पे सबसे गहरी छाप छोड़ गए हैं, कौन है
1: हाँ,
0: ऐसा?
1: एक तो ये पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, जो पुष्प की अभिलाषा बहुत
0: पुष्पी
1: ही,
0: अभिलाष। हाँ हाँ
1: चाह नहीं मैं फूलों में गूथा
0: हाँ
1: जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ा शीश पर हरी के इठलाऊं, है ना,
0: इठलाऊं इठलाऊं,
1: लास्ट में ना, कि मुझे तोड़ लेना बनवा लिए
0: छोड़
1: उस
0: देना
1: पद पर, उस
0: उस पद
1: पद
0: पर।
1: पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर रहे।
0: वीर ने बहुत बहुत
1: ये बहुत अच्छी लाइनें थी जो अभी तक भी देश सेवा के लिए प्रेरित करती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया।
1: कहानियों में वो ईद का
0: अब आपने रश्मि रति की बात की थी,
1: जी,
0: आप चलिए कोई ऐसी रचना या कविता या पंक्ति जिसने आपके जीवन दर्शन को बदल दिया हो उसके बारे में कुछ बताएं, अगर उसको सुनाना चाहें थोड़ा सा ब्रीफ में, तो आपका स्वागत है।
1: कविता मैं तो अपनी वो मेरी खुद की बताई हुई है, लेकिन वो अभी सुनाता हूँ। हाँ,
0: जी, सुनाइए सुनाइए
1: तो
0: सुनाइए।
1: सुनाता हूँ, अभी बन पाई है, आज समय अभाव में ऐसा कम मिलता है, लेकिन
0: जी
1: है कि भीतर जज्बात गड़े हुए,
0: अच्छा
1: भीतर जज्बात गड़े हुए, बाहर मुखौटे चढ़े हुए,
0: ओहो ओहो
1: सच की कीमत गिरती रोज, झूठ के सिक्के गड़े हुए,
0: वाह अच्छा।
1: नैतिकता के गीत सुनाए, नैतिकता के गीत सुनाए, खुद लाभ के राह बनाए, जन सेवा के वचन बड़े पर कर्म स्वार्थ में लिपट जाए, और लास्ट है कि दिखावे के छंद रचे, दिखावे के छंद रचे, असली मूल्य तो कहीं गुम, सामाजिक मंच पर नाटक चलता, अंतःकरण में मूक है हम।
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब ये सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारा चीजें बदल गई हैं, धर्मयुग और ये सब चीजें तो पुरानी हो गई है। आप ये
1: बंद
0: बताइए, इसके आज के डिजिटल युग में आप हिंदी साहित्य की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या ये पिछड़ रहा है या नए रूप में उभर रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: पिछड़ तो नहीं रहा, स्वरूप बदल गया। पहले
0: अच्छा
1: जो पहले प्रिंट मीडिया था, आज डिजिटल मीडिया है। प्रिंट
0: बिल्कुल
1: मीडिया में जब कहानियां, उपन्यास या कुछ भी सृजन होता था, लिखा जाता था, तो थोड़े ही हाथों में जाता था, थोड़ी ही आंखें उन्हें पढ़ पाती थी, पर
0: अच्छा
1: आज हर हाथ में मोबाइल, और सोशल
0: बिल्कुल
1: मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसपे आपकी कही हुई बात तुरंत सब जगह फैल जाती, तो वास्तविक रूप से तो जनमानस, जो हमारा जो माइंड सेट है, उसको प्रभावित करने का ये सोशल मीडिया है। यही तो है सर, पहले भी साहित्य यही करता था, पहले का साहित्य घटनाओं का, घटनाएं घटने के बाद उनका वर्णन करता था, क्योंकि
0: जी
1: फिक्शन तो एक अलग चीज थी, वो
0: हाँ
1: पिक्चर और उसमें वो अलग मीडिया है, लेकिन
0: ठीक
1: प्रिंट
0: है हाँ
1: मीडिया में मैं जब बात करता हूं, तो जो फिक्शन
0: हाँ
1: वाला, जब घटनाएं घट जाती है उसके ऊपर उसका विवेचन होता था।
0: ओके ओके
1: आज तो दृश्य मात्र सब कुछ आपके सामने होता है,
0: हाँ
1: लोग
0: हाँ हाँ
1: लोग हाथों हाथ उसके वीडियो भी बना देते, ये भी तो सत्यता आज बिल्कुल लोगों को जानने को मिल रही है, हर चीज उनके सामने है, तो उसके बाद वो अपने निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि माइंड सेट वैसा ही बनता है। तो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, और जो साहित्य, यानी कि साहित्य नहीं रचा जा रहा, साहित्य भी है, लेकिन जो बातें पुरानी है, इतिहास, इतिहास का भी हमें पहले जितना बताया गया था उतना ही मालूम है, लेकिन
0: जी
1: आज लोग उसको कुरेद कुरेद के, कुरेद कुरेद के सारे प्रस्ताव के सामने ला रहे, तो बहुत अच्छा भविष्य है। एक स्वरूप बदल गया, जागरूकता बढ़ गई, ये मैं मानता हूं।
0: नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ट्विटर पे घटना घटती नहीं है, कोई स्टेटमेंट देता नहीं है और उसके रिएक्शन से एकदम ट्विटर पे या फेसबुक पे और इन पे आने शुरू हो जाते हैं। और कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सीडेंट होते ही उसकी एकदम तुरंत खबर भी आ जाती
1: जाती
0: है और रिलीफ भी पहुंच जाती है, हर
1: है,
0: प्लस एंड
1: दोनों
0: माइनस दोनों रिलीफ भी
1: ही
0: पहुंचती
1: है।
0: है, देखे दोनों ही
1: और
0: बात है।
1: दूसरी बात है कि युवा जो है, जिसको अपन समझते हैं कि साहित्य में रुचि नहीं ले रहा, वो भी इसमें पूरा सक्रिय है ना, वो उसके
0: नहीं
1: पास
0: बहुत
1: पहले
0: सक्रिय
1: पहुंच
0: बिल्कुल
1: रहा, वो उसके पास पहले पहुंच रहा, वो उसकी प्रतिक्रिया पहले आ रही।
0: सही बात। अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल होने लग गए और काफी सफल हो गए और काफी युवाओं की भीड़ भी होती है वहां,
1: और
0: तो
1: बहुत अच्छी बात।
0: मतलब ठीक है, उसका अपना एक माइनस पॉइंट भी है, थोड़ा सा वहां कॉमर्शलाइजेशन है, लेकिन
1: हाँ
0: फिर भी
1: वो एक
0: चल ही
1: अलग
0: रहे हैं
1: बात।
0: वो
1: हाँ
0: अलग बात है।
1: और ये जयपुर डायलॉग अभी होगा 7-8 नवंबर, मैं 3 साल से जा रहा हूँ, ये तीसरी बार होगा मेरे को।
0: हाँ जयपुर डायलॉग आने वाला है, मैं भी जाऊंगा उसमें,
1: हाँ
0: सर
1: तो
0: संजय
1: जयपुर डायलॉग,
0: संजय
1: संजय
0: संजय
1: दीक्षित सब तो बहुत अच्छे,
0: दीक्षित
1: वहाँ सारे राष्ट्रवादी विचारकों के लोग आते हैं, उनसे
0: बिल्कुल
1: व्यक्तिगत आप मुलाकात करते हैं, उनसे सेल्फी खिंचवाते हैं, तो बड़ा आनंद आता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आऊंगा। और मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, वो संजय दीक्षित का बड़ा फैन है, वो भी आ रहा है अमेरिका से सिर्फ
1: अरे
0: इसके
1: हाँ
0: लिए आ रहा है, बोले कमाल है ना।
1: कमाल नहीं, मेरे अपने राजकोट मेरे साथ जो काम किए हैं व्यास जी महाराज, वो भी
0: जी
1: आ
0: अरे
1: रहे हैं, उन्होंने पहले
0: वाह
1: ही फोन
0: वाह,
1: कर दिया कि आप वही हैं, मैंने कहा हाँ, बोले मैं उसमें आ रहा
0: बहुत
1: हूँ सर, मैंने कहा आओ पधारो
0: बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: बराबर।

0: उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कनिया आ रे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया।
1: चलिए तो ये जो आपने कविता भी सुनाई इससे ये लगता है कि आप समाज की जो दोहरी मानसिकता है
2: हाँ जी
1: या पाखंड है या हाइपोक्रेसी है इसको ये आपको सबसे ज्यादा खटकती है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये क्यों हो रहा है और आपको ही क्यों ऐसा महसूस होता है कि हाइपोक्रेसी बहुत ज्यादा है हाइपोक्रेसी और पाखंड बहुत है हमारे समाज में डबल स्टैंडर्ड जिनको कहते हैं।
2: इसका मूल कारण जब मैं खोजता हूँ तो एक जो धारणा हम लोगों के मन में बिठाई कि पुण्य मिलेगा है ना एक आम धारणा बिठा देते ना ऐसा करने से पुण्य मिलेगा गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाएंगे ऐसा करने से यह होगा भाई मूल तो यह है कि वो पाप करे ही क्यों ताकि धोना पड़े दूसरा
1: अच्छा
2: पुण्य कमाना का आज मैं देखता हूँ अभी जा रहा था मेरे नाती को छोड़ने तो सड़क पर

0: तो पिता को जो
1: बिल्कुल बिल्कुल छोड़
0: सेवा करने का
1: देते
0: जो
1: हैं,
0: सुख है वो तो
1: वो
0: बिल्कुल।
1: नहीं मिल पा रहा है। हाँ
0: मैं किसी जमाने में बापूनगर में था तो बहुत सारे ऐसे लोग आया करते थे बैंक में,
1: हाँ
0: जो इस तरह से
1: हाँ
0: क्या कहें इसके बाद,
1: उसी को
0: बहुत।
1: देख के तो जैन साहब ने टाइम बैंक बनाया
0: हाँ, टाइम बैंक बनाया है हमारे पीसी जैन साहब ने, बिल्कुल सही
1: हाँ।
0: बात।
1: तो वो टाइम बैंक क्या है, आप समय दो बुजुर्गों
0: यही है,
1: को,
0: समय दो, जो लोग लोनली है उनको समय दो, यही बात है, बिल्कुल सही बात,
1: उनको समय ज्यादा चाहिए सर। वो आज की तारीख में हमारी माताश्री चली गई थी 2014 में, तो
0: जी
1: उसके बाद वो जो लोनलीनेस होता है ना एक, तो
0: हाँ।
1: वो
0: वाह,
1: भाव, वो उनकी बात सुनेगा कौन
0: कौन
1: वो।
0: सुनेगा, बिल्कुल
1: और दूसरी कोर्ट में कहा दिया है कि सुनते भी हैं, तो वो
0: हाँ
1: स्थितियां ऐसी है कि हम कोई बात कहे भी तो 2-3 बार में धीरे से कान के पास ले
0: हाँ
1: जाकर वो
0: क्या
1: समझाना पड़ता है। तो
0: सुन, समझाना पड़ता।
1: उनका जो वो, मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे ग्रैंड सन, मेरा जो पोता है उसकी
0: जी
1: हरकतें है और पिताश्री की हरकतें, वो मिलती
0: मिलती है, बिल्कुल, कहता है
1: जुलती
0: बचपन वापस आ जाता है, बिल्कुल
1: हाँ
0: सही
1: सर,
0: बात,
1: वही केयर उनको देते हैं, वही केयर इनको चाहिए, हमको भी तो मिली है सर।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये है मेरी भावना।
0: बहुत अच्छा।

0: आप सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं, किन
1: जी
0: सामाजिक मुद्दों या गतिविधियों से जुड़े हुए हैं शर्मा जी आप?
1: सामाजिक में तो देखो सर, मैं एक ही बात मेरे को ये समझ में आई कि सेवानिवृत्ति के बाद आप जब दैनिक कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, अब जाना नहीं है कहीं, ड्यूटी
0: जी
1: पे नहीं जाना है, तो आपके
0: जी
1: पास समय होता है, तो एक रिक्तता आ जाती है, अरे अब क्या करें। तो
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तब जुड़ा मैं संघ से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, और
0: आरएसएस से
1: उसमें
0: जुड़े। अच्छा,
1: नियमित है मेरा सुबह का 1.5 घंटा शाखा में जाना, और ये सब
0: अच्छा,
1: कर वहां की
0: ओके,
1: मूल
0: बिल्कुल
1: भावना है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, तो वो देश को दें या समाज को जो कुछ हम दे पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक और है, उसमें सेवा विभाग है, तो
0: अच्छा
1: सेवा विभाग में कुछ ऐसी बस्तियां होती है जहाँ क्लस्टर रूप में लोग रहते हैं, वो वंचित
0: अच्छा
1: हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित है, अभावग्रस्त है।
0: अच्छा
1: ऐसे लोगों की जो बस्तियां हैं, अभी जयपुर शहर में 223 के करीब ये ऐसी बस्तियां चिन्हित की हुई, वहां जाकर
0: अच्छा
1: के
0: अच्छा
1: जी,
0: जी
1: वहां पे बाल संस्कार केंद्र है, वहां 4 प्रकार के आयाम है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य चिकित्सा का है,

0: और स्वावलंबन का है, एक शिक्षा का है और स्वरोजगार का है। इनके
1: अच्छा
0: तहत इनके तहत हम उनको वो कार्य करवाते हैं। बाल
1: अच्छा
0: संस्कार में अब ऐसी ऐसी बस्तियां जहाँ वो सब पेरेंट्स तो निकल जाते हैं लेकिन बच्चे रहते हैं, वहां दो तीन 2 घंटे के लिए एक कोई शिक्षिका लगा के उनमें संस्कार जगाते हैं कि किस तरह उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ ये है। तो एक तो वो कार्य है। दूसरा अपना ये है ही सर, ये एसोसिएशन में भी अब पुराने साथी हैं, सब मिल करके देंगे
1: हाँ
0: आप
1: उसमें मिलते हैं मिलते हैं। वो तो है ही।
0: उसमें भी सचिव बना दिया मेरे को, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन में
1: जी,
0: जयपुर यूनिट का, तो उसका भी कार्य रहता ही है। अब आज
1: उसका
0: आज ही शाम को 4 बजे बैठक रखी है उसकी
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: त्रैमासिक
1: अच्छा चलिए बहुत बढ़िया।
0: ये है समाज में।

0: तो चलिए, अब मैं एक अंत में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
1: जी
0: सफलता और सुख की परिभाषा अब आपके लिए क्या है इस दौर में, और क्या
1: हाँ
0: ये आपके युवा दिनों से अलग है जब आपने पहले कुछ सोचा था और अब कुछ महसूस होता है? क्या कैसे परिभाषित करेंगे?
1: जैसे सर, सफलता हम तब मानते हैं कि जैसे आज आज की तारीख में मेरी सारे जवाबदारियां जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सभी बच्चे मेरे अच्छे अच्छे अपने कार्य कर रहे हैं, अपने अच्छी जगह है। मेरा बेटा अभी IBM में है, अच्छी पोजीशन पे है। एक बेटिया SBI में सीनियर मैनेजर है और एक बेटी लेक्चरर है वहाँ जोधपुर में। तो वो सब अपने अपने क्षेत्र
0: अपने
1: में
0: अपने
1: अच्छा,
0: सेटल
1: हाँ अच्छा कर रहे,
0: हो गए
1: तो वहां तक तो ठीक है। अब
0: सर।
1: आता है बात सफलता और सुख। तो सफलता तो यह है कि आपने सबको अच्छा किया है। अब सुख की परिभाषा मैं ये समझता हूं कि एक स्वस्थ शरीर और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये दोनों है तो हम सुख में हैं। हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे, सफलता या असफलता, हमारे अपने कर्मों पर ही तो आधारित है। हम उसे कितनी कुशलता से, कितने योग्यता से करेंगे, वही तो है। तो
0: बिल्कुल सही बात
1: और कृष्ण भगवान ने कहा भी, कर्म तो हर इंसान को करना ही है। कर्म तो आपको कर्मशील तो रहना ही है। तो कर्म जब करेंगे ही और उनका परिणाम भी मिलेगा ही, तो फिर अच्छे कार्य क्यों ना किए जाए। ये मेरा एक मूल सिद्धांत रहा है और मैं अपने जीवन से अभी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हाँ, युवावस्था में क्या अलग थी विचार। युवावस्था में तो एक छोटी छोटी बातों पे भी हम कुंठाग्रस्त हो जाते थे, और
0: हाँ
1: ये
0: सही
1: क्यों नहीं
0: बात
1: हुआ है।
0: है।
1: वो कुंठाएं
0: सही
1: आपको विचलित भी करती है।
0: बात।
1: उनपे अपन को कंट्रोल, अब तो खैर अध्यात्म भी थोड़ा बहुत अध्ययन करने को मिलता है, करता भी
0: जी
1: हूँ। तो
0: जी
1: वहां जो दर्शन है हमारा जीवन का, वो बिल्कुल अलग है। और ये क्योंकि वो अध्यात्म में तो संन्यास है और इधर कर्मयोग है, तो कर्मयोग जो अभी जो लोग कर्म में है उनको तो कर्म करते ही रहना और योग्यता
0: बहुत सही,
1: के साथ कर।
0: बहुत बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: जी
0: तो शर्मा जी, बहुत ही खूबसूरत सच्चा संवाद रहा आज का, और DN शर्मा जी ने हमें सिखाया कि जीवन की सफलता केवल कैरियर या पद में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, संवेदनाओं और रिश्तों को निभाने में है। इनकी यात्रा हमें एहसास कराती है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ते हैं और अनुभवों के साथ जीवन की गहराई। बैंकिंग की दुनिया से लेकर साहित्य के संसार तक और अब समाज के उत्थान के प्रयासों तक उनका हर कदम हमें प्रेरित करता है। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं शर्मा जी का, और आज हमारे साथ अपनी सोच और संवेदना और आज हमारे साथ अपनी सोच और संवेदनाओं को साझा करने आए हैं। श्रोताओं, याद रखिए, जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम कर्तव्य, करुणा और कर्म तीनों का संतुलन साध पाते हैं। इस प्रेरणा के साथ आज हम आज के कार्यक्रम के रंग अनुभवों की विरासत को यहीं विराम देते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं DN शर्मा जी का श्रोताओं की तरफ से, रेडियो स्टेशन की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमें मौका मिला तो हम शर्मा जी को फिर कभी कष्ट देंगे। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजी प्रवीण कुमार सोनी और आप है मेरे साथ रेडियो टंटेवी 90.8 एफएम झावा की आवाज पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बालिका एवं महिलाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम, नारी सम्मान अभिमन्यु अभियान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विकसित व सुरक्षित समाज का निर्माण महिला एवं पुरुषों की समान सहभागिता से ही किया जा सकता है। अतः महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि समाज में बालकों एवं पुरुषों को न केवल महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक किया जाए, बल्कि उन्हें संवेदनशील बनाकर पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित किया जाए। आज बच्चों एवं महिलाओं पर घटित अपराधों को देखते हुए अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेषकर पुरुषों को जागरूक करने हेतु पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अभिमन्यु अभियान। ये अभिमन्यु अभियान क्या है और ये क्यों चलाया जा रहा है, इस अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच हमारे आज के खास कार्यक्रम की मेहमान हैं महिला सुरक्षा शाखा की डीएसपी वर्षाजी सोलंकी। हम रेडियो टंटेवी 90.8 एफएम झावा की आवाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम। और जिस तरह से ये अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है और जिले में भी व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये अभियान क्या है हमारे श्रोताओं को आप विशेष रूप से बताने का कष्ट करें, जानें कि किस तरह से पुरुषों को विशेष रूप से जागरूक करने का ये अभियान है, तो ये क्या है।
5: जी नमस्कार, रेडियो टंटिया भी 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। यह अभियान अभिमन्यु जो है वो पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका यह द्वितीय चरण है जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से हम समाज में व्याप्त जो कुरीतियां होती है उसे एक चक्र के रूप में देखते हुए और उस चक्र को तोड़ने के लिए यह अभियान चला रहे हैं। जैसे नशा, अशिक्षा, दहेज प्रथा, लिंग भेद, अश्लीलता, असंवेदनशीलता आदि का जो दुष्चक्र है जो हमारे दिमाग में और हमारे समाज में बहुत गहराई तक व्याप्त है, उसे हमें तोड़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के पुरुषों एवं बालकों को जागरूक करना है ताकि वे अभिमन्यु बनकर इस दुष्चक्र को तोड़ सकें।
4: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ ये अभियान चल रहा है और हमें सभी को जागरूक करते हुए समाज में व्याप्त नशा, दहेज प्रथा, लिंग भेद, अशिक्षा आदि के दुष्चक्रों को तोड़ना ही होगा। साथ ही हमारा एक सवाल ये था कि पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो इस अभियान के तहत ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से सभी को जागरूक किया जा रहा है।
5: जी, इस अभियान के तहत हम मुख्य रूप से नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जो भीली भाषा अपने झाबुआ जिले को देखते हुए भीली भाषा में किए जा रहे हैं। प्रश्नावली पूछी जा रही है, समझाइश दी जा रही है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पोस्टर और बैनर के साथ में लोगों को लोकल भाषा में समझाइश दी जा रही है। साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को महिला सम्मान और समानता की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकला, प्रश्नावली, मैराथन रेस आदि भी करवाए जा रहे हैं।
4: जी, इसी अभियान के तहत विभिन्न माध्यमों से सभी को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने तथा समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित हो, इस हेतु यह महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह अभियान का दूसरा चरण है और इससे पूर्व इसका एक चरण पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है अभियान के प्रथम चरण में जागरूकता का कितना व्यापक असर दिखाई दे रहा है।
5: जी, ये अभियान का दूसरा चरण है। पहला चरण हमारा 12 जून से लेकर 19 जून तक चलाया गया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से गांव-गांव तक एवं फलियों तक जाकर जागरूकता का कार्य किया है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अब हम जब दूसरे चरण में जाके लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैडम, पहले भी पुलिस आई थी और हमें ऐसी चीजें बताई थी जिसे हमको समझ में आता है, लेकिन अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है कि एक बार सुनने से उसे कम समझ में और कम याद रहता है, वो दूसरी बार सुनता है और देखता है तो उसे ज्यादा समझ में आता है। और यह अभियान तब तक चलाया जाएगा जब तक कि समाज में व्याप्त कुरीतियां, समाज से दूर नहीं हो जाती है और नारी का सम्मान स्थापित नहीं हो जाता है।
4: जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। यकीनन ही जब तक समाज में व्याप्त कुरीतियां दूर नहीं हो जाती, तब तक हमें लगातार इसी तरह के अभियान चलाकर सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। नारी का सम्मान स्थापित होना चाहिए और यही बात हमारे धर्म शास्त्रों में भी देखने को मिलती है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त त्राफलाः क्रियाः। अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं, और जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, उन पर अत्याचार होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जी, तो ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा एक सवाल यह था कि पुलिस लगातार महिला सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है और पुलिस विभाग द्वारा इस हेतु लगातार विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आज महिलाएं एवं बालिकाएं अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूक हैं और पुलिस से किस प्रकार सहायता प्राप्त करती हैं?
5: हमारे जिले झाबुआ में आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा का स्तर कुछ हद तक नहीं, ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक कम ही है। तो जब हमें शिक्षा नहीं है तो हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, उनके बारे में हमें समझ नहीं होती है, तो उन्हें बताने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अगम जैन सर और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रेमलाल कुर्वे जी, उनके निर्देश अनुसार मैंने कई प्रकार के महिला सुरक्षा संबंधित अभियान चलाए हैं। मुझे लगता है कि जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। और जो महिलाएं या बालिकाएं हमसे किसी न किसी रूप में किसी अभियान में जुड़ी हैं, उनमें हमने ये देखा है कि वो पुलिस की सहायता कैसे ले सकती है या अपने अधिकारों को किस हद तक प्राप्त कर सकती है, उनमें धीरे धीरे समझ आ रही है, परंतु संभावनाएं अब भी है।

0: जी बहुत सुंदर। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ ही हमें जागरूक होना ही होगा, और जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा महिलाओं संबंधी अपराधों में कमी आएगी और उन पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगेगी। पुलिस लगातार इस कार्य में लगी हुई है और झाबुआ जिले में भी पुलिस कप्तान अगमजी जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे जी के निर्देश अनुसार महिला सुरक्षा संबंधी अभियान सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों सहित गांव गांव और फलिए फलिए जाकर सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यकीनन ही यह प्रयास सफल होगा और महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण होगा, इस पर अंकुश लगेगा और महिलाओं का सम्मान कायम होगा। तो कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए हम ये कहेंगे कि हमारे रेडियो टंटे भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज के जो श्रोता हैं, जो विशेष रूप से हमारे इस खास कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए और विशेष रूप से पुरुषों के लिए जो ये अभियान चल रहा है वे महिलाओं का सम्मान करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, मैं DSP वर्षा सोलंकी आपके रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के सभी श्रोताओं को, विशेष रूप से पुरुषों एवं बालकों को से यही कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा नारी का सम्मान करें, उन्हें समाज में समानता प्रदान करें और अभिमन्यु की भांति दुष्चक्र को अवश्य तोड़ें। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं से यह कहना चाहती हूं कि आप शिक्षित हो, आगे बढ़ें, और यदि आपको कोई भी परेशान करता है तो हमारे पास आए, झाबुआ पुलिस आपके लिए सदैव खड़ी है। धन्यवाद।
0: जी यकीनन बहुत ही सुंदर सुंदर और उपयोगी बातें आज आपने हमारे श्रोताओं को बताई कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम शिक्षित और जागरूक रहेंगे तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने सम्मान को कायम कर सकते हैं, सम्मान से रह सकते हैं। तो मैडम, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व अंत में सभी के लिए यह जानना चाहूंगा कि आपात स्थिति में जब पुलिस की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी में बालिकाएं या महिलाएं आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस सहायता का कोई विशेष नंबर भी हमारी माता एवं बहनों को आप अवश्य बताइए, जिनके माध्यम से वे पुलिस से संपर्क कर उनसे सहायता प्राप्त कर सकें।
1: जी, इसके लिए सबसे सरल और सहज नंबर है 100। डायल 100 करके आप तुरंत पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, महिलाओं से संबंधित जो हेल्पलाइन चलाई जा रही है उसका नंबर है 10981098। ये नंबर है, और इसके साथ ही हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है 7049140525। इसके साथ साथ में आपको कभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो आप सबसे पहले 100 नंबर लगा के पुलिस को तुरंत अपने पास बुला सकते हैं। जी धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी महिला सुरक्षा शाखा की DSP वर्षा जी सोलंकी, जिन्होंने आज हमारे सभी सम्मान्य श्रोताओं को पुलिस सहायता के विशेष नंबरों के साथ महिला सुरक्षा की कई उपयोगी बातें बताई कि किस प्रकार से वे पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकती हैं, किस प्रकार जागरूक और सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैडम, हमें अच्छा लगा कि आज आप हमारे बीच उपस्थित रहे और हमारे श्रोताओं को कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपने प्रदान की। हम रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। तो श्रोताओं, आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी सम्मान अभिमन्यु अभियान के माध्यम से आपने महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान पर कई विशेष बातों को जाना। हमें आशा है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही कई विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे आपके अपने पसंदीदा रेडियो रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर। तो मैं आपका दोस्त RJ प्रवीण कुमार सोनी आपसे विदा लेता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: नमस्कार साथियों,
4: मेरा भी नमस्कार।
3: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
4: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
3: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
4: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
3: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
4: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
3: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खांट जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
4: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
3: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
5: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो,
6: भारत माता की जय, भारत माता की जय।
3: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरे ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
4: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
3: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
4: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
3: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गाँव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
4: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
3: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
4: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
3: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
4: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
7: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
4: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
3: साहब ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
4: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
3: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
4: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
3: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
4: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
3: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
4: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
3: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
4: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
3: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
4: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
3: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
4: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
3: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
4: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
3: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
4: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
3: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया।
7: कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
4: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
7: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
4: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
7: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
8: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
9: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
10: ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं।
11: ये देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है, जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते। वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं है।
10: यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे।
11: प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। ये कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी।
10: एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदमकद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई, तो समाजी की तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने
12: लगी।
10: भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी।
11: नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए।
10: इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई।
12: अब वो बेनाम चित्रकार

0: बहुत प्रसिद्ध हो गया था।
1: जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते थे।
0: कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने अलावा, अपने कौशल के अलावा कुछ और नहीं सोचता।
1: यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं।
2: क्या बात है, वाह वाह है मेरी कला, क्या सुंदर चित्र बना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है। शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह, कितनी महान कला है मेरे अंदर।
0: जी हां साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से बातें करने लगता था।
2: आइए आइए, देखने आइए। क्यों नहीं, देखिए देखिए, है ना कमाल का चित्र।
1: बिल्कुल,
2: कितना सुंदर चित्र है ये। मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह, अथा सुंदर।
0: और सुबह जो भी उसे मिलता सबको यही बताता कि देखो मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया।
1: लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था। वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था।
0: एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा,
3: ये क्या हो गया, किसने किया है ये काम, किसने किया ये?
0: वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा,
3: किसने किया, किसने किया ये?
0: सब सहम गए थे। अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई,
4: मैंने किया है।
0: वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया, पीछे उसके गुरुजी खड़े थे।
2: गुरुजी, आप? क्या ये आपने किया है?
4: हाँ, मैंने किया है ये काम।
2: लेकिन क्यों?
4: इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो।
2: लेकिन गुरुजी, वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी, इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता।
4: नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके।
2: गुरुजी,
4: अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया

0: ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है।
1: जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए।
0: इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है।
1: यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है।
0: सीखते रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग।
1: यानी सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती।
2: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
4: साथ है तो संभव है।
5: ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थी जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
4: एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस, जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा,
6: क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे लता निकल रही है?
7: हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है?
8: ऐसे तो बहुत से पौधे निकलते रहते हैं।
9: ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
7: हाँ, बेकार ही ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं।
6: लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
8: अरे छोड़िए भी, हमारे पास बातें करने के लिए क्या अब यही बचा है?
7: हाँ, और कोई बात हो तो कहिए, वरना चुप रहिए।
9: मानते हैं कि आप हम सबसे बड़े हैं,
8: लेकिन हम भी कोई कम समझदार नहीं हैं।
7: हाँ।
5: सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की बात काट दी और उसका मजाक भी उड़ाया। खैर, दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई।
4: उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको

0: लाया और कहा,
1: साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है।
2: उसी विषय पर? अरे किस विषय पर?
1: उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था।
3: उफ़ हो, फिर वही बात। अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है।
2: हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है?
1: साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है।
2: ओहो,
1: ध्यान से देखो।
2: अरे देख तो रहे हैं।
1: वो लता पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुंच गई है।
4: बात आई गई हो गई, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी।
0: और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं।
5: ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी फंस जाएंगे।
0: बहेलिया उस मजबूत लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और अपना जाल बिछा दिया।
4: जाल बिछाकर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिये के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे, वे सब के सब उस जाल में फंस गए।
6: अरे कोई है, हमारी सहायता करो।
2: अरे हमें छुड़ाओ भाई, हमारी सहायता करो भाई।
1: अरे ये क्या हो गया?
2: फंस गए भाई,
6: हम सब जाल में फंस गए।
1: अरे ये कैसे हुआ? तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो ना? मैंने कहा था
2: ऐसे फंस गए हम।
1: अरे क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो?
0: वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा,
2: हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी।
6: काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता।
2: अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई उपाय बताइए।
1: शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब ने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो। कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा अभिनय करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं।
2: भला इससे क्या होगा?
1: कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा। जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा, इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे।
2: हाँ ये ठीक है,
6: उड़ जाएंगे हम सब।
4: और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहाँ आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुँचा। लेकिन ये क्या,
0: बहुत से पक्षी फंसे हुए थे, लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी। उसने जाल को हिलाया भी, लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा,
5: अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं? इन्हें नीचे फेंक देता हूँ, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ ऐसा ही करता हूँ।
4: तो इस तरह बहेलिये ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया। अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था।
0: जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया।
4: साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी
7: साथ है तो संभव है।
8: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
9: वो आखिरी पत्ता।
0: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
4: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
0: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
4: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
10: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
11: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
10: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
4: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
5: सू
10: जी,
5: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
10: जी हाँ।
5: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
10: जी डॉक्टर साहब।
5: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है।
10: मैं पूछती हूँ।
4: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
11: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने

0: चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
2: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
0: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
4: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
4: सू,
3: ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ,
3: हाँ,
4: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।

0: अब वो वहीं पर है अभी, वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ, हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: खुट, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
4: बेहतर। ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
1: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
0: ओ गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
5: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
0: ओह,
1: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
5: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपके रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
2: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी
3: है। और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की
2: बार
5: खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु हैं वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी। और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप रेडियो आपड़ी बातें।
7: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आप आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं, उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन, जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खासतौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए, उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे, और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है, तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
8: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है, और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
9: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहां पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है, और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं, तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं, जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहां पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सकें। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
8: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
10: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
8: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
9: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
8: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
7: रेडियो टांटिया वी 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं। सुनते रहिए रेडियो टांटिया वी 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
8: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
11: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
12: देखिए अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी, तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
8: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें आइए जानते हैं।
12: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अब जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो है वो खिला दें।
8: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
13: पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
2: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
8: हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
14: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने

अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा। उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाऊ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे

0: लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
1: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें एक बीघा में 7 किलो बीज डाला है और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में एक थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
0: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
1: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा, जिससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
0: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है, उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अभी से अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती के सारी में।
1: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
2: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है। फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचनाओं को बचाई जा सकते हैं।
1: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
2: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंग धरकीर की उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करे और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करे। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
1: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
3: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष अंक का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष अंक में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
4: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मित हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है। इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरू रेडियो आपड़ी बातें।
1: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
6: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाओं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं अगर इन कैटेगरीज में आते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
1: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
6: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
1: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं

0: को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
0: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों, प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है। हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
0: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी GI टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। नमस्कार।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर एक खास महफिल, आपका अपना शो जिंदगी के रंग गीतों के संग। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्ष को सिर्फ झेला नहीं बल्कि उसे एक नई पहचान दी और दूसरों के लिए रास्ता बना दिया। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी मेहमान जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब, ICF सर्टिफाइड लाइफ कोच और 10,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को टच कर चुकी हम बात कर रहे हैं मिस पूजा शर्मा की। तो चलिए शुरू करते हैं एक गहरी और दिल को छू लेने वाली बातचीत जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। मैं हूं आपकी आरजे, आपके तरानों की हमसफर तनुषा। तो पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ एंड इट्स माई ऑनर टू बी हेयर on this show today. Thank you so much.
1: It's an honor for us to host you, ma'am. Thank you so much for giving us your time and हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, ताकि हमारे श्रोता बहुत सारी बातचीत से बहुत सारी चीजें आज आपकी बातें सुनकर लेके जाएं और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि आप इतने अच्छे लाइफ कोच हैं।
2: Thank you so much.
1: हम शुरू करते हैं मैम। शुरुआत से आपने हमें बताया कि ऐसे फेजेस थे आपकी भी लाइफ में जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते थे, लो कॉन्फिडेंस था, वैलिडेशन इश्यूज थे, कंफ्यूजन्स थे, जो सबकी लाइफ में होते हैं। उस टाइम की जो पूजा शर्मा हैं, उनको अगर आप आज मिल पाए, क्योंकि जनरली हम लोग शुरुआत करते हैं बचपन से, बट आपकी शुरुआत हम थोड़ा अलग नोट पे कर रहे हैं क्योंकि आप हील करते हैं लोगों को, तो आज अगर आप अपने यंग वर्जन से मिलें, उस पूजा से मिलें जिसे हीलिंग की जरूरत थी, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उसे इंस्पायर करना चाहेंगे कि कोई बात नहीं, होता है, आगे बढ़ो?
2: हम सबकी, जैसे आपने कहा, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। पीछे पलट के देखें तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बट कुछ एक एक्सपीरियंसेस हमारे, क्योंकि हम एक ही कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो बहुत कॉमन होते हैं। बेसिक कंडीशनिंग, आज अगर मैं पीछे पलट के देखूं तो मुझे लगता है कि वो जो वैलिडेशन हम मांगते हैं, वो जो हमारे घर से स्टार्ट होता है। पहले वी आस्क फॉर दैट वैलिडेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, देन फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम आवर पीयर्स। वो वैलिडेशन की जो एक आदत बन जाती है ना, वो बहुत सालों बाद, आज आफ्टर सो मेनी ईयर्स, नाउ व्हेन आई रियलाइज दैट वन हैबिट इज समथिंग दैट आई वुड गो बैक टू द यंगर सेल्फ एंड से कि नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वैलिडेशन नहीं चाहिए, वो सेल्फ वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। सो दैट इज वन स्ट्रांग थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली, इफ गिवन अ चांस, आई वुड वॉन्ट टू गो बैक एंड रेक्टिफाई। एंड टू ऑल माई लिसनर्स ओवर हियर, टू एवरी वन, आई वुड डेफिनेटली से डोंट सीक आउट फॉर वैलिडेशन। कोई फायदा नहीं है।
1: हम जो फायदा नहीं है,
2: इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कितने लाइक्स आए, आज हर हर किसी को लगता है कितने फॉलोअर्स आए। आई थिंक हम डिफाइन ही उस तरीके से हो रहे हैं, हम डिफाइन ही हो रहे हैं कि कितने लाइक्स हैं, कितने लाइक्स क्यों आए, कितने व्यूअर्स हैं। आप एक अच्छा रेडियो जॉकी हैं, बहुत सारे लिसनर्स अलग अलग अपने अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये देख के कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं?
1: बिल्कुल
2: वो नहीं कर सकते, वो वैलिडेशन ही तो है, वो बचपन से हमारी जो आदत पड़ी है। तो यंगर सेल्फ, नो वैलिडेशन इज समथिंग दैट आई वुड स्ट्रांगली गो बैक एंड करेक्ट इट एंड स्टे टू माय यंगर सेल्फ आल्सो।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जरूरी है ये हमें समझना कि हम अगर अपने आप को जब मिरर में देखते हैं, तो अगर हम सही फील करें, हम फुल फील करें, हम कंप्लीट फील कर रहे हैं, तो दैट इज इनफ। हमें नहीं चाहिए कि कॉन्स्टेंटली कोई हमें बताए कि आप यहां से इम्परफेक्ट हो, यहां से परफेक्ट हो, यहां आपको कमी है या जो भी। सो अपने आप को पहचाने, अपने आप को अपने बेटर सेल्फ तक लेके जाने की कोशिश करें, अपने हाईएस्ट
3: गुड तक लेके जाने की कोशिश करें, बट उसके लिए वैलिडेशंस, आउटसाइड वैलिडेशंस सीख नहीं करें। पूजा मैम, इसी के साथ मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, क्या बचपन का कोई ऐसा मोमेंट है कोई, बिकॉज हमारे लिसनर्स हैं, हर एज ग्रुप के लिसनर्स हैं जो हमें आज सुन रहे हैं और जो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन सीख कर रहे हैं आज की हमारी इस कॉन्वर्जेशन से, तो कोई यंगर सेल्फ का, कोई टीन्स का, एडोलेसेंस का, कॉलेज गोइंग पूजा जी की लाइफ का कोई ऐसा इंस्टेंस जो आज हमसे बात करते करते आपके जहन में आता है, जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें कि ऐसा हुआ था एंड दिस इज हाउ आई फॉट बैक, ये मेरी लड़ाई थी उस इंस्टेंस से एंड ऐसे मैं उससे उभरी, तो अगर ऐसा कोई वाकया है तो हमारे साथ साझा करें।
2: ऐसे बहुत सारे हैं एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम दैट आई वॉज इन स्कूल, नॉट जस्ट during my adolescence, during my teenage and even when I grew further, ek aisa episode jahan pe mujhe aisa laga ki aaj ki this is something that I don't think so that we've spoken about it loud, but yes, I would, now that I have this platform I would definitely want to talk about it. Haan, as a girl we go through a lot in the kind of society that we are in. So as a girl, क्या होता है, हम एक लड़की है, लड़कियों की जिस तरीके की परवरिश करी जाती है ना वो बहुत अलग होती है और जिस तरीके का एनवायरमेंट में उसको देखा जाता है वो बहुत अलग होता है। एक लड़की जब स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, घर से बाहर निकलती है टू दैट मैटर ऑफ फैक्ट, उसमें क्या होता है बहुत अलग तरीके से उसको देखा जाता है, बहुत सबमिसिव, बहुत फीबल समझा जाता है कि अच्छा ये तो क्या ही जवाब देगी पलट के। तो आई रिमेम्बर एंड आई एम शेयरिंग दिस, देर वॉज अ पॉइंट इन टाइम वेन आई मूव्ड आउट और घर से बाहर निकलने पे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जो हमें पढ़ाते थे
3: जी,
2: तो उन्होंने एक सवाल पूछने पे तो ही केम वेरी क्लोज टू मी, बहुत करीब आके उन्होंने उस चीज का जवाब दिया और जब मैं पेन से अपना लिख रही थी तो ही कॉट होल्ड ऑफ माई, एंड आई एम श्योर यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे हमारे लिसनर्स हैं वुमेन, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ वुमेन फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव, जिनके साथ ना कुछ इस तरीके का हुआ है, तो हम ना शर्म और डर दोनों की वजह से रिएक्ट नहीं कर पाते। पहली बार जब हुआ आई वॉज वेरी यंग, तो मुझे उस टाइम पे आई डिडंट रियली ज्यादा डर गई, मैं सहम गई, नहीं बोला, घर आके भी कुछ नहीं बोला क्योंकि पेरेंट्स की भी आदत होती है ना ये बोलने की, तुम्हारी गलती होगी, तुमने कुछ किया होगा, राइट। बट उसके बाद कहीं से वो हम By the grace of God, I was blessed कि बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने थोड़ा सा उनसे बात करके ऐसा लगा कि नहीं ये गलत है और बोलना चाहिए। दूसरी बार जब ऐसा हुआ तो मैंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई और मेरे साथ में उस इंस्टीट्यूट के 100 और बच्चों ने भी आवाज उठाई। तो वो आवाज उठाना बहुत जरूरी है, सही को सही और गलत को गलत बोलने की जो शुरू से एक आदत डलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें हर फेज में हेल्प करती है लाइफ के, चाहे आज स्कूल में है बच्चे, फिर कॉलेज में है, जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे, ऑफिस जाएंगे, करियर है, रिलेशन है, हर जगह आपको वो चीज हेल्प करेगी। तो सही को सही और गलत के अगेंस्ट आवाज उठाना, क्योंकि हमने ये सुना ही है कि सिर्फ गलत को सहना ही नहीं, बट अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो भी आप अगर नजरें फेर लें तो वो भी उतना ही गलत है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू शेयर।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही और सटीक ऑब्जर्वेशन है आपकी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है यंग एज में जो हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और हम डर के मारे नहीं बताते। आज सिनेरियो बहुत अलग है खैर, बट जब हम आप और हम बड़े हो रहे थे तब हमारे पेरेंट्स सच में हमारे से ज्यादा टीचर्स पे बिलीव करते थे, वो कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाती थी, बट येस उस टाइम खड़े होना और सही को सही और गलत को गलत बोलना ये एक बहुत हिम्मती सोच है और इसी हिम्मती सोच के साथ हम आगे चलेंगे और सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत। दोस्तों, जिंदगी के कुछ दौर ऐसे होते हैं जब हम खुद को समझने की कोशिश में लगे होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफर आसान नहीं होगा, उस सर्कमस्टांस से आप नहीं निकल पाएंगे, आपकी जिंदगी उसी दौर से

गुजर के और सुंदर होगी और निखरेगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी एहसास के साथ एक गहरा गीत, एक प्यार भरा गीत, ए दिल तू लाया है बहार।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पूजा जी।
1: थैंक यू।
0: मैम, आपने हमें बताया कि आप कॉर्पोरेट लाइफ में जब थे आप बहुत अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियल प्रेशर्स को हैंडल कर रहे थे, इमोशनल स्ट्रगल्स थे लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा था, बट फिर भी सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ आसपास चलते हुए भी, एक अंदर से एक एम्प्टीनेस थी, एक आपको एक तरह का कॉर्पोरेट फटीक था, या वो एक यू नो एक कुछ चीज की कमी थी आपके जीवन में जो आप महसूस करते थे, तो क्या वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि आपकी जिंदगी का जो पर्पस है वो सिर्फ सर्वाइव करना नहीं बल्कि एक पर्पसफुल लाइफ क्रिएट करना है अपने लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए? क्या था वो टर्निंग पॉइंट, किस तरह से उसने आपको छुआ और कैसे आप उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को चेंज करते हुए आगे बढ़े?
1: वेल, बहुत ही खूबसूरत सवाल और मेरे दिल के बहुत करीब है ये पूरी जर्नी। 20 साल के कॉर्पोरेट करियर के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे और नहीं करना है। नॉट दैट कि कॉर्पोरेट में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ मुझे, बिकॉज बहुत अर्ली स्टेज में मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग 20 इयर्स बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था, बट कहीं ना कहीं एक रोज घर आने के बाद एक एम्प्टीनेस होती थी कि मैंने आज क्या किया। हाँ, मैं ट्रेनिंग हेड करती थी, मैं लर्निंग डेवलपमेंट हेड करती थी, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, बट अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या था? कुछ नहीं, मतलब ऐसा आई वॉजन डूइंग मच फॉर द सोसाइटी। बस मेरा पर्पस क्या है आज, अगर मुझे इस धरती पर भेजा गया तो वाई मी, वॉट इज दैट आई एम डूइंग? तो साथ के साथ ही, बट एक चीज जो कि मैं इस फोरम से, इस प्लेटफॉर्म से सबको बताना चाहूंगी, चाहे हमारा एक प्रोफेशन है बट उस प्रोफेशन के साथ में हमारा एक पैशन भी होता है, उस पैशन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जरूरी नहीं आपका प्रोफेशन हमेशा आपका पैशन बने और पैशन हमेशा प्रोफेशन बने, पैरेलल दो चीजें भी चल सकती हैं। तो मेरा पैशन हमेशा से कोचिंग और हीलिंग और टैरो कार्ड रीडिंग और बहुत सारी मोडालिटीज रहा है। सैटरडे संडे मैं उनको टाइम देती थी, तो वो पैशन मुझे और बड़ा दिखने लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो एम्प्टीनेस है जो कि कॉर्पोरेट लाइफ से आ रही है, ये मैं इससे फुलफिल कर सकती हूँ। वीकेंड्स पे जब मैं लोगों को हील करती थी, उनके लिए गाइडेंस, उनको प्रिडिक्टिव गाइडेंस देती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अंदर से ना सुकून मिलता था, चाहे वो एक घंटे का ही सेशन क्यों ना हो वर्सेस पूरे 5 दिन की जद्दोजहद जिसमें हम अटके रहते हैं। तो वहां पे मुझे वो पर्पस, वो टर्निंग पॉइंट था जहां पे मुझे लगा कि नहीं, ये एक दिन का एक घंटा मुझे ज्यादा पर्पस दिख रहा है इसमें मैं और वैल्यू एड कर पा रही हूँ सोसाइटी के लिए। वो एक लाइफ जब ट्रांसफॉर्म हुई, आई थॉट की वाओ, इफ आई कैन डू दिस, वाई कांट आई डू दिस फॉर सो मेनी पीपल अराउंड? इतने सारे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस की लैग में गलत डिसीजन ले रहे हैं, और हर एज ग्रुप के ले रहे हैं। मैंने कहती सिर्फ बच्चे ही ले रहे हैं, सिर्फ टीन्स ही ले रहे हैं, सिर्फ वुमेन, देर आर मेन ऑल्सो हु आर स्ट्रगलिंग विद इट। अगेन, कंडीशनिंग, मैन डोंट टॉक आउट, आदमियों को रोने नहीं दिया जाता। सो दैट वन टर्निंग पॉइंट फॉर मी वॉज अ मेल क्लाइंट ऑफ माइन जो रोए मेरे सामने आके, अ 50-year-old मैन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू हु स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल हिज लाइफ एंड मेड, उन्होंने बिलियंस बना लिए, और जब उस आदमी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी तब मुझे लगा कि नहीं, यही पर्पस है, इसी कंडीशनिंग को हमें ठीक करना है, एंड दिस इज द वे आई कैन गिव इट बैक टू द सोसाइटी। सो वो एक क्लाइंट और एक दिन का एक घंटे का सेशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत वाक्य आपने हमारे साथ साझा किया। सच में जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जब आप सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ ट्रैक पे चलते हुए भी, आप अंदर से खाली फील करते हैं, और उस खालीपन की वजह कहीं ना कहीं भगवान आपको दिखाता है कि आपका बेटा ये रास्ता नहीं है, यू आर मेड फॉर अ बिगर पर्पस, अ बेटर पर्पस, एंड यू आर मेड फॉर पीपल। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपका जन्म हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पॉकेट्स भरने के लिए काम करते हैं, बट कई लोग होते हैं जो आई थिंक चोजन वंस होते हैं, जिनको भगवान ये पावर देता है, ये थर्ड आई देता है, ये इंट्यूशन देता है कि वो अपने पर्पस को लार्जर पब्लिक में ले जा सके और उनकी हेल्प कर सके, उनकी मदद कर सके और उनको बाहर ला सके उन सब सर्कमस्टांसेस से। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप गॉड्स चोजन चाइल्ड हैं। और टैरो कार्ड की आपने हमारे साथ बात की, तो अगर मेरे लिसनर्स को, आई एम श्योर हम सब बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जैसे ही हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री की बात शुरू करते हैं, तो अगर इस मॉडलिटी के बारे में थोड़ा सा ही, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप बता सकें, आप किस तरह से टैरो करते हैं, टैरो के कुछ एक बेसिक रूल्स या कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे श्रोता ले जा सके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर कुछ टिप्स या कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकें तो ब्रीफली.
1: अच्छा श्योर, आई वुड लव टू डू दिस. एक ये जो एक मिसकंसेप्शन टैरो को लेके बहुत अलग दुनिया बनी हुई है जिसमें कुछ लोग तो उस दुनिया से एकदम बाहर हैं और कुछ बहुत ही बिलीव करते हैं. तो एक एक जेनेरिक चीज अगर मैं बताऊं व्हाट इज टैरो, मैं 2005 से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ. टैरो कार्ड मेरी रीडिंग, टैरो कार्ड्स मेरी लाइफ में बहुत ही मिराकुलसली आए थे. इट वॉज अ मिराकल दैट हैपन टू मी. वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी इस बारे में हम बात करेंगे. बट टैरो क्या है? टैरो अनलाइक अदर मोडालिटीज लाइक एस्ट्रोलॉजी, astrology is 1+1=2. It is pure math. It is definite. However, tarot kya hai? Tarot intuitiveness pe based hai. Jaise astrology aapko predictions deti hai, tarot is more of a guiding tool. वो आपको गाइड करती है व्हेन यू आर ऑन क्रॉसरोड्स. फॉर एग्जांपल, आज आप बोलते हो मुझे ए पाथ चूज करना है या बी चूज करना है. टैरो इज अ परफेक्ट थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. इट इज अ ब्यूटिफुल गाइडिंग टूल जब आप क्रॉसरोड्स पे होते हैं. तो वो है टैरो. एंड टैरो पूरा इंट्यूटिव, आपकी माइंडसेट आपकी इंट्यूटिवनेस पे बेस्ड है. और एक स्टोरी बिल्ड करता है टैरो, है ना. तो अगर आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास टैरो कराने जाएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत से एक स्टोरी सुना दी जाएगी आपको. वही सेम कार्ड्स के लिए स्टोरी आपके लिए अलग होगी और वही सेम कार्ड्स दूसरे के लिए एक अलग स्टोरी बना के देते हैं. वो टैरो की ब्यूटी है. बट हैविंग सेड दैट, मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं उनका एक बेसिक सवाल होता है इसकी एक्यूरेसी क्या है. तो ये एक्यूरेसी का जवाब सिर्फ इतना सा है, हर चीज की एक्यूरेसी सिर्फ उस पर डिपेंड करती है कि आपका उसमें कितना विश्वास है.
0: फेथ कितना है. करेक्ट,
1: एग्जैक्टली. सो टैरो इज ऑल अबाउट फेथ. तो अगर आपको टैरो सीखना है या अपनी रीडिंग करवानी है तो फेथ के साथ जाइए. फेथ के साथ करा हुआ हर काम आपको रिजल्ट अच्छे ही देगा.
0: बिल्कुल सही.
1: आई होप दैट आंसर्स.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड मैं इतनी एक्साइटेड हूं कि मैं चाहूंगी कि आप इस एपिसोड के बारे में, इस बातचीत के बारे में कार्ड जरूर पुल आउट करें और हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह का ये एपिसोड रहा. चलिए आगे चलते हैं हमारे आज के दूसरे गीत की तरफ. दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को एक नए रूप में जोड़ सकें. इसी जज्बे के साथ हम सुनेंगे एक बहुत प्रेरणा देने वाला गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत कर.

0: अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है।
1: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पूजा जी।
2: थैंक यू
1: मैम। आप अब आपका जो बेबी है ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। आपने हमें बताया कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक मूवमेंट जैसा है आपके लिए। तो जब आपने इसे शुरू किया, आपके दिल में सबसे पहला थॉट क्या था, इसका सीड कैसे डला आपके जीवन में, और एक बिजनेस बनाना लोगों के लिए किस तरह से लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपके लिए किस तरह से लाइफ चेंजिंग था, या और इस बिजनेस का जो पर्पस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब का पर्पस है, वो आई एम श्योर बिजनेस से बहुत आगे है। तो उस पर्पस को, उस विजन को हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें और हमें बताएं ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब के बारे में।
2: राइटली सेड, यस इट्स अ बेबी टू मी। ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब इज अ बेबी टू मी। और इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो मैंने एग्जाम्पल शुरुआत में शेयर किया था कि अगर एक जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है तो लाखों जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। यहाँ का पर्पस सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं नहीं बोलती कि आपको ट्रांसफॉर्म किस मोडालिटी से किया जाएगा। हो सकता है हम सिर्फ बात करके ही आपको ट्रांसफॉर्म कर दें, और हो सकता है आपको कोई एक टेक्निक या मोडालिटी की जरूरत पड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बट इतना कुछ सीखने और समझने के बाद, लाइफ में इतना एक्सपोजर लेने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब एक वो अम्ब्रेला है कि जिसके नीचे अगर आप आ गए तो किसी भी तरीके की बारिश से, किसी भी तरीके की सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, दैट विल बी अ प्रोटेक्टिव टूल फॉर यू। और जब आप उसके बाहर निकलेंगे तो आप एक ट्रांसफॉर्म तरीके से ही निकलेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसका नाम बस ऐसे ही किसी दिन सुबह उठ के मैंने नहीं रख दिया। ये बहुत थॉटफुली क्यूरेटेड एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता व्हेन आई यूज द टर्म क्लाइंट। यस इट इज अ फैमिली, इट इज अ कम्युनिटी। जो हमारे साथ जुड़ा है वो लाइफ लॉन्ग के लिए ही जुड़ा है। तो बिकॉज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करते। आज अगर कोई आता है हमारे पास सेइंग कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम पे काम नहीं करते, हम उस ओवरऑल इंसान पे काम करते हैं। आई बिलीव कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में बहुत सारी आएंगी। आज जॉब से रिलेटेड है, कल रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी। बट इफ आई मेक यू a good person, और if I really transform you as a person, अगर मैं आपने एक इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन ले आऊंगी, तो वो सौ प्रॉब्लम से भी उनको निकल जाएंगे उसमें से। तो दैट इज वॉट आई फील कि हम इंसान पे काम करते हैं, हम प्रॉब्लम पे काम नहीं करते। तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब मेरा वही ड्रीम है, वही कम्युनिटी क्रिएट करी है, जहां पे हम कोचिंग के थ्रू, बेसिकली हम कोचिंग के थ्रू, कोचिंग क्या है, कोचिंग और काउंसलिंग में बहुत डिफरेंस है। हम कोचिंग के थ्रू आगे बढ़ते हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। हमारे पास बहुत सारे, और सिर्फ ये हमने किसी एज ग्रुप से तक इसको सीमित नहीं किया है। मेरा यंगेस्ट कम्युनिटी मेंबर 4 साल का है और एल्डेस्ट कम्युनिटी मेंबर इज 88 इयर्स ऑफ एज। तो इट इज नॉट लिमिटेड कि एक एज ग्रुप पे ही हम काम करते हैं। तो हम अक्रॉस एज ग्रुप काम करते हैं
1: जी।
2: दैट इज वॉट ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब इज।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मैम। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे समझ आता है कि जब आप रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं, आपके जो मॉड्यूल्स हैं, मोडालिटीज हैं, उसमें रिलेशनशिप काउंसलिंग भी है, डिवोर्स नेविगेशंस भी हैं, इमोशनल हीलिंग भी है, यंग अडल्ट यू नो इश्यूज का को हील करना, डील करना, वो सब कुछ है। मतलब यू लाइक यू सेड कि आप सब एज ग्रुप से डील करते हैं और इन सब तरह की काउंसलिंग और नेविगेशंस आप प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्राइब से। तो आई एम श्योर बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप खुद लोगों को हील करते करते आपके खुद के शायद कोई वूंड्स, कोई यादें या कुछ चीजें ट्रिगर हो जाती होंगी, या आप खुद लाइक यू नो बहुत हैवी एनर्जीज होती हैं कई बार लोगों की, तो उन सबको हील करते करते जब आप हैवी फील करते हैं, जब आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो किस तरह से उसे डील करते हैं, कैसे उससे आगे बढ़ते हैं? क्योंकि बहुत आई एम श्योर हीलर्स, ये सब हीलर्स ये गो थ्रू करते हैं, तो किस तरह से आप उसको डील करते हैं?
2: एक बहुत ही सेल्फिश नोट पे ये बात स्टार्ट करूंगी कि इस पूरा ट्राइब को

0: बिहेव करने के पीछे मेरा बहुत सेल्फिश मोटिव था, विच वॉज टू हील माई सेल्फ ऑल्सो. एंड आई वेरी ब्यूटिफुली आई ऑलवेज मेंशन दैट इन माई जर्नी ऑफ हीलिंग माई सेल्फ आई बिकेम अ हीलर एंड दैट्स वाई आई बिकेम अ हीलर. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था. जब जब किसी से बात होती है, किसी क्लाइंट से बात होती है, अगेन आई वुड नॉट वॉन्ट टू यूज अ टर्म क्लाइंट, किसी कम्युनिटी मेंबर से बात होती है, कोई ऑनबोर्ड होता है हमारे साथ, तो जब भी कोई ऐसा एपिसोड होता है जहां पे अपनी खुद का कोई इमोशन ट्रिगर होता है, तो वन थिंग दैट आई डू इज आई ऑलवेज लेट इट सरफेस. हम किसी भी चीज को अंडर द कार्पेट करके साफ नहीं कर सकते. जब तक आप उसको हटाओगे नहीं, उसको सरफेस पे लेके नहीं आओगे, तब तक वो साफ नहीं हो सकता. तो जब वो सरफेस होता है, आई नेवर कीप इट असाइड, आई लेट इट सरफेस इट मोर, एंड फिर उसके बाद आई यूज माई ओन मोडालिटीज ऑन माई सेल्फ. तो आई एम माई फर्स्ट क्लाइंट, आई एम माई फर्स्ट गिनी पिग, वट एवर यू कॉल इट, बट आई एम द फर्स्ट वन. आई ऑलवेज यूज एवरी मोडालिटी ऑन माई सेल्फ फर्स्ट. जर्नलिंग इज वन ऑफ सच ब्यूटिफुल मोडालिटी. एंड इफ एनी सच कोई फीलिंग ऐसी सर्फेस होती है, कोई इमोशन ऐसा सर्फेस होता है, कोई पास्ट ट्रॉमा ऐसा सर्फेस होता है, कंडीशनिंग ऐसी सर्फेस होती है, आई राइट इट डाउन, आई जर्नल. अमिट्स ऑल दिस एक चीज जो मैं अपने लिसनर्स को आपको बताना चाहूंगी, जर्नलिंग हमने बहुत सुनी है शायद, हमारे आसपास जर्नलिंग की बहुत बात हो रही है, बट एक मेरा जो यूनिक पॉइंट है जहां पे मैं जर्नलिंग करवाती हूँ, वो थी प्रॉम्प्ट बेस्ड जर्नलिंग. हम सब कुछ ही नहीं लिखवाती, बट बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट करके, मैं अपने लिए खुद के लिए क्वेश्चंस क्रिएट करती हूँ जहां पे हम उस पर्टिकुलर इमोशन को ही ट्रिगर करते हैं, ताकि वो सरफेस हो और वो लेट गो हो जाए और वो वापस सब्साइड नहीं हो आपके सबकॉन्शियस में. तो ये एक प्रोसेस है जिससे मैं अपने आप को कंटिन्यूअसली हील करती हूँ. और दूसरी चीज जो कि मैं इस माध्यम से सारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी, एक बहुत बेसिक सी रेमेडी होती है, सॉल्ट वाटर बाथ. आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे हीलर्स और बहुत सारे लिसनर्स ये कर रहे होंगे, बट डू इट रेगुलरली. आई थिंक हम सारे के सारे एक जिस भीड़ चाल में, रैट रेस में हम फंसे हुए हैं, हम बहुत एनर्जीज के साथ कोलाइड करते हैं पूरे दिन, अच्छी बुरी हर तरीके की एनर्जीज, हर तरीके के सोल्स होते हैं हमारे आसपास. तो टुवर्ड्स द एंड आई थिंक और टुवर्ड्स द बिगिनिंग एक सॉल्ट वाटर बाथ अगर आप ले लें, तो वो बहुत बड़ा हीलिंग फैक्टर बन जाता है आपके लिए एक टाइम के साथ. मेक इट अ प्रैक्टिस. तो दैट समथिंग जो मैं अपने लिए करती हूँ, जर्नलिंग एंड सॉल्ट वाटर बाथ, इट्स अ रिचुअल एंड समथिंग दैट आई ऑल्सो बिलीव इज इन ग्रेटिट्यूड. कंटिन्यू पेइंग ग्रेटिट्यूड. जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, किसी ने परेशान किया, ओके से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कंटिन्यू सेइंग थैंक यू. द मोर यू से थैंक यू, द मोर रिपल इफेक्ट इट स्टार्ट्स टू क्रिएट. और आप देखेंगे आपके आसपास वाले लोग अपने आप ही अलग तरीके से ऑन अ पॉजिटिव नोट आपको, आपसे बात करने लग जाएंगे या फिर हट जाएंगे. दैट्स हाउ द यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म्स. And as a part of transformation tribe, I would always talk about transformation.
1: Correct. तो कहीं ना कहीं इन एनर्जी वेम्पायर्स के साथ आप इस तरह से डील करते हैं. और आपने सही कहा कि हम हर तरह की एनर्जी से कोलाइड करते हैं, और बहुत जरूरी है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आपको सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना, यू हैव टू हील पीपल. सो अंटिल यू आर हील्ड, नथिंग कैन वर्क आउट. एंड बहुत ही खूबसूरत लाइन आपने कही कि आप अपने फर्स्ट क्लाइंट हैं, तो उससे ये शो होता है कि आप कितने रूटेड हैं इस कॉज के लिए और कितना पर्सनल है ये कॉज आपके लिए. बहुत ही खूबसूरत बातचीत आपसे हो रही है. इसी के साथ हम आगे चलेंगे और सुनेंगे हमारा अगला गीत. दोस्तों, जिंदगी का सफर सिर्फ खुशियों का नहीं होता, लेकिन हर दर्द के बाद एक नई रोशनी जरूर आती है. इसी एहसास के साथ, इसी जज्बात के साथ हम सुनेंगे एक दिल को छू लेने वाला गीत, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल.

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, सच में प्रेरणादायक। पूजा जी, आपने वुमेन एम्पावरमेंट और आइडेंटिटी के लिए बहुत काम किया है और बहुत सारी वुमेन फोक के साथ आपने काम किया है, बहुत पर्सनली, बहुत रूट लेवल पे। तो जब आप देखते हैं आपके आसपास की वुमेन फोक को, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके स्ट्रगल्स को, उनके चैलेंजेस को, उनकी डेली लाइफ को, तो आपको क्या लगता है सोसाइटी में सबसे ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट क्या है, खुद से लड़ना या सोसाइटल इश्यूज से लड़ना? क्या क्या वो खुद खुद की दुश्मन हो जाती हैं कई बार, या सिर्फ सोसाइटी ही है जो उनको हर बार लेट डाउन करती है, या इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ थिंग्स, पूरी कंडीशनिंग चेंज होने की जरूरत है? किस तरह से आप इससे डील करती हैं और क्या आपके एक्सपीरियंसेस में सही है, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है?
1: आई थिंक इट इज दोनों का ना ब्लेंड है ये। व्हेन आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, हैविंग सेड दैट, इन माय कोचिंग जर्नी मेरे पास मेन भी ऐसे आए हैं जो कि किसी ना किसी विमेन की वजह से दे हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड। एंड लेट मी टेल यू कि आई टेक व्हेन आई टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, इट ओनली टॉक्स अबाउट कि हम अपने आप को कैसे सक्षम बनाएं कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए। एंड व्हाई विमेन, यहाँ पे हम विमेन पे क्यों इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज एक विमेन अगर मेंटली स्टेबल होगी, पॉजिटिव होगी, कंडीशनिंग अच्छी होगी उसकी, तो वो आगे घर परिवार बच्चों में वही चीज आगे दे पाएगी, ठीक है, वही चीज आगे सीप डाउन होगी बच्चों तक। बिकॉज इट्स अ वुमेन जो कि आपके घर में परिवार में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट पासिंग इट अहेड टू द जेनरेशन ऑल्सो, हेंस वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। टॉकिंग अबाउट ब्लेंड ऑफ येस सोसाइटल नॉर्म्स भी कुछ ऐसे बने हुए हैं हमारे, जहां पे एक औरत को बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है। व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई थिंक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, एट द सेम टाइम अथॉरिटी नहीं दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे गो हैंड इन हैंड, राइट?
0: राइट।
1: तो वो वाली चीज में अभी धीरे धीरे करके शिफ्ट आ रहा है। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरे लिए यही वुमेन एम्पावरमेंट है। आप वुमेन एंड हम दोनों ये बात कर रहे हैं और इस माध्यम से हम इतनी सारी वुमेन्स को और मोटिवेट कर रहे हैं। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी, नॉट पिकिंग अप अ फ्लैग एंड डूइंग अ मार्च समवेयर एंड सेइंग नो आई एम द बेस्ट। नो, इट इज नॉट दैट। एवरी लिटिल स्टेप जो हम कर रहे हैं दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। टूडे आई हैव अ डॉटर, उसकी कंडीशनिंग कैसी हो रही है, उसको चुप करना हमने नहीं सिखाया, उसको ये नहीं बोला तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव बॉय किड्स, उनको कभी ये नहीं सिखाया तुम रोओगे नहीं, तुम रोओगे भी, और लड़की को ये भी सिखाया कि तुम चुप नहीं रहोगे, है ना, जहां पे तुम्हें लगता है। तो ये छोटी कंडीशनिंग है जहां से हम एक आगे आने वाली जेनरेशन को थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं। बट आई समवेयर आई फील कि हमारी जो हम अभी इस जेनरेशन के लोग हैं, हम कहीं ना कहीं दो जेनरेशन के बीच में फंस गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व बट वी स्टिल फॉलो द सोसाइटल नॉर्म।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं सो स्ट्रॉन्ग,
1: राइट,
0: इतनी डीप रूटेड हमारी कंडीशनिंग है कि वो एक नॉर्मल बन गया है।
1: एब्सोल्यूटली, सो वो चीज के बीच में हम जिस तरीके से अटक गए हैं, इट इज नॉट अबाउट कि आने वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन आर वे मोर स्मार्टर, दे नो, एटलीस्ट आज हम कंडीशनिंग के बारे में बात कर रहे हैं और वो इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। बट इट इज दिस जेनरेशन दैट इज आवर जेनरेशन दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज हम बात करते हैं कंडीशनिंग की। मेरे पास आज एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, शायद इससे ज्यादा अच्छे से बात समझ में आए कि एक देयर वाज दिस लेडी जो आई थी मेरे पास बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ, मतलब आई वॉन्ट टू जस्ट मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मुझे नहीं रहना इस घर में, और मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत एट्रोसिटीज करते हैं। नाउ व्हेन वी वेंट अहेड टू हेल्प हर, गाइड हर, कोच हर, देर वॉज वन पॉइंट इन टाइम जहां पे उस हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला कि कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूंगा, तुम वापस आ जाओ, राइट? उसने 8 साल उस घर में रह के, शी हैड बर्न मार्क्स ऑन हर बॉडी, शी वॉज हिट बैडली, बट कहीं ना कहीं उसकी कंडीशनिंग, उसके पापा ने जब बोला ना कि नहीं यही तुम्हारा घर है, और हस्बैंड ने बोला नहीं अब
0: नहीं करूंगा, सी
1: इट इज बिटवीन बोथ ऑफ अस, है ना, नहीं करूंगा की भी गारंटी नहीं, तो दिस लेडी सेड नहीं नहीं नहीं यही मुझे वापस जाना है। वो जो एक वो वाला जो एक फील फैक्टर होता है ना, जहां पे हम मैं उस तरफ एक लेडी की बात नहीं कर रही, हम सबकी बात कर रही हूँ, वहां पे हम स्टक हो जाते हैं। वी आर इमोशनली वल्नरेबल बिकॉज हमारी कंडीशनिंग वैसी है, वी नो कि ओ घर ये इज्जत की बात हो जाती है, वहीं पर ही मैं बात करती हूँ डिवोर्स नेविगेशन की. आई कॉल माई सेल्फ अ डिवोर्स नेविगेशन कोच. वाई? बिकॉज देर इज नो शेम इन कमिंग आउट ऑफ अ मिजरेबल रिलेशनशिप. क्यों? उस मिजरी में सिर्फ आप दो लोग नहीं रह रहे होते, उस मिजरी में एक पूरा परिवार पल रहा होता,
0: दो पूरे परिवार.
1: तो वाई? एग्जैक्टली, दो पूरे परिवार.
0: बिल्कुल.
1: तो द पॉइंट इज, वाई मेक एवरीबडी गो थ्रू दिस मिजरी एंड देन आफ्टर सर्टेन ईयर अगेन टॉक अबाउट कंडीशनिंग?
0: करेक्ट.
1: तो वाई नॉट करेक्ट इट नाउ? दैट इज वेयर वुमेन एम्पावरमेंट. आई एम श्योर हम एक वुमेन एम्पावरमेंट वाले क्वेश्चन से बहुत डाइवर्स हो गए, इधर डिबेट भी हो गए, बट देन आई थिंक इट वॉज इम्पोर्टेंट
0: डायलॉग. यस यस यस, आई फील सपोर्टेड. और मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये डायलॉग. और जैसे आपने कहा कि आज हम कम से कम इस स्टेज पे तो आए हैं कि हम इन चीजों के बारे में बातचीत कर पा रहे हैं, डायलॉग कर पा रहे हैं. हमारे जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे ऐसा कुछ था ही नहीं. जो है वो ऐसा ही है और इसी को अडेप्ट करना है. सो यस, द किड्स आर मोस्ट स्मार्ट, दे आर ग्रोइंग अप इन अ एज जहां पे ये डायलॉग्स उनके आसपास कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, एक आवाज कॉन्स्टेंटली चल रही है. तो कहीं ना कहीं बॉयज भी सही कंडीशन हो रहे हैं, कुछ चेंजेस उनमें भी आ रहे हैं. दे आर, उनके लिए चीजें थोड़ी ईज आउट हो रही हैं कि भाई सब प्रेशर डाउन उनके ऊपर, उन्हीं के ऊपर डाउनलोड ना होके इट इज लाइक दे आर गिवन सम स्पेस. एंड उसी टाइम पे वुमेन को एक एजेंसी दी जा रही है, एक वॉइस दी जा रही है, एक पावर दी जा रही है टू मेक द डिसीजन एंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, एक्चुअली टेक स्टैंड कि हाँ ये मेरा स्टैंड है, ये मेरा डिसीजन है. तो बहुत जरूरी है ये बातचीत एंड आई एम सो ग्लैड कि आज हमारी ये बातचीत हो रही है. और सच में वुमेन एम्पावरमेंट का यही मतलब है, झंडा लेके जाना नहीं है, अपने रोज के डायलॉग को चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है एंड थोड़ा पुश करने की जरूरत है. आई नो इट्स नॉट वेरी इजी, जिस बेल्ट तक हम बात ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन लिसनर्स के लिए बहुत इजी नहीं है, बट थोड़ा पुश तो करना पड़ेगा ना आपको. आपको खुद के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा और शायद यही सबसे बड़ी सीख है, यही सबसे बड़ा लेसन है. एंड कुछ भी लाइफ में कभी भी चेंज इजी नहीं हुआ, हिस्ट्री इस चीज की गवाह है. तो यस, अपने लिए खड़ा होइए और अपने लिए बात करिए, डायलॉग करिए और उस एक एनवेलप को पुश करने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी ना कभी वो उस डोर के अक्रॉस जरूर जाएगा. बहुत ही प्यारी बातचीत आपसे हो रही है मैम. इसी से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को रीडिफाइन किया है, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप रिलेशनशिप कोच हैं और रिलेशनशिप्स नेविगेट करते हैं अपने हीलिंग मॉड्यूल्स के थ्रू. तो आज मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक इन चीजों से जुड़ी रही हूं, आई हैव बीन एन एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, एवरीथिंग, तो मैंने लोगों से डील किया है इस कॉन्टेक्स्ट में. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं लोगों की वो उनके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड होती हैं. तो आपके हिसाब से एक हेल्दी रिलेशनशिप कि सबसे बेसिक फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं बट वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो क्या होनी चाहिए मैम?
1: कम्युनिकेशन. बिकॉज बहुत एक फाउंडेशन है किसी भी रिश्ते की. और व्हेन आई से रिश्ता, एक रिलेशनशिप, सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप प्रोफेशनल भी एंड पर्सनल भी, दोनों में कम्युनिकेशन, बातचीत बहुत बेसिक फाउंडेशन है. जहां बातचीत बंद हो जाती है वहां पे उस रिश्ते में सुधार नहीं हो सकता. दैट कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप. और दूसरा है रिस्पेक्ट. ये दो चीजें किसी भी रिश्ते की एक बेसिक फाउंडेशन और नीड की तरह काम करती हैं. हमेशा, आज अगर हम बात करें, मेरे पास क्लाइंट्स, अगेन आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं इस कैपेसिटी में रिलेशनशिप्स की, चाहे ऑफिस में, चाहे कॉरपोरेट एनवायरमेंट में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो, सबको मैं एक ही चीज बोलती हूँ, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन? नॉट दैट कि आप घंटों बैठ के बात कर रहे हैं, बट शाम को एक चाय पे बैठिए, ऑफिस में एक चाय पे बैठिए. अप्रेजल के लिए लेके जा रहे हैं अपने टीम मेंबर को, आप फीडबैक दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक चाय पे उससे बात करी जा सकती है. उसी तरीके से अपने बच्चों के साथ, उनके स्कूल में क्या हुआ, माना हम सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, बट वो 10 मिनट उस बच्चे को अगर हम सुन लें तो उसके लिए वो ही बहुत है. चाहे एज अ पेरेंट भी, आई ऑलवेज से दैट एक परफेक्ट पेरेंट बनना बहुत मुश्किल है, बट एक प्रेजेंट पेरेंट अगर आप बन जाएंगे ना तो परफेक्शन की दौड़ खत्म हो जाएगी. क्यों? आप प्रेजेंट होंगे. और ये प्रेजेंस हर रिश्ते में जरूरी है, चाहे वो घर परिवार हो, बच्चे हो या ऑफिस हो. तो कम्युनिकेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग एंड यस, रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ इट.
0: करेक्ट,
1: सो दैट्स हाउ इट इज.
0: बहुत ही खूबसूरत लाइन आपने कही, मैं रिपीट करना चाहूंगी कि भले ही आप परफेक्ट पेरेंट नहीं बन सके, क्योंकि परफेक्शन इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव, बट प्रेजेंट पेरेंट जरूर बने. अपने बच्चे के साथ वो टाइम जरूर स्पेंड करें, क्योंकि आपके लिए तो आपकी ऑफिस की जद्दोजहद सबसे इंपॉर्टेंट है, बट उस बच्चे के लिए उसके स्कूल में क्लास में क्या हुआ उस दिन, वही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अगर वो उसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो किस तरह से वो कहां जाके वेंट आउट करेगा. और सेम चीज अप्लाई होती है जैसे कि पूजा मैम ने हमें बताया, हर रिश्ते को वक्त दीजिए, कम्युनिकेट करिए, क्लैरिटी से कम्युनिकेट करिए और प्रेजेंट रहिए उस इंसान के लिए, क्योंकि बहुत बार सिर्फ बातचीत करने से बहुत मसले हल हो जाते हैं और हम चुप हो जाते हैं और चुप होते होते वो चीजें नासूर बन जाती हैं. तो अपने रिश्तों को थोड़ी गर्माहट दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा प्रेजेंस दीजिए, थोड़ा कम्युनिकेशन दीजिए. इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे आज के आखिरी सवाल पर. हमारे लिसनर्स को मैम अगर आप कुछ मैसेज दे सकें अपनी लाइफ से, अपने लेसन से, बहुत सारे लिसनर्स मुझे आज पता है बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, कहीं ब्रोकन होंगे, डायरेक्शन लेस फील कर रहे होंगे, तो उनके लिए प्रैक्टिकल सी कोई एडवाइस, कोई सोल्यूशन, कोई डेली लाइफ में अपनाने वाला मंत्र, कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा?
1: एक चीज जो कि मैं जरूर बोलना चाहूंगी इस माध्यम से कि जब भी आप अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हैं, जब भी आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज फील कर रहे हैं, आई थिंक वहीं से ही आपकी ट्रांजिशन की शुरुआत हो जाती है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है. क्लैरिटी एक एक्शन है और उस क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है. तो अगर आप आज कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो यू आर नॉट समवन, आप किसी एक ऑकवर्ड पोजिशन में नहीं है, आप सबसे सही पोजिशन में हैं. तो क्लैरिटी में एक तो थम जाइए. ये जो भाग भाग की जिंदगी बन चुकी है, एक बहुत जरूरी चीज, थम जाइए, बैठ जाइए, एक पेन और पेपर उठाइए और अपने थॉट्स को उस पर लिखना शुरू कीजिए. मैं आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन राइटिंग इट डाउन. एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब आप अपनी थॉट्स को लिखते हैं ना, तो आप अपनी थॉट्स को खुद देख पाते हैं. अगर आज हम सारे जितने लोग इस यहाँ पे सुन रहे हैं इस बात को, और मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं और बहुत सारे श्रोताएं और भी सुन रहे हैं, हम आज से अगर रोज ये करना शुरू करते हैं, दिमाग चलना शुरू होता है, भाग भाग कंफ्यूजन, आप खुद लिखना शुरू कीजिए. ट्रस्ट मी, इट इज अ गेम चेंजर. सेकेंड, अपनी कंफ्यूजन, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए. आप चाहे मेल है, आप फीमेल है, आप टीन है, आप एडोलेसेंट है, कम्युनिकेट अबाउट इट. देर आर पीपल लाइक अस, हम यहाँ बैठे ही इसीलिए हैं कि आप आए बात करें. सॉल्यूशंस है हर चीज के. इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, लोग अपने ही घर में घुट घुट के कितने गलत डिसीजंस ले रहे हैं. मत लीजिए ये डिसीजन, हम बैठे इसलिए है. मैंने अगर अपना 20 साल का कॉर्पोरेट करियर, आई हैव जस्ट लेट इट गो फॉर एवरीवन लिसनिंग to this talk right now. We are here to listen to you, help you, support you. कोई गलत decision नहीं लेना. We are here to hand hold you. आपको बचपन में जिस तरीके से उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, life में ऐसी बहुत सारी problems आती हैं जहां पे फिर से किसी ना किसी की उंगली पकड़नी जरूरी होती है. तो प्लीज उस शेम से बाहर निकलिए, उस गिल्ट से बाहर निकलिए कि मैं एट द एज ऑफ 40 और 50 मैं कैसे एक सपोर्ट मांगू या कैसे हेल्प मांगू. नहीं, हेल्प मांगना, सपोर्ट मांगने की कोई एज नहीं होती. शाउट आउट फॉर सपोर्ट. आई ऑलवेज से शाउट आउट फॉर सपोर्ट. लिखिए, फिर हमारे पास आइए, शाउट आउट फॉर सपोर्ट एंड देयर इज डेफिनेट सपोर्ट दैट वी कैन प्रोवाइड यू. हर चीज का, हर प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है. वही है, हर ताले की हर चाबी है. चाबी होती ही होती है, उसी तरीके से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता ही होता है. टॉक इट आउट, आपको बात करने की जरूरत है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मोटिवेटिंग टॉक रहा पूजा जी आपके साथ. मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई हूँ, मैं खुद बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ एंड मैं अपनी जर्नलिंग पे वापस जाऊंगी आज से ही बिल्कुल. और यही मैं हमारे श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि जर्नल करना शुरू करें, कम्युनिकेट करना शुरू करें, अपने आप को अपने अंदर जाके टैप करें उन जगहों पे जहां पे आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए या कुछ मिसिंग है. अपने आप के अंदर जाएं और फिर उससे बाहर निकल के किसी के साथ कम्युनिकेट करें ताकि आपको कोई इंसान हाथ पकड़ के उस कंफ्यूजन से, उस डार्कनेस से बाहर लेके आ सके, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। एंड बहुत सारी चीजें आज जो पूजा मैम ने हमारे साथ शेयर करी, आई होप आप उसका फायदा उठा सकें, उसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें और उससे अपनी लाइफ चेंज कर सकें। पूजा मैम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, क्या आप एक कार्ड पुल आउट कर सकते हैं आज के हमारी इस कॉन्वर्जेशन के लिए?
1: Well, definitely. Let me do this.
0: जी जी जी, सो दैट हमारे श्रोताओं को थोड़ा टैरो का फील आए।
1: Definitely. एक काम करते हैं फिर, जो हमारी अभी एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज है सारे लिसनर्स की, इसी के बेस्ड एक रीडिंग करते हैं।
0: करेक्ट,
1: सो लेट्स डू दिस नाउ। ओके, आई थिंक देर इज अ व्हाट आई सी राइट नाउ थ्रू टैरो इज इंटेंस एनर्जी है। आई डोंट नो इज इट बिकॉज ऑफ द आउटर confusion and the stress that is going around in the world, but the listeners are stressed out. You know, wo stress dikh raha hai ek collective energy mein.
0: जी,
1: कलेक्टिव एनर्जी क्या होती है? कलेक्टिव एनर्जी जैसे आपने अपना आप अपना ये वर्षफल और सब पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर में, तो ये कलेक्टिव एनर्जी होती है, ये एक कलेक्टिव प्रिडिक्टिव एनर्जी होती है जिसमें अभी सिर्फ एक स्ट्रेस दिख रहा है।
0: जी,
1: स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत जरूरी है।
0: Right.
1: जैसे कि मैंने कहा था, लिखिए
0: जी,
1: लिख के ये स्ट्रेस रिलीज होगा। सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए
0: जी।
1: ये स्ट्रेस सारे रिश्तों पे आता दिख रहा है आने वाले टाइम में। आप अगर बाहर से फ्रस्ट्रेट होकर आ रहे हैं, आई कैन सी दैट स्ट्रेस कमिंग आउट। हैविंग सेड दैट, जहां मैं ये बोल रही हूँ, अगर मैं दूसरा कार्ड भी पुल आउट करूँ, आई सी दैट देर इज हैप्पी मोमेंट्स अहेड
0: जी,
1: खुशियां है आगे
0: जी।
1: देर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ऑलवेज रिमेम्बर दैट।
0: बिल्कुल
1: राइट। तो व्हाइल द टनल इज डार्क, but there is light at the end of the tunnel, so that is what the tarot says today.
0: How beautiful.
1: I hope that answers.
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अगेन बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेशनल टॉक्स थी। और मैं बहुत खुश हूं कि आज हम कनेक्ट हुए, कहीं ना कहीं ये डेस्टिन्ड थी ये कॉन्वर्जेशन। और हमारे श्रोता जी, हमारे श्रोता जो आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, अगर वो हमें सुन पाएंगे तो वो भी बाय डेस्टिनी आज हमारे साथ अलाइन हुए हैं इस कॉन्वर्जेशन के लिए, तो आई एम श्योर उन्हें बहुत फायदा होगा। दोस्तों, जिंदगी के रंग कभी कभी बहुत कठिन होते हैं, लेकिन कभी कभी उन रंगों से ही एक नई तस्वीर बन के आती है। आज की महफिल में हमारे साथ थी मिस पूजा शर्मा, जिन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी लाए। पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एक बार फिर से।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसके थ्रू मैं इतने सारे श्रोताओं से उनसे बात कर पाई, उनको छोटी सी टिप्स दे पाई। थैंक यू सो मच, आप बहुत ही ब्यूटीफुल काम कर रही हैं, एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लक एंड लव एंड लाइट इन योर लाइफ।
0: थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग, आपकी अपनी आरजे तरानों की हम सफर तनुषा के साथ, सिर्फ एसएन रेडियो पर। मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान और नए गीतों के साथ और जिंदगी के एक और नए रंग के साथ।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है अनुभवों की विरासत और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं ऐसे व्यक्तित्वों से जिनका जीवन केवल वर्षों का नहीं अनुभवों का खजाना है। आज हमारे साथ है एक ऐसे ही सधे हुए, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाले व्यक्तित्व डीएन शर्मा जी, जिन्होंने अपना जीवन बैंकिंग जैसी अनुशासित दुनिया में बिताया पर दिल हमेशा साहित्य की भावनाओं से जुड़ा रहा। वे न केवल एक सफल बैंक अधिकारी रहे बल्कि हिंदी साहित्य के प्रेमी, सामाजिक रूप से सक्रिय नागरिक और अपने 95 वर्षीय पिता के समर्पित पुत्र भी हैं। उनकी कलम सामाजिक पाखंडों को बेनकाब करती है और उनके शब्द समाज के आईने में हमें अपना असली चेहरा दिखाते हैं। आज के इस विशेष संवाद में हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा, उनके साहित्यिक विचार, उनके सामाजिक दृष्टिकोण और वह दर्शन जिसने उन्हें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखा। तो आइए स्वागत करें डीएन शर्मा जी का और चले उनके साथ एक आत्मीय सफर पर अनुभवों की विरासत के इस प्रेरक संवाद में। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आपके पिछली जिंदगी से। आपने अपना एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग की दुनिया में बिताया, एक अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित यानी टारगेट ओरिएंटेड जीवन। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस यात्रा को कैसे देखते हैं?
1: जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 36 वर्ष 8 माह की मैंने बैंकिंग की सेवा की है। पंजाब नेशनल बैंक में कार्य किया और बैंक ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं बिहार, गुजरात, हरियाणा आदि आदि कई राज्यों में मेरी पोस्टिंग रही, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना हुआ, वहाँ की संस्कृति को देखा, निकट से जाना। बिहार एक बहुत ज़्यादा प्रचारित स्टेट है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने निवास किया, वहाँ रहा, तो ये पाया कि वहाँ के लोग उतने ही सीधे और सरल हैं। बहुत ही अच्छा लगा, हालांकि वो बात बहुत पुरानी हो गई, 90 में हम वहां से वापस आ गए।
0: इसके
1: साथ ही बैंकिंग जीवन में जो लक्ष्य थे वो बैंक में थे, बाहरी जीवन में हम ग्राहक सेवा और एक टीम वर्क, ये दो भावनाएं मुझे वहां से सीखने को मिली। आप एक अच्छी टीम के साथ जब चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, और टीम बनाना आपके हाथ में, टीम के हर सदस्य का ख्याल रखना, तो अच्छी टीम का निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु। तो ग्राहक सेवा एक ऐसी सेवा है जो ना सिर्फ बैंक का नाम रोशन करती है, वरन एक जो कहते हैं ना कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है, ये संघ का एक मूल वाक्य है। तो नारायण सेवा यानी कि भगवान की सेवा। आप किसी अत्यंत कष्ट में जो आदमी है उसकी अगर अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं तो वो ग्राहक सेवा बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है, और वो हमने की है। कई बार ऐसा हुआ, एक बार एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। राजकोट में मेरी पोस्टिंग थी, रात 11 बजे मुझे फोन आया कि साहब आपका एटीएम काम नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छा। आप जी? तो बोले मैं अपने पिताजी को शहर वहां गांव से लेके आया हूँ और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, एटीएम काम नहीं कर रहा और मुझे पैसे चाहिए। मैं तुरंत एटीएम पे गया, पास में ज्यादा 1.5 किलोमीटर था राजकोट में जहां मैं रहता था, वहां उसकी परेशानी को समझा और सौभाग्यवश उस समय मेरे पास, मैंने कहा कितना पैसा चाहिए? कि साहब 5,000 चाहिए, आप चाहे तो मेरा ये कार्ड रख लें, मैं सुबह आके बैंक में आपको दे दूंगा पैसे। सौभाग्य से 5,000 रुपए। हम लोग बैंकर पैसे ज्यादा रखते नहीं है, लेकिन उस दिन किसी उस दिन किसी कारण से मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा उसको मैंने वही पैसा दिया, क्योंकि वो बोला अब रात में मैं कहाँ जाऊं साहब। मैं तो इसी विश्वास पे आया था कि एटीएम से पैसे मिल जाएंगे, तो मुझे वो विश्वास उसका बरकरार रखना था। पैसे लिए, दूसरे दिन आके वो मुझे दे गया, बात आई गई हुई। लेकिन उस समय विशेष में अगर उसकी मैं हेल्प कर सका तो ये मेरे लिए अवसर था।
2: संतोष मिला आपको, संतोष मिला आपको, बिल्कुल सही,
1: बहुत ज्यादा। हाँ
2: चलिए।

0: चलिए तो फिर थोड़ा सा और किसी तरफ रुख करते हैं।
1: जी
0: आपकी साहित्यिक रुचि के बारे में मैंने बहुत सुना है, क्या साहित्य की रुचि आपकी नौकरी के साथ साथ रही या सेवानिवृत्ति के बाद उसे गहराई से जीने का अवसर मिला है?
1: साहित्य से लगाव तो शुरू से ही रहा। बचपन में जब ये हिंदी में भी हमारे सिलेबस में गद्य और पद्य दोनों ही हुआ करते थे, तो बहुत सारे ऐसे गद्यों की पद्यों की मैंने ऐसे कंठस्थ हो गए जिन्हें मैं जोर जोर से बोल करके सुनाता था।
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: दिनकर
0: जी
1: साहब का रश्मि रथी है,
0: हाँ अच्छा, रश्मि रथी, बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: साहब वो बहुत, उसको भी मैंने बहुत गा गा करके भी सुनाया है।
0: अरे वाह, अरे
1: और
0: वाह, अच्छा।
1: हाँ, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही कुछ इसे खा लेंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे,
0: वाह, अभी सुनेंगे कभी। वाह, बहुत
1: पर
0: बढ़िया।
1: दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की लेने। बहुत लंबी है तो उसके ये 2-3 लाइनें थी। बाद में जब किशोरावस्था आई तो उस जमाने की जो पत्रिकाएं थी उनमें साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी,
0: हाँ,
1: तारिका,
0: धर्मयुग, धर्मयुग।
1: धर्म युग, ये अब बंद हो गई हैं,
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इन्होंने ये साहित्य से ही जुड़ी सारी पत्रिकाएं
0: पत्रिका
1: थी।
0: पर, बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और इनके जो विशेषांक आते थे किसी न किसी एक राइटर, किसी एक लेखक के जीवन जी को
0: जी
1: लेकर, तो उन
0: जी
1: लेखकों
0: बिल्कुल।
1: से भी मेरा वो हुआ। मुंशी प्रेमचंद हो, निराला जी हो, दिनकर जी हो, मनु भंडारी
0: दिनकर
1: हो,
0: मन मिटा रहे हो,
1: फणीश्वरनाथ रेणु हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, दिन हाँ,
0: वृंदावन
1: मोहन
0: लाल
1: राकू,
0: वर्मा, वृंदावन लाल
1: मोहन लाल,
0: वर्मा।
1: मोहन
0: हाँ
1: राकू, और हिंदी गजलों के सर्जक दुष्यंत कुमार, तो मैंने सारिका से
0: हाँ
1: ही उनके यहाँ
0: अच्छा,
1: एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हाँ,
0: तैयारो, कौन
1: कौन
0: कहता है आसमान में
1: कहता है
0: सुराख हो नहीं
1: सकता हो
0: सा।
1: नहीं
0: अरे
1: सकता।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: दूसरा कि
0: बिल्कुल।
1: हंगामा, सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं
0: नहीं,
1: है,
0: मेरी
1: ये हालात
0: सूरत
1: या
0: बदलने चाहिए,
1: बदलने चाहिए था वो।
0: बिल्कुल
1: तो ये
0: बिल्कुल।
1: काफी इन्होंने जीवन में ये बातें अभी भी दिमाग में कौत की है। हाँ, और
0: आपकी इतनी सी बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी है, क्या बढ़िया
1: एक
0: बढ़िया पुरानी बातें। और वो हिंदी गद्य पद्य संग्रह आपने याद दिला दिया बचपन का, और
1: जी
0: कादम्बिनी, ज्ञानोदय, और धर्मयुग, और साप्ताहिक
1: हाँ
0: हिंदुस्तान की याद दिला दी।
1: जी
0: वाह,
1: जी जी कहा
0: मजा आ गया।
1: तो वो है ना,
0: चलिए,
1: मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है दिनकर
0: जी
1: जी
0: जी
1: का ही
0: बिल्कुल,
1: है
0: दिनकर जी का, दिनकर
1: ये।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: ये ऐसी लाइनें हैं, अमिट है, ये हमेशा रहेगी जीवन जी, मान मस्तिष्क पे।
0: बिल्कुल।

0: को अभी नाम दे दिया, या कवि जो आपके मन पे सबसे गहरी छाप छोड़ गए हैं, कौन है ऐसा?
1: एक तो ये पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, ये जो पुष्प की अभिलाषा बहुत
0: पुष्पी
1: ही,
0: अभिलाष। हाँ
1: चाह नहीं मैं फूलों में गूथा जाऊं, हाँ चाह नहीं मैं चढ़ा शीश पर हरी के इठलाऊं, है ना
0: इठलाऊं
1: लास्ट,
0: इठलाऊं
1: हाँ लास्ट है ना, कि मुझे तोड़ लेना बनवाली
0: छोड़
1: उस
0: देना
1: पद पर, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर रहे।
0: वीर अनेक। बहुत बहुत
1: ये बहुत अच्छी लाइनें थी जो अभी तक भी देश सेवा के लिए प्रेरित करती है।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया
1: कहानियों में वो ईद का।
0: अब आपने रश्मि रति की बात की थी,
1: जी
0: आप चलिए कोई ऐसी रचना या कविता या पंक्ति जिसने आपके जीवन दर्शन को बदल दिया हो उसके बारे में कुछ बताएं, अगर उसको सुनाना चाहें थोड़ा सा ब्रीफ में तो आपका स्वागत है।
1: कविता मैं तो अपनी वो मेरी खुद की बताई हुई है, लेकिन वो अभी सुनाता हूँ।
0: सुनाइए
1: तो
0: सुनाइए
1: सुनाता हूँ, अभी बन पाई है, आज समय अभाव में ऐसा कम मिलता है, लेकिन
0: जी।
1: है कि भीतर जज्बात गड़े हुए,
0: अच्छा
1: भीतर जज्बात गड़े हुए, बाहर मुखौटे चढ़े हुए,
0: ओहो ओहो
1: सच की कीमत गिरती रोज, झूठ के सिक्के गड़े हुए,
0: वाह अच्छा अच्छा
1: नैतिकता के गीत सुनाए, नैतिकता के गीत सुनाए, खुद लाभ के राह बनाए, जन सेवा के वचन बड़े पर कर्म स्वार्थ में लिपट जाए, और लास्ट है कि दिखावे के छंद रचे, दिखावे के छंद रचे, असली मूल्य तो कहीं गुम, सामाजिक मंच पर नाटक चलता, अंतःकरण में मूक है हम।
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब ये सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारा चीजें बदल गई हैं, धर्मयुग और ये सब चीजें तो पुरानी हो गई है, आप ये बताइए इसके आज के डिजिटल युग में आप हिंदी साहित्य की भूमिका को कैसे देखते हैं, क्या ये पिछड़ रहा है या नए रूप में उभर रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: पिछड़ तो नहीं रहा, स्वरूप तो बदल रहा है।
0: अच्छा
1: पहले जो पहले प्रिंट मीडिया था, आज डिजिटल मीडिया है। प्रिंट मीडिया में जब कहानियां, उपन्यास या कुछ भी सृजन होता था, लिखा जाता था, तो थोड़े ही हाथों में जाता था, थोड़ी आंखें उन्हें पढ़ पाती थी, पर आज हर हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसपे आपकी कही हुई बात तुरंत सब जगह फैल जाती। तो वास्तविक रूप से तो जनमानस जो हमारा जो माइंड सेट है उसको प्रभावित करने का ये सोशल मीडिया है, यही तो है सर। पहले भी साहित्य यही करता था, पहले का साहित्य घटनाओं का घटनाएं घटने के बाद उनका वर्णन करता था, लेकिन शिक्षक तो एक अलग चीज थी, वो पिक्चर और उसमें वो अलग मीडिया है, लेकिन प्रिंट मीडिया में मैं जब बात करता हूँ तो जो फिक्शन कला जब घटनाएं घट जाती है उसके ऊपर उसका विवेचन होता था। आज तो दृश्य मात्र सब कुछ आपके सामने होता है, लोग हाथों हाथ उसके वीडियो भी बना देते, ये भी तो सत्यता आज बिल्कुल लोगों को जानने को मिल रही है, हर चीज उनके सामने है, तो उसके बाद वो अपने निर्णय ले सकते हैं क्योंकि माइंड सेट वैसा ही बनता है। तो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है और जो साहित्य, यानी कि साहित्य नहीं रचा जा रहा, साहित्य भी है लेकिन जो बातें पुरानी है, इतिहास, इतिहास का भी हमें पहले जितना बताया गया था उतना ही मालूम है, लेकिन आज लोग उसको कुरेट कुरेट के कुरेट कुरेट के सारे प्रस्ताव के सामने ला रहे, तो बहुत अच्छा भविष्य है। एक स्वरूप बदल गया, जागरूकता बढ़ गई, ये मैं मानता हूं।
0: नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्विटर पे घटना घटती नहीं है, कोई स्टेटमेंट देता नहीं है और उसके रिएक्शन से एकदम ट्विटर पे या फेसबुक पे और इन पे आने शुरू हो जाते हैं, और कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सीडेंट होते ही उसकी एकदम तुरंत खबर भी आ जाती है और रिलीफ भी पहुंच जाती है, हर प्लस एंड माइनस दोनों रिलीफ भी पहुंचती है। देखे दोनों ही बात
1: है। दूसरी बात है कि जो युवा जो है जिसको अपन समझते हैं कि साहित्य में रुचि नहीं लग रहा, वो भी इसमें पूरा सक्रिय है ना, वो उसके पास पहले पहुंच रहा, वो उसके पास पहले पहुंच रहा, वो उसकी प्रतिक्रिया पहले आ रही।
0: बिल्कुल सही बात। अब जैसे लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल होने लग गए और काफी सफल हो गए और काफी युवाओं की भीड़ भी होती है वहां, तो मतलब ठीक है, उसका अपना एक माइनस पॉइंट भी है, थोड़ा सा वहां कॉमर्शलाइजेशन है, लेकिन फिर भी चल ही रहे हैं, वो अलग बात है।
1: ये जयपुर डायलॉग अभी होगा 7-8 नवंबर, मैं 3 साल से जा रहा हूँ, ये तीसरी बार होगा मेरे।
0: हाँ, जयपुर डायलॉग आने वाला है, मैं भी जाऊंगा।
1: बहुत अच्छे, वहाँ सारे राष्ट्रवादी विचारकों के लोग आते हैं, उनसे व्यक्तिगत आप मुलाकात करते हैं, उनसे सेल्फी खिंचवाते हैं, तो बड़ा आनंद आता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आऊंगा। और मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, वो संजय दीक्षित का बड़ा फैन है, वो भी आ रहा है अमेरिका से, सिर्फ इसके लिए आ रहा है। बोले कमाल है ना,
1: कमाल नहीं, मेरे अपने राजकोट मेरे साथ जो काम किए हैं व्यास जी महाराज, वो भी आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही फोन कर दिया कि आप वही है, मैंने कहा हाँ। बोले मैं उसमें आ रहा हूँ सर, मैंने कहा आओ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।

0: उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कनिया आ रे बर्फी के सब रस ले लिया रे बिंदड़े वाले मुनिया।
1: चलिए तो ये जो आपने कविता भी सुनाई इससे ये लगता है कि आप समाज की जो दोहरी मानसिकता है या पाखंड है या हाइपोक्रेसी है इसको ये आपको सबसे ज्यादा खटकती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों हो रहा है और आपको ही क्यों ऐसा महसूस होता है कि हाइपोक्रेसी बहुत ज्यादा है, हाइपोक्रेसी और पाखंड बहुत है हमारे समाज में, डबल स्टैंडर्ड जिनको कहते हैं।
2: इसका मूल मूल कारण जब मैं खोजता हूँ तो एक जो धारणा हम लोगों के मन में बिठाई कि पुण्य मिलेगा, है ना, एक आम धारणा बिठा देते ना, ऐसा करने से पुण्य मिलेगा, गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा करने से यह होगा। भाई मूल तो यह है कि वो पाप करे ही क्यों, ताकि धोना पड़े। दूसरा
1: अच्छा
2: पुण्य कमाना का, आज जब मैं देखता हूँ अभी जा रहा था मेरे नाती को छोड़ने तो सड़क पर कुछ लोगों ने हरा चारा वहां रखा हुआ और गायें थोड़ी सी वहां कर रखी है, और अब जो पुण्य कमा रहा है वो 10 रुपए की वो एक पुली खरीद के वहां बिखेरता, वो सड़कों पे ट्रैफिक तो बर्बाद हो ही रहा ना, ट्रैफिक का नुकसान हो, लेकिन वो पुण्य कमा रहा है, ऐसा पुण्य तो कोई काम का नहीं है। दूसरा बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की, ये जो वृद्धाश्रम और ये जो खोल रहे हमारी संस्कृति में ही नहीं, हमारे जीवन मूल्य ये कहते ही नहीं थे
1: जी।
2: जो वृद्ध था उसकी तो घर में ही सेवा होती थी,
1: बिल्कुल सही कहा।
2: तो ये जो जीवन मूल्य राजनीतिक सुचिता कहाँ है सर, राजनीतिक सुचिता हम अच्छा हमारे समाज में ये कहते हैं कि कमजोर की सहायता तो करते नहीं है और विश्व के कल्याण का नारा लगाते हैं, तो विश्व का कल्याण कब होगा, जब मेरा पड़ोसी है, अगर वो किसी कारण से अभाव में है तो उसकी तुरंत सहायता हमको करनी चाहिए ना, वो हम नहीं कर पा रहे, तो ये है दिखावा। आप जा रहे हैं मंदिर में लोगों को दिखाने के लिए, वहां खूब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर भी अगर कोई गरीब या कोई वीक आदमी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, कभी उसको पूछेंगे नहीं जाके कि भैया क्या हाल है, कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बता, तो ये अगर ऐसा करे तो अपने आप ही सारा समाज स्वस्थ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं देखता हूँ। और
1: सही
2: दोहरी मानसिकता सर अब खाली इसमें ही नहीं है, आप देखें आर्थिक जीवन मूल्यों का तो बहुत ही पतन हो, अगर आर्थिक जीवन मूल्य का मैं यही मानता हूँ कि आज देखते हम मिलावटी क्यों मिलता है सर, नकली क्यों होता है, हर मसाले खाने की चीज जिससे हमारा स्वस्थ रहना है आदमी को, उसमें मिलावट, नकली मिठाइयां आ रही है, नकली मावा आ रहा है, तो ये आर्थिक रूप से मैं इसको आर्थिक जीवन मूल्यों का पतन देखता हूँ, वहां पारदर्शिता नहीं है, आप कमाए ना भाई, हर एक आदमी बैठा है कमाने के लिए, रोजी रोटी है, आप आजीविका करें, लेकिन जीवन वहां पे भी तो मूल्य रखें कुछ, कि मैं कुछ भी हो जाए मैं नकली या ये सब स्टैंडर्ड का काम नहीं करूंगा। ये यहां मैं वो देखता हूँ, हम देखते सारे सरकारी, हर आदमी क्यों भाग रहा है सरकारी नौकरी मिल जाए, क्यों, क्योंकि वहां वो तनख्वाह जो मिलेगी ना काम करने की, वो उससे संतुष्ट नहीं होता, वो तो काम करने के अवज में जो मिलने वाला है उससे संतुष्टि आती
1: है।
2: अच्छा मुंशी प्रेमचंद ने साहब इसको कब नमक का दारोगा 100 साल पहले,
1: नमक का दारोगा बहुत साल
2: उसने लिख दिया था कि ये ऊपर की इनकम तो वो ये अमावस्या का चांद है जो दिखता नहीं है लेकिन बढ़ रहा है,
1: बिल्कुल सही बात,
2: और खाली तनख्वाह तो पूर्णमासी का चांद है जो एक बार दिखती है महीने और बाद में सिनेशन है लुप्त हो जाती है, वो ये आज भी जब है समाज में हम ठीक नहीं कर पाए, ये मेरे को कचोटती है बात।

0: नहीं बिल्कुल यार, मुझे भी आपकी बातों पे याद आ गई, एक सज्जनता का दंड एक प्रेमचंद जी की कहानी हुआ
1: अरे साहब, हाँ, प्रेमचंद
0: करती थी
1: जी
0: तो
1: ने तो,
0: उसमें
1: प्रेमचंद
0: भी
1: जी ने जो वो सामान्य मानसिकताओं का जो वर्णन किया है ना, वो सब, वो
0: बहुत
1: अभी तक मैं
0: बहुत
1: उनके नजदीक किसी को नहीं पाता।
0: बिल्कुल
1: उनकी
0: सही
1: गहरी
0: बात है,
1: संवेदनशील लेखन जो था ना उनका, एक आदमी
0: बहुत
1: के अंदर तक घुस करके उसकी भावनाओं को जो उजागर किया है, कोई भी कहानी उठा ले वो
0: कोई भी
1: अभी
0: कहानी
1: तक। हाँ, अभी मैं बहुत कम साहित्यकारों को ऐसा मानता हूँ, हालांकि सबकी अपनी अपनी विधा है,
0: हो,
1: सब
0: सही बात
1: अपने
0: है।
1: अपने क्षेत्र में है, लेकिन वो मानवीय मूल्यों और ये संवेदनशीलता को जो लिखा है वो मुंशी प्रेमचंद।
0: बहुत बहुत सही बात है, क्या पुरानी बातें याद आ गई आपके साथ बात करके। चलिए, अब साहित्य समाज में परिवर्तन ला सकता है, या कुछ लगता है आपको कि अगर साहित्य पॉजिटिव लिखे या अच्छा लिखे तो उससे कुछ समाज में परिवर्तन आ सकता है? क्या किया जाए इस स्थिति?
1: देखो, अभी मैं जब साहित्य के बारे में अपन बात करते हैं तो मैं ये देखता हूं कि अभी युवाओं का जो हुआ, ये एक IITian हुआ है ना, जिन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड हाफ वाइफ, और ये जिसपे एक पिक्चर भी बनी है अभी, एकदम से विस्मृत हो रहा है नाम उसका। तो उनका साहित्य
0: अच्छा,
1: देखता हूं तो युवाओं के लिए तो उन्होंने कम से कम चार पांच उनके अच्छे उपन्यास हैं। हाँ,
0: चेतन भगत की बात कर रहे हैं क्या आप?
1: चेतन भगत, चेतन
0: चेतन भगत की
1: भगत
0: बात कर रहे हैं? हाँ
1: है, वो भी साहित्य
0: चेतन,
1: है। तो
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने,
0: वो भी सर।
1: लेकिन उन्होंने, मैंने पढ़ी उसकी दो दो उपन्यास।

0: वचन देने आए हैं वो पंडाल भरे हुए हैं,
1: पंडाल भरे हो जाता है।
0: आप देखे अभी विद्याधर नगर में भी काफी ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई है,
1: हाँ हुई है, और महिलाओं की संख्या बहुत होती है उसमें, महिलाएं तो भरी पड़ी है, बड़ी पड़ी है।
0: हाँ साहब,
1: क्या है,
0: तो वो है संत महात्मा। अच्छा मुल्ला मौलवी है, मौलवी साहब ने मस्जिद में जो तकरीर कह दी है वो ज्यादा प्रभावी है, तो वो अगर हमारे समझदार होंगे तो वो समाज को परिवर्तित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही।
0: ये मेरा ऐसा मानना है कि हम क्योंकि अभी भी हम धर्म गुरुओं के उपदेशों से ही प्रभावित होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, तो भले ही हम कहते रहे कि हमारी सोच, हम तो बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन कर्म कांडों से तो मुक्त ना हो पाए। तो परिवर्तन परिवर्तन के लिए मुख्य जो हस्तियां है तो उनमें मैं इनको मानता हूं कि साहित्य उसकी रीच बहुत कम है, साहित्य को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो इनकी रीच ज्यादा है। तो अगर वास्तविक परिवर्तन लाना होगा तो हमें इनसे ही इनसे गुजारिश करनी होगी कि ये अच्छी बातें बताए।
1: सही बात
0: है, जैसे हमारा दर्शन बहुत बढ़िया, सनातन का भी दर्शन बहुत बढ़िया, विश्व बंधुत्व की भावना है, निरामया है, यही सब हमारे है, हमारे विश्व का कल्याण हो, यही कहते हैं ना बाबा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: तो ये ज्यादा प्रभावकारी और परिवर्तनकारी इन लोगों की भूमिका है, ये अच्छे होने चाहिए। और दूसरा हमारे जो शिक्षक वृंद है जो प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, बड़े नहीं प्रारंभिक, क्योंकि वहां हमारा बेस तैयार होता है, हमारी सोच का जो बेस है मूल वो वहां तैयार होता है। तो वहां पे हमें जो भी हमारे शिक्षक वृंद है वो इतने उत्तरदायी अपने आप को समझे कि यार मेरा ये ड्यूटी है कि मैं बच्चों में अच्छे संस्कार डाल, तो वहां से शुरू होगा, मेरा ये मानना है।
1: बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका बहुत सही है। शिक्षक की जो समाज में स्थिति अब बन गई है वो बहुत ही पीड़ादायक है, मैं तो यही कहूंगा। एक जमाने में गुरु का जो प्राइमरी का स्कूल का टीचर होता था वो जिंदगी भर याद रहता था, और कितना भी आदमी बड़ा बन जाए उसके जाके चरण स्पर्श करता था,
0: पांव छूते थे।
1: लेकिन अब तो
0: हम तो छूते हैं, हमारे जो पुराने गुरु हैं।
1: अब ये पंचायत नगर पालिकाओं ने इनने बिल्कुल टीचर्स का बहुत बहुत ही वो एक्सप्लोइटेशन कर दिया है, पर
0: एक्सप्लोइटेशन भी हुआ है। दूसरा वो अपनी जवाबदारी से भी मुक्त हो गए, उनका ये मानना है कि ये इतना पैसा मिल रहा है ये काम किया जाएगा,
1: बहुत बहुत है बहुत। और फिर सरकारी नौकरी है इसलिए कोई बात है नहीं,
0: इनका कुछ है नहीं। अच्छा पढ़ाने का काम सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे
1: हैं। वो लंबी डिस्कशन है।
2: दिल का हाल सुने दिल वाला।

0: चलिए, अब थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं
1: जी
0: आपके। आपसे चर्चा में पता लगा आप अपने 95 वर्षीय पिता की देखभाल कर रहे हैं।
1: जी जी
0: ये बहुत ही अलग है। ये अनुभव आपको जीवन, धैर्य और परिवार के बारे में क्या सिखाता है, और क्या ऐसा इमोशनल कनेक्ट है आपका अपने पिताश्री
1: जी
0: से, जिसको आप इस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं हमें।
1: जी सर, हमारे तो हमारी जो मूल अवधारणा है ही कुटुंब की। हाँ, कुटुंब में जो सबसे बुजुर्ग होते थे उनकी एक आवाज भी सारा कुटुंब सहम जाता था, पूरा परिवार। याद करें सर आप भी। और
0: जी
1: आज
0: बिल्कुल
1: स्थितियां कहाँ आ गई हैं। आज आज अपने बच्चे या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं, अरे आप तो कुछ पता नहीं सर, आप कुछ नहीं
0: बिल्कुल
1: जानते। लेकिन
0: सही
1: हमारे सांस्कृतिक मूल्य वही हैं, जीवन मूल्य वही हैं। अब पिताश्री
0: जी
1: आज 95 पूर्ण करके, अभी 96 तो हम मनाएंगे, उनकी दिवाली के बाद आती है उनकी। हर साल
0: जी
1: हम उनकी
0: जी
1: जन्मदिन मनाते हैं,
0: जी
1: उनको अच्छा भी लगता है। अब
0: बहुत
1: क्या है,
0: सुंदर
1: शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए, तो चलने
0: जी
1: में भी उनको मैंने बिल्कुल मना किया हुआ कि आपको कहीं पे भी जाना हो तो मुझे बोला, मैं साथ चलूंगा। तो जितनी भी चिकित्सकीय जरूरत है होती है, इस एज में डॉक्टर को
0: नेचुरली
1: दिखाना है मैं जाऊंगा साथ में, दवाई लानी है मैं जाऊंगा साथ में। मैं जब उनके सुबह सुबह का मेरा समय होता है 11 बजे के आसपास, तब उनके पांव दबाने का और हाथ दबाने, तो
0: अच्छा
1: जूही में वो शुरू करता हूँ सब, तो वो निद्रा में चले जाते हैं। वो सुख की उनकी जो अनुभूति है ना,
0: अरे
1: निश्चिंत
0: वाह।
1: होकर के, तो वो मुझे जो ऊर्जा देता है ना, वो दृश्य, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर पा रहा हूँ। भगवान की इतनी कृपा हुई है मेरे पे कि हम कुछ कर पा। दूसरी बात, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब समाज में, वो द्विगुणित होके त्रिगुणित होके वापिस आएगा।
0: वापस
1: हम
0: आएगा।
1: बिल्कुल, हम जैसा जो भी कर, हम अगर किसी को गालियां और ये दे रहे हैं तो वो उससे ज्यादा हमको पड़ने वाली है आगे। क्या तो हम अगर ये संस्कार अपने बच्चों में दे पा रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, तो उनमें भी वो संस्कार आएंगे। हालांकि मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है कि लोग ऐसा मुझसे भी करें, लेकिन अगर संस्कार है तो स्वभावतः ही वो होगा,
0: सही
1: ऐसा
0: बात
1: मैं
0: है,
1: मानता हूं। तो ये है सर।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही बात है।
1: पिताश्री का तो जो पितृ ऋण है वो तो हम चुका तो नहीं सकते, तो उसको थोड़ा थोड़ा किस्तों में इस प्रकार से हम पूर्ण हुआ चाहते हैं। तो और सुख जो मिलता है वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है साहब।
0: ये बहुत ही सुंदर विचार है, और कुछ बड़ा पीड़ा का विषय है कि आज के समाज में ये प्रवृत्ति बहुत ही कम है। बच्चे महानगरों में रह रहे हैं, कुछ विदेश में रह रहे हैं, तो पिता को जो
1: बिल्कुल बिल्कुल छोड़
0: सेवा करने का
1: देते
0: जो
1: हैं,
0: सुख है वो तो
1: वो
0: बिल्कुल।
1: नहीं मिल पा रहा है। हाँ
0: मैं किसी जमाने में बापूनगर में था तो बहुत सारे ऐसे लोग आया करते थे बैंक में,
1: हाँ
0: जो इस तरह से
1: हाँ
0: क्या
1: तो
0: कहें इसके बाद।
1: उसी को
0: बहुत
1: देख के तो जैन साहब ने टाइम बैंक
0: हाँ,
1: बनाया
0: टाइम बैंक बनाया है हमारे पीसी जैन साहब ने, बिल्कुल सही
1: है।
0: बात।
1: तो वो टाइम बैंक क्या है, आपको समय दो बुजुर्गों
0: यही
1: को,
0: है, समय दो, जो लोग लोनली है उनको समय दो, यही बात है,
1: ओके,
0: बिल्कुल सही
1: उनको
0: बात,
1: समय ज्यादा चाहिए सर। वो
0: बिल्कुल
1: आज की
0: बिल्कुल
1: तारीख में, हमारी माताश्री चली गई थी 2014 में, तो
0: जी
1: उसके बाद वो जो लोनलीनेस होता है ना, एक
0: हाँ। वाह, कौन
1: वो उनकी बात सुनेगा कौन, वो।
0: सुनेगा, बिल्कुल
1: और दूसरी, कोर्ट में कहा दिया है कि सुनते नहीं है, तो वो
0: हाँ
1: स्थितियां ऐसी है कि हम कोई बात कहे भी तो 2-3 बार में धीरे से कान के पास ले जाकर वो
0: क्या
1: समझाना पड़ता है।
0: सुन, समझाना पड़ता।
1: तो उनका जो, वो मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे ग्रैंड सन, मेरा जो पोता है, उसकी
0: जी
1: हरकतें है और पिताश्री की हरकतें, वो मिलती
0: मिलती है, बिल्कुल,
1: जुलती
0: कहता है
1: है।
0: बचपन वापस आ जाता है, बिल्कुल
1: हाँ
0: सही
1: सर,
0: बात,
1: वही केयर उनको देते हैं, वही केयर इनको चाहिए, हमको भी तो मिली है सर।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये है मेरी भावना।
0: बहुत अच्छा।

0: आप सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं, किन
1: जी
0: सामाजिक मुद्दों या गतिविधियों से जुड़े हुए हैं शर्मा जी आप?
1: सामाजिक में तो देखो सर, मैं एक ही बात मेरे को ये समझ में आई कि सेवानिवृत्ति के बाद आप जब दैनिक कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, अब जाना नहीं है, कहीं ड्यूटी
0: जी
1: पे नहीं जाना है, तो आपके
0: जी
1: पास समय होता है, तो एक रिक्तता आ जाती है, अरे अब क्या करें। तो
0: बिल्कुल सही बात
1: अब
0: है
1: तब जुड़ा मैं संघ से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, और
0: आरएसएस
1: उस
0: से जुड़े। अच्छा,
1: जी उसमें नियमित है मेरा सुबह का 1.5 घंटा शाखा में जाना, और ये सब
0: अच्छा
1: कर वहां की
0: ओके
1: मूल
0: जी
1: भावना है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, तो वो देश को दें या समाज को जो कुछ हम दे पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक और है, उसमें सेवा विभाग है, तो
0: अच्छा
1: सेवा विभाग में कुछ ऐसी बस्तियां होती है या क्लस्टर रूप में लोग रहते हैं, वो वंचित
0: अच्छा
1: हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित है, अभावग्रस्त है। ऐसे
0: अच्छा
1: लोगों की जो बस्तियां हैं, अभी जयपुर शहर में 223 के करीब ये ऐसी बस्तियां चिन्हित की हुई, वहां जाकर
0: अच्छा
1: के
0: अच्छा
1: जी,
0: जी
1: वहां पे बाल संस्कार केंद्र है, वहां 4 प्रकार के आयाम है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य चिकित्सा का है, और स्वावलंबन का है, एक शिक्षा का है, और स्वरोजगार का है। इनके
0: अच्छा
1: तहत हम उनको वो कार्य करवाते हैं बाल संस्कार
0: अच्छा
1: में। अब ऐसी ऐसी बस्तियां जहाँ वो सब पेरेंट्स तो निकल जाते हैं लेकिन बच्चे रहते हैं, वहां 2 घंटे के लिए एक कोई शिक्षिका लगा के उनमें संस्कार जगाते हैं कि किस तरह उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ ये है। तो एक तो वो कार्य है, दूसरा अपना ये है ही सर, ये एसोसिएशन में भी अब पुराने साथी हैं, सब मिल करके देंगे
0: हाँ,
1: आप
0: उसमें मिलते हैं मिलते हैं। वो तो है
1: उसमें
0: ही।
1: भी सचिव बना दिया मेरे को, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन
0: जी,
1: में जयपुर यूनिट का, तो उसका भी कार्य रहता ही है।
0: उसका
1: अब आज
0: लगा।
1: आज ही शाम को 4 बजे बैठक रखी है उसकी
0: अच्छा,
1: त्रैमासिक
0: चलिए, बहुत बढ़िया।
1: ये है समाज में।

0: तो चलिए, अब मैं एक अंत में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
1: जी
0: सफलता और सुख की परिभाषा अब आपके लिए क्या है इस दौर में, और क्या
1: हाँ
0: ये आपके युवा दिनों से अलग है जब आपने पहले कुछ सोचा था और अब कुछ महसूस होता है? क्या कैसे परिभाषित करेंगे?
1: जैसे सर, सफलता हम तब मानते हैं कि जैसे आज आज की तारीख में मेरी सारे जवाबदारियां जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सभी बच्चे मेरे अच्छे अच्छे अपने कार्य कर रहे हैं, अपने अच्छी जगह है। मेरा बेटा अभी आई

0: में अच्छी पोजीशन पे है। एक एक बेटिया SBI में सीनियर मैनेजर है और एक बेटी लेक्चरर है वहाँ जोधपुर में। तो वो सब
1: अच्छा
0: अपने अपने क्षेत्र
1: अपने
0: में
1: अपने
0: अच्छा,
1: सेटल
0: हाँ अच्छा कर रहे,
1: सर।
0: तो वहां तक तो ठीक है। अब आता है बात सफलता और सुख। तो सफलता तो यह है कि आपने सबको अच्छा किया है। अब सुख की परिभाषा मैं ये समझता हूं कि एक स्वस्थ शरीर और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये दोनों है तो हम सुख में हैं। हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे सफलता या असफलता हमारे अपने कर्मों पर ही तो आधारित है। हम उसे कितनी कुशलता से कितने योग्यता से करेंगे वही तो है। तो
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और कृष्ण भगवान ने कहा भी कर्म तो हर इंसान को करना ही है। कर्म तो आपको कर्मशील तो रहना ही है। तो कर्म जब करेंगे ही और उनका परिणाम भी मिलेगा ही, तो फिर अच्छे कार्य क्यों ना किए जाए। ये मेरा एक मूल सिद्धांत रहा है और मैं अपने जीवन से अभी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हाँ युवावस्था में क्या अलग थी विचार, युवावस्था में तो एक छोटी छोटी बातों पे भी हम कुंठाग्रस्त हो जाते थे और
1: हाँ
0: ये
1: सही
0: क्यों
1: बात
0: नहीं हुआ है ये
1: है।
0: वो
1: सही बात।
0: कुंठाएं आपको विचलित भी करती है। उनपे अपन को कंट्रोल, अब तो खैर अध्यात्म भी थोड़ा बहुत अध्ययन करने को मिलता है, करता भी
1: जी
0: हूँ। तो
1: जी जी
0: वहां जो दर्शन है हमारा जीवन का वो बिल्कुल अलग है। और ये क्योंकि वो अध्यात्म में तो संन्यास है और इधर कर्मयोग है, तो कर्मयोग जो अभी जो लोग कर्म में है उनको तो कर्म करते ही रहना और
1: करने
0: योग्यता
1: बिल्कुल सही।
0: के साथ जी
1: बस बस सही। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
0: जी
1: तो शर्मा जी, बहुत ही खूबसूरत सच्चा संवाद रहा आज का। और DN शर्मा जी ने हमें सिखाया कि जीवन की सफलता केवल कैरियर या पद में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, संवेदनाओं और रिश्तों को निभाने में है। इनकी यात्रा हमें एहसास कराती है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ते हैं और अनुभवों के साथ जीवन की गहराई। बैंकिंग की दुनिया से लेकर साहित्य के संसार तक और अब समाज के उत्थान के प्रयासों तक उनका हर कदम हमें प्रेरित करता है। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं शर्मा जी का, और आज हमारे साथ अपनी सोच और संवेदनाओं को साझा करने आए हैं। श्रोताओं, याद रखिए, जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम कर्तव्य, करुणा और कर्म तीनों का संतुलन साध पाते हैं। इस प्रेरणा के साथ आज हम आज के कार्यक्रम के रंग अनुभवों की विरासत को यहीं विराम देते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं DN शर्मा जी का श्रोताओं की तरफ से, रेडियो स्टेशन की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमें मौका मिला तो हम शर्मा जी को फिर कभी कष्ट देंगे। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत।

साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

0: प्यारे में।
1: महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यह गीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुंवारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: चुनिया, अरे किधर है रे तू?

0: ती घास ले डाल को फूंक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी लो क्या, अपने हाथ से खाना बना दो मुझे खिलाओ ना। अरे मेरी रानी, अरे चुनिया, अरे नागारी दू, अरे खेतरी, अरे माटी लिली, अरे वापस आ, अरे पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट।
1: महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। आइए हो जाए यही गीत।

0: शिकवा क्या, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
1: अरे क्या

महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी, जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आइए दोस्तों सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: अरमान।
1: महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।
0: ओ, हो, हो, हो, हो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

साधना जी की, जिनका पूरा नाम साधना शिवदासिनी था। साधना शिवदासिनी का जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। अपने पिताजी और माता की इकलौती औलाद होने की वजह से साधना शिवदासिनी की बाल्यावस्था बहुत ही लाड़ प्यार में गुजरी। तो आइए शुरुआत करते हैं उनकी फिल्म के इस गीत से।

वर्ष 1947 में भारत देश से पाकिस्तान अलग होने की वजह से उनके परिवार को कराची शहर छोड़ना पड़ा। वहां से उनका परिवार मुंबई आया। गुजरे हुए जमाने की खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक साधना बेहद मशहूर थी। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गाना।

लड़कियों के बीच चूड़ीदार सलवार का फैशन मशहूर करने में साधना का ही हाथ था। उनका हेयर स्टाइल साधना कट नाम से मशहूर है। इस हेयर कट की भी बड़ी मजेदार कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी बताऊं, सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

दोस्तों हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। दरअसल साधना ने अपने चौड़े माथे को छुपाने के लिए इस तरह का हेयर स्टाइल अपनाया था कि उनके बाल माथे पर ही रहें। लेकिन ये स्टाइल इतना मशहूर हुआ कि 60 और 70 के दशक में हर लड़की साधना की तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करने लगी। है ना मजेदार बात। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

साधना खूबसूरती और टैलेंट का बेजोड़ संगम थी। उन्हें बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था, तो चली आई फिल्मों में। उन्हें पहला ब्रेक 1955 में आई फिल्म श्री 420 से मिला। फिल्म हिट रही और इसमें साधना के काम को भी नोटिस किया गया। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

लव इन शिमला, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी और मेरा साया जैसी कई ऐसी फिल्में रहीं जिनमें साधना के काम को काफी सराहा गया और वो सुपरहिट भी रहीं। चलिए पेशे खिदमत है उनकी फिल्म का ये नगमा।

साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 1966 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। उस समय साधना सिर्फ 16 साल की थी और नैयर 22 साल के। साधना के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हुई। तो हो जाए उनकी फिल्म का एक और नगमा।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं वो हैं सीमा सिकंदर जी। बाकी की बातचीत हम सीमा जी से ही करेंगे। सीमा जी आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के मुखातिब होइए और अपना परिचय दीजिए।
1: श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं सीमा सिकंदर हूँ, गाजियाबाद से हूँ और गजल पे काम करती हूँ, गजलें कहती हूँ।
0: तो सीमा जी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अपना पहला कलाम या अपनी पहली गजल आप सबको सुनाएं।
1: जी मैं, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है हमारा स्वतंत्रता दिवस, तो उसी पे गजल के माध्यम से अपने अशआर पेश करती हूँ वतन के लिए। तो जी जी शुक्रिया। देखिएगा,

होठों की मुस्कान हिंद है, जमी से आसमां तक, जमी से आसमां तक ये शिखर

जो सिपाही शान हिंद है खड़ा सरहद पे एक एक, जो सिपाही शान हिंद है हमारा दिल हमारी धड़कने और जान हिंद है। इबादत प्रार्थना पूजा हवन और

0: धड़कने और जान हिंद है, सरों की तान सरगम, होठों की मुस्कान हिंद है। आखिरी कलाम करती हूँ,
1: इशारा
0: करो

0: जी
1: बहुत खूब, बहुत खूब
0: जी
1: साहब, बहुत खूब।
0: जी बहुत शुक्रिया आपका,
1: रोंगटे खड़े हो गए साहब सुन
0: श्रोताओं
1: के। सीमा जी बहुत शुक्रिया, आपने
0: का।
1: बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही जगह पर सही कलाम, सही गजल आपने हमें सुनाई है।
0: जी बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: अब आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी पसंद के गजल गायक जो भी हों उनकी किसी एक गजल को हमें सुनवाएं।
0: जी एक तो गजल बहुत पसंद है मुझे, और उन्हीं में से मैं एक मेहदी हसन साहब ने गाई है, और वो है क्या टूटा है अंदर अंदर चेहरा क्यों मुरझाया है।
1: अरे
0: आप भी
1: वाह,
0: सुनिए। हाँ जी, और मैं अपने श्रोताओं को

0: ये अपनी पसंद की फरमाइश करती हूँ कि आप अगर आपके पास हो तो आप
1: बेफिक्र रहें, आपकी पसंद की यही गजल हम श्रोताओं को सुनवाते हैं। लीजिए दोस्तों, सीमा जी की गुजारिश पर, सीमा जी के हुक्म पर ये गजल हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: रेखमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस गजल के लिए और आपकी फरमाइश के लिए। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े हमारे प्रोग्राम में, कि फर्ज कीजिए आपको एक तीन ख्वाहिशें पूरी करने वाला जिन्न कहीं से मिल जाए, तो आप उससे क्या तीन ख्वाहिशें मांगेंगी?
1: मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मैं बड़ी बात नहीं कह रही हूँ कि मुझे उसने ऊपर वाले ने या जिन जो भी है सारा कुछ दिया, क्योंकि जरा सी कोई भी इच्छा करती हूँ तो मेरी कुछ किस्मत वाली या कुछ भी कह सकते हैं, तो मुझे लगता है मेरी कहीं न कभी पूरी हो जाती है। और जैसे ये प्रोग्राम था, मैंने एक बार ऐसी कभी सोचा भी नहीं था रियली
0: जी,
1: मैं उससे थैंक्स कहूंगी कि मुझे जो भी कुछ दिया है और बहुत ज्यादा दिया है, जितना मैंने सोचा नहीं था, बस दुनिया में इंसानियत जिंदा रहे और रहनुमाई जिंदा रहे, बस यही बहुत बड़ी चीज है। अगर ये चीज हमारे पास रहेगी तो सारी चीजें अच्छी चलेगी। पूरी दुनिया का आजकल हाल थोड़ा सा सोच नहीं हो रहा हम सभी के लिए, तो
0: सही फरमाया
1: जी
0: जी। सीमा जी, तो फिर इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: अच्छा, मैं एक दूसरे मिजाज की गजल सुनाती हूँ, मैंने थोड़ी सी वैरायटी देना चाहती हूँ।
0: जी जी जी।
1: और जी जी, मैं श्रोताओं को अपनी फिर से नमस्कार करती हूँ और बात करती हूँ गजल के हवाले से, ठीक है
0: जी।

तस्वुरुने हमारे वो यहाँ हम और वो ही सब यहाँ

मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, नरमी से हर चीज के सुना आती। अगर वो सामने मेरे झुका

0: बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूब,
1: बहुत
0: बहुत खूब। मैं बीच में बोलना ही भूल गया था, मतलब इतनी मतलब इतना सुनने में मुश्किल हो गया।
1: सर आपका मैं इन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं कि श्रोताओं का भी कि मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं रियली, क्योंकि क्योंकि हम लेखक होते हैं, तरन्नुम तो कभी कभी आ जाता, तो ये बड़ी बहर की गजल है, तो इसमें थोड़ा सा गला मेरा वैसा हुआ, लेकिन ये कि मैंने कोशिश की बात कहने की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।
0: तो सीमा जी, अगली गजल आप कौन से सुनवा रही हैं? आप
1: मेरे प्रिय गजल गाए थे जसी सिंह साहब, और गुलजार साहब ने इस गजल को लिखा है, तो वो है दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे ऐसा उतारता है कोई
0: जी।
1: तो मैं चाहूंगी श्रोताओं श्रोताओं के लिए गजल पेश की जाए।
0: तो आइए दोस्तों, सीमा जी के हुकुम पर ये गजल सुनते हैं।

0: हिमा जी, अगला छोटा सा
1: जी
0: सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि
1: जी जी
0: आपकी हॉबीज क्या हैं? जब कभी आपको वक्त मिलता है तो आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं?
1: मैं क्या बताऊं कि मुझे पढ़ना ही सबसे अच्छा लगता, मेरा शौक है ये। मैं तो मतलब मेरा सबसे बड़ा साथी है, और मैं सिर्फ मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है, बल्कि मुझे देखना भी नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ कभी, और आपको हैरानी होगी, नहीं कहना चाहिए, मतलब एक अजीब किस्म की हूँ। मैंने अखबार कई सालों से नहीं पढ़ा,
0: जी
1: डेली का बुक्स पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ,
0: जी
1: अलग अलग तरह की। स्वामी विवेकानंद को भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, और अध्यात्म में मेरी अभिरुचि है, योगा में भी मेरी अभिरुचि है, मैंने डिप्लोमा किया हो, और बाकी ये गजल पे इसी इन्हीं चीजों को पढ़ती हूँ, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई चीज ख्याल आएगा नहीं, ख्याल आएगा लेकिन उसे अल्फाजों में कैसे पेश करेंगे आप अपने तरीके से, तो ये जरूरी है, पढ़ना जरूरी है मेरे लिए, सभी के लिए होता है मुझे लगता है, लेकिन मैं अपने लिए एक, जैसे खाना खाने की खुराक होती है डेली की, मेरे लिए एक खुराक, बल्कि मैं सोती हूँ तो मेरे सिरहाने बुक्स होती हैं, ये मेरी कमजोरी है।
0: नहीं साहब, मैं इसको आपकी कमजोरी नहीं कहूंगा। आप चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं संसार में। पिछले 17-18 सालों से मेरे घर में टेलीविजन नहीं है और मैंने भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं। और जहां तक किताबों की बात है, मैंने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर जो हमारे घर में सो कॉल्ड एक खामा खामे कहने वाला ड्राइंग रूम जैसी जगह होती है, जो दरअसल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कभी कोई मेहमान आता है उसके लिए ड्राइंग रूम बनाया जाता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता, मेहमान तो भगवान होता है ना, तो उसको तो हमें अपने दिल में बैठाना चाहिए, ड्राइंग रूम में क्यों बैठाते हैं?
1: जी बहुत बहुत खूबसूरत बात की है आपने, बहुत खूबसूरत।
0: तो ड्राइंग रूम में मैं किताबें सजाना चाहता हूं, तो कोशिश कर रहा हूं, काफी सारी हो भी गई हैं, तो खैर ये अलग बात है। तो मैं सीमा जी आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम, अपनी अगली गजल हमें सुनाए।
1: जी अगली बार मैं आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए तहस में बात कहती हूँ, वो देखिएगा, थोड़े अरवान मिजाज की है गजल ये,
0: इरशाद
1: देखिएगा
0: इरशाद
1: जी। दूरियां तुमसे बना लूं, दूरियां तुमसे बना लूं, फासला हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो। दूरियां तुमसे बना लूं, फासला हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो। रास्ता रास्ता उस दिन बताओ कौन सा अपनाओगे, रास्ता उस दिन बताओ कौन सा अपनाओगे, दूर जाने के अलावा लापता हो जाऊं तो।
0: ओ माय गॉड, बहुत खूब, बहुत सुंदर।
1: जी दूरियां तुमसे बना लूं, फासला हो जाऊं तो क्या करूं ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो। मैं अभी हूँ रास्ते में, मैं अभी हूँ रास्ते में और लंबा है सफर, मैं अभी हूँ रास्ते में और लंबा है सफर, एक अधूरी दास्ता का वाकया हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो।
0: बेहतरीन बेहतरीन।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नफरतों के साथ कैसे पेश आओगे कहो, नफरतों के साथ कैसे पेश आओगे कहो, आंखों से दिल में उतर कर मरहला हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं
0: ओह
1: तो।
0: माय गॉड, बहुत सुंदर।
1: दूरियां जी, दूरियां तुमसे बना लूं, फासला हो जाऊं तो क्या करोगे ये बताओ, बेवफा हो जाऊं तो। और ये कलाम पसंद किया आपने, मुझे लगता है श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा मेरे
0: बेहद खूबसूरत,
1: उनका। जी
0: बहुत ही
1: जी
0: मीनिंगफुल और बहुत ही सेंसिटिव भी, बहुत
1: जी
0: ही संवेदनशील, शानदार। सीमा
1: जी
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगली
1: जी
0: गजल आप कौन सी सुनवाना चाहेंगी हमारी श्रोताओं को?
1: जी गजल गायिका है हमारी फरीदा खानम,
0: जी
1: और इसके लेखक है फराज सादात।
0: जी
1: हमारे दर्शकों ने भी बहुत बार सुनी होगी ये गजल, आपने भी सुनी होगी, तो उसका कलाम ये है कि आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही सहेली बैठे रहो।
0: बहुत
1: जी
0: खूब, बहुत खूब।
1: जी जी
0: आइए दोस्तों, सुनते हैं यही गजल फरीदा खानम साहब की गाई हुई और सीमा जी की फरमाइश पर।
2: आज जाने

0: 나 대로
1: सीमा जी, अगला एक बहुत ही मासूम सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपको आपके बचपन में जाने का मौका मिले तो क्या एक ऐसी चीज होगी जिसको आप बदल देना चाहेंगे अपने बचपन में जाके?
2: मुझे लगता है कि मैं अपने घर ही जाना चाहूंगी, अपने घर से अपना बचपन ले, और मैं अपनी माँ, मतलब मैं अपने माहौल को, पूरे माहौल को, घर के माहौल को, मुझे पता नहीं क्यों हमें सब फील होता है और ऐसा लगता है अगर मुझे मौका मिले तो शायद मैं फिर से वहां चली जाना चाहूंगी।
1: तो सीमा जी, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि अपनी अगली गजल हमें सुनाए।
2: मैं पुनः अपने श्रोताओं से जुड़ती हूँ और एक कलाम पेश करती हूँ अपने गजल की, चंद्र अशार। देखिएगा, मिजाज क्या और शऊर उनका, मुझे खबर है, मुझे पता है, कहानियों में मुझे वो अपनी उतार लाए, असल वफा है
1: जी।
2: जो बात दिल में बही जुबा पे उसी को मैंने जिया, असल में खुशबू क्या है बताए मेरा अगर जमाना खफा हुआ है। मिजाज बदला, ख्याल बदला, समझ का सारा हिसाब बदला, न मेरे बस में मेरी सुमारी, चली ये कैसी गजब हवा है। मिजाज क्या और शऊर उनका, मुझे खबर है, मुझे पता है, मेरी बसर की तमाम मसले, मेरी बसर के तमाम मसले, सुने कोई तो कभी कहीं से, सवाल मैंने भरी सभा में मगर उठाया कई दफा है
1: जी।
2: मिसाल अपनी बनाने वाले कहाँ गए कुछ पता नहीं पर, मिसाल अपनी बनाने वाले कहाँ गए कुछ पता नहीं पर, जहाँ ने उल्फत मेरी नजर में किसी विषय से बड़ी बना है।
1: बहुत खूब
2: जी। कयास अपनी लगाने वालों अगर कहीं मैं गलत नहीं तो, कयास अपनी लगाने वालों अगर कहीं मैं गलत नहीं तो, जरूर कोई बजा भी होगी मलाल कर जो खबर बना है। मिजाज क्या है शऊर शऊर उनका, मुझे खबर है, मुझे पता है, कहानियों में मुझे वो अपनी उतार लाए, असर बफा है।
1: बहुत
2: जी,
1: बहुत
2: जी,
1: बहुत खूब,
2: शुक्रिया जी, जी शुक्रिया, बहुत बहुत।
1: सीमा जी, इसी बात पे फिर आप हुकुम करें, आपके कौन से गायक की कौन सी गजल हम सुनवाएं?
2: जी, मेरी पसंदीदा राधिका चोपड़ा जी हैं, गायिका, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज है, ये बड़ी ही खूबसूरत लहजे में उन्होंने गाया है, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, है लुधियान जी साहब इनके लेखक है, और मेहरबानी होगी, मुझे बहुत ही प्यारी है गजल लगती है, मुझे लगता है श्रोताओं को भी मेरे लिए पसंद आएगी
1: जी। जरूर जी, जरूर जी। दोस्तों, इसी गजल को सुनते हैं राधिका चोपड़ा जी की गाई हुई

0: सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके
1: जी
0: कलामों के लिए। तो
1: जी
0: अगला सवाल मैं आपसे पूछ
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: लूं
1: तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था
0: ओके
1: जी, लेकिन अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सहज
0: ओके।
1: जी।
0: अब किसी भी दिन, आजकल कोई भी दिन होता है, तो उस दिन आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने आप को उत्साहित रखने के लिए, अपने आप को जोश में भरे रखने के लिए क्या करते हैं आप?
1: हाँ जी सर, मैं अच्छा सोचने के लिए मेरे पास हमेशा मैं सुबह को, हालांकि बहुत गोपनीय बात है कि मैं सुबह को बहुत जल्दी उठती हूँ
0: जी
1: और कुछ योगा के आसन करती हूँ, बाकी ध्यान करती हूँ, आरती करती हूँ, और ये मेरा सबसे बड़ी पावर है, मेरी बहुत बड़ी ताकत है, सुबह मेरा ये काम होता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें, ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी है, ये मुझे सपोर्ट करती है और मेरी यही सकारात्मक सोच ये मुझे देती है। कोई भी चीजें बहुत सी होती, सभी के साथ होती, मेरे भी साथ होती, लेकिन मैं उन चीजों से ऊपर उबर जाती हूँ, कहते ना एक उबर जाते हैं, तो जब इस जगह बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली
0: सीमा
1: कहीं
0: जी, आपसे गुजारिश है कि अपना अगला कलाम हमें सुनाएं।
1: से जी। जी ये थोड़ा सा हटके है और इसे तरन्नुम में मैं देती हूँ
0: जी
1: और जी, तो मैं जारी करती हूँ बात
0: ईशा
1: कहते हैं।

असर मुझ पे रहा, लेकिन किसी की जिंदगी में जहर पर खुला।

मगर एक फासला रहा, बने घर के उसूलों को कभी तोड़ा नहीं मैंने।

0: मगर खत आज तक खोला नहीं मैंने, अधूरे मन से कुछ भी तो नहीं जोड़ा
1: जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर
0: जी,
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो सीमा जी, अगली कौन सी गजल सुनवाएं हम आपको?
0: जी, मेरी पसंदीदा उसमें लाइन में जो भी आ रहे हैं, तो ये गजल का है कलन अजी साहब, और उनकी ये कलाम कहा है उन्होंने शहरयार साहब ने, और कहते ना जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है हमें, बहुत फेमस कलम है। जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सीमा जी, आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। बातचीत करने में जो मजा आया है वो हमारे सुनने वालों ने भी सुना होगा, कितनी खूबसूरत बातचीत हम लोगों के बीच हुई। कलाम हमने सुने, आपकी गजलें हमने सुनी, मुझे उम्मीद है कि आपकी गजलें, आपके कलाम हम सुनते ही रहेंगे।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है का मन पसंदीदा कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
4: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
5: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहां पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सकें। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
6: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
4: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
5: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
4: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
2: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं। सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
4: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
7: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
8: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
4: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें आइए जानते हैं।
8: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
4: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
9: पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
3: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
4: हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
10: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा। उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाउ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया, और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
4: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी, और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
10: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में एक थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
4: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
10: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है, ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं, बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
4: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है, उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
6: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी वाते।

0: किसान भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हां, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
1: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है, ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
2: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है, फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10% हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकती है।
1: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
2: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की लिखी उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृतिक कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
1: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
3: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष सांग का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष सांग में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो जो प्रकृति के आधार से है, इस सबको सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना

0: चाहते उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े उसके लिए ये भूमि ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
1: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी पूज्य स्वामी काड़ा सिद्धेश्वर जी मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मित हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के मुख्यतः किसानों के जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक सामाजिक संस्थाएं शोधकर्ता ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मित यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है, इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र ऐसे समग्र लोगों समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मित की गई है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
4: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं। अगर इन इन इन कैटेगरीज में आते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेस

0: सकते हैं, उसके लिए वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
1: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
1: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दें या पानी में मिलाकर दें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपड़ी बातें।
2: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों, प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
1: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी GI टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि झाबुआ जिले में और झाबुआ जिले का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM अब स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है इसकी। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ के किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जहाँ पर जानकारी का अभाव रहता है और जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है। और आज हमारे स्टूडियो में बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ सलिया जी डामोर जो कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अजमेर जी हैं, वो भी कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तेर सिंह वाकला जी हैं, कांकड़कुआ गांव से हैं, इनका खेती में काफी अच्छा अनुभव रहा है, इनके अनुभवों को साझा करते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं खेती, अगर झाबुआ जिले की बात करें, यहाँ के आसपास के इलाकों की बात करें, तो पथरीला इलाका है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हम जानेंगे आज उन विषयों पर जानेंगे कि यहाँ पर हमारे किसान साथी किस तरीके से खेती कर सकते हैं। सबसे पहले सलिया जी, आपसे हमारा सवाल है कि यहाँ पर कौन कौन किस किस प्रकार की खेती की जाती है?
3: अभी हम खेती करने के लिए तैयारी कर रहा है, इसमें हमारे मक्का होती है और कपास, यह थुअर भी होती है, मूंगफली होती है, उड़द भी होते हैं। यह बारिश के समय में हमको यह फसल मिलती है, सोयाबीन भी होते हैं, यह फसल हमको मिलती है सर।
2: अच्छा सलिया जी, एक चीज जानना चाहेंगे, यहाँ पर पथरीला इलाका है, आप जानते हैं पानी की बहुत ज्यादा किल्लत भी है, हमने देखा भी है, किस तरीके से आप, किस अनुभवों के साथ आप खेती करते हैं?
3: बस खेती यही करते हैं हम, सुमा समय बारिश आते है, इसमें कोई रुका पानी, कोई कुआ है थोड़ा बहुत, उसमें यही करते हैं।
2: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, एक दो पानी कपास को मिल जाते हैं, ज्यादा पानी की आवत है ही नहीं।
2: अच्छा अच्छा। हाँ। अगर कपास की, सोयाबीन की अगर बात करें, तो किस तरीके से, चूंकि आपका अनुभव हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा अनुभव है, काफी सालों से आप खेती कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये कपास की खेती की जाती है, कैसे की जाती है?
3: ये सर, इसमें अपन को बोवनी करते है कपास की, इसमें अपन को निंदाई खोदाई करनी पड़ती है और खाद बीज अपन को ये करना पड़ता है, दवाई भी करनी पड़ती है, टाइम टाइम से खाद मिलते हैं इनको, ये यूरिया भी मिलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरफास्ट और डीएफी कपास को, और मक्का तो यहाँ पर यूरिया खाद से ही पक जाती है।
2: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, ये इनको डीएफी और पोटास खाद मिलते हैं कपास को, इनकी फसल डीएफी खाद से और दवाई से होती है।
2: अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि आप किस तरीके से भूमि को तैयार करते हैं, जब कपास की खेती आप लगाते हैं, किस तरीके से उसकी तैयारी करते हैं?
3: इसको अभी खेड़ाई जुताई कर रहे हैं
2: जी,
3: ये तैयारी कर रहा, अपन उसमें हल चलाया, उसके बाद अपन थोड़ा वखरा कर घेर के इनको थोड़ा कहना डेफा डेफी है या भाग तोड़ के थोड़ी कर तैयारी करेंगे, पानी बारिश को गिर गया तो इसके बाद अपन बोनी करनी है सर।
2: अच्छा, यहाँ पर किस किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर, चूंकि लाल भी मिट्टी है, किस किस प्रकार की, कौन कौन सी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है?
3: ये लाल भी है और काली भी है।
2: काली मिट्टी है,
3: काली हाँ, और इसमें भूरी मिट्टी भी है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: किसी किसी को भूरी मिट्टी भी है।
2: अच्छा, ढलान होने के साथ क्या क्या आपको खेती किसानी में समस्या आती है आपको?
3: ढलान में तो सर ये पानी की समस्या होती है, इसमें
2: कितने पानी लगते हैं कपास में?
3: कपास में बस ज्यादा पानी वाले कोई दो चार पानी कर देते हैं, नहीं पानी वाले तो बस एक दो पानी में हो जाता है,
2: एक दो पानी में हो जाता है कपास। कपास से कितना मुनाफा हो जाता है जी आपको?
3: पानी में हो जाता है,
2: एक दो पानी में हो जाता है कपास। कपास से कितना मुनाफा हो जाता है जी आपको? किसान सुन रहे हैं तो कपास की खेती में बीज कहाँ से लाया जाता है और इससे पहले तैयारी क्या की जाती है उसकी?
3: इसमें बीज तो सर ये मिलते हैं, काली बाजार से हम लाते हैं, कपास का बीज, और तैयारी इनकी है, अभी तैयारी में ही है, बैठा है, लोग कर रहा है, कोई हर काम जो भी है छोड़ के खेती पे लग गया है, तैयारी कर रहा है, बारिश की समय आ रही है, ऐसे करके।
2: अच्छा अच्छा,
3: यही तैयारी चल रही है सर।
2: अच्छा, खेती के अलावा यहाँ पर और क्या हमारे किसान साथी करते हैं, क्या करते हैं?
3: मजदूरी जाते हैं सर।
2: अच्छा, खेती करने के बाद मजदूरी करने के लिए
3: अभी चले अभी लोग बाग अभी भी बाहर है।
2: अच्छा,
3: बारिश की समय है तो
2: आ जाते हैं,
3: तो कोई एक दो घर पे है, आने वाले है।
2: अच्छा,
3: चार महीना करते है और वापस दिवाली बाद बाहर चले जाते, दाड़ की दपोड़ी यही करते
2: सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कपास की खेती में सर कितना फायदा आपको हो जाता है?
3: फायदा तो होता है सर, इस साल तो कपास का भाव भी थोड़ा ठीक रहा।
2: अच्छा,
3: तो इस साल तो फायदा लोगों का।
2: कितने महीने में फसल आ जाती है ये अपने लगाने के बाद?
3: ये लगाने के बाद तो करीब कपास को तो छह महीना हो ही जाते हैं।
2: अच्छा, जो किसान हमारे की जैसे कपास नहीं करते, उनकी जानकारी नहीं है, उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसकी बीजों की रुपाई की जाती है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है?
3: इसको सर उसको लगाना पड़ता है, तैयारी करते हैं अपन कपास करते हैं तो इस जमीन को जब अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, खाद कई अपन ये गाय का ये खाद मिल जाते हैं, ये डाल देता है, इसमें कपास अच्छा बनता है
2: जी।
3: हाँ, इसमें ठीक रहता है।
2: अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि अभी हम यूरिया और हम डीएपी की बात करते हैं, पहले जमाने में जो खेती की जाती थी वो शुद्ध गोबर की गाय के गोबर से, या फिर जो जैविक पद्धति होती थी उससे हम खेती करते थे, अब क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया है कि इसको बंद कर दिया है और इसी पे हम लोग आश्रित हो गए?
3: इसमें सर ये अभी थोड़ा माल मेवा से कम पड़ गया है।
2: हाँ, मवेशी।
3: हाँ, मवेशी तो कम है अभी। क्या है कि पहला तो एक घर में मवेशी करना 20-15, एक एक घर में करनी 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 गाय रहती थी, अभी है ही नहीं।
2: क्यों नहीं है, क्या कारण है इसका?
3: अभी क्या है, अभी थोड़ा सारा सरनेमान सब थोड़ी कमी है।
2: हाँ,
3: तो अभी नहीं है, बस एक दो बैल है, किसी के पास भैंस है।
2: अच्छा अच्छा,
3: सब ये कम है अभी।
2: जैसे छोटी छोटी जमीन है तो अभी भी आवश्यकता पड़ती होगी बैलों की, हल की या
3: तो,
2: बकर की?
3: वो तो पड़े ना सर।
2: अच्छा, और भैंस पालन या बकरी पालन इस तरीके का नहीं करते हैं किसान इसके अलावा?
3: करते ना सर,
2: करते हैं,
3: बकरी भी है, भैंस है।
2: कौन सी बकरी पालते हैं, किस तरीके से वो पालन पोषण उसका करते हैं?
3: बकरी तो सर ये देसी बकरी है।
2: देसी बकरी, फायदा होता है इससे?
3: हाँ, इससे होता है।
2: मुर्गी पालन करते हैं?
3: मुर्गी पालन तो ये देसी मुर्गा है घर पे।
2: अच्छा अच्छा, करते हैं।
3: हाँ, है ना।
2: अच्छा, अब जो समस्या जो आप कह रहे हैं कि कपास में हम लोग जैविक खाद यानी गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब क्यों डालते हैं डीएपी यूरिया?
3: वो अभी क्या है सर, लगातार अपन ने डाल दिया तो ये खाद तो डाले बिना तो नहीं होते है।
2: अच्छा,
3: अब तो वो क्या है, खाने की अपन को आदत कुछ पड़ गई तो वो खाद डाले बिना तो होते ही नहीं फसल।
2: अच्छा अच्छा,
3: ऐसा है।
2: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या अनुभव हैं खेती किसानी में, आप कितने वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं?
4: 6 साल हो गया है।
2: 20 साल से खेती कर रहे हैं। कौन कौन सी आप फसल उगाते हैं, कैसे करते हैं?
4: बस मूंगफली
2: भी करते हैं। अच्छा अच्छा,
4: पूरा थोड़ी करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, 10-15 किलो।
2: अच्छा, कर देते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी वाते।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्याभिल 90.8 एफएम। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। आइए जानते हैं झाबा के मौसम का हाल। झाबा का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है। खेती की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं किसान भाइयों के पास कौन कौन सी खेती के उपजाऊ खेत हैं।
1: कई प्रकार की जगह से, मतलब तार जगह के कई तरह से, मतलब बैडू है, घेरवाड़ी है ना, मालमई
2: बैडू है, काले जमीन है, आधे काली ना आधे भूरी ने भी अकली है।
1: ते तार खेतर में हूँ पाके
2: खेतर में कफा पकड़ी ने अड़ा ने मुफला ने किने जी पकड़ी
1: ते या पर सुमा है ते यू पाके जातो है क्या
2: सुमा है यू
1: या पर मुफला पाके जाता है अड़ा तो है अंठुवर से ने अपड हेलिया थई गए हूं के रापर सोया भी है कि नहीं। ते फिर बीजी फसल लेवा हरू खेतर से नहीं माला
2: बीजी फसल लेवा हर खेतर रियो पर आती हूँ मैं बीजी फसल हूँ लेवा फिर
1: क्या पानी नहीं कमी से
2: पानी नहीं कमी ना।
1: अच्छा पानी नहीं कमी से ते तन मतलब एके एके फसल माला है
2: एके समसावल फसल
1: माला है ते इन्हीं खेत मतलब आप अपड़ फसल ने अलावा फिर हूँ से मतलब फिर हूँ तो कमावार हूँ करी आप हूँ
2: कमावार बस ये 12 महीना या फिर 6 महीना कमाई कर लिए फिर दूसरा फसल ना जाए कमे पड़ना बंद
1: है कमे नहीं जाओ ते आप तारता बोकड़ा नहीं मिला बोकड़ो डगरू
2: बोकड़ा डगरा कम से
1: तपन हाव पेलू कहते पेलखा आई डूंगर वसिया नहीं अपनी कान है कि नहीं डूंगर वसिया नहीं कही नहीं तो आपको कहाँ सरावाली जाएंगे है कि नहीं
3: समस्या
1: ये भी है हाँ सरवानी थोड़ी दिक्कत है। ठीक ठीक तो तन हूँ लागे की आप अगर बोकड़ा आप पाली तो बोकड़ा में अपन फायदो से नहीं
2: फायदो
1: है बोकड़ा में फायदो है लेकिन अपन एक असल प्रजाति नी बोकड़ी मळवी दो है कि नहीं। हमारे अपना बोकड़ा थोड़ा से मादा दुबला पातला से है ना तो अपन थोड़ी असल प्रजाति नी थोड़े असल जे
3: थोड़े कोलादार
1: है थोड़े असल दिनो माँ भी ताजू पड़े नीते होए दूध खावा भी अपन लावी थोड़ो बढ़िया क्वालिटी नु मळी जाए तो बढ़िया रहे। अपन डगरियो में भी अपन इमेज देखी है ना डगरा है अपना डोबा है इनमें भी अपन असल असल खोजदार बढ़िया मिल जाए हाँ ओलादार अपन मतलब ताजो थोड़ो बनी सके है ना
3: सही है।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्याभिल 90.8 एफएम। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। आइए जानते हैं झाबा के मौसम का हाल। झाबा का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है।
1: सलिया भाई, इन्हें अलावा तन हूँ लागे अपन खेती में हूँ करवू जो है जो अब हूँ करी सकी हमने तो अपन मान लो अगर पानी की समस्या है अपनी कन हमने लेकिन अगर पानी की समस्या ये अपनी थोड़ी कम थी जाए तो आप हूँ करी सकी है।
3: बस पानी नी समस्या कम थे जाए फिर हूँ करी सकी है पानी ऊपर है या
1: हाँ अगले पानी पर से जैसे कि आप वाड़ी है कि नहीं अगर वाड़ी करवा मांगी तो हमने हमने आप भिंडा है ग्वालफड़ा है काकड़ा है अपने तरबूजा है ना पानी की समस्या है तीन आप की सकी के
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: तो भाइयों आप हमने चर्चा करते ला अपन डगरा ना बारा मा अपन बोकड़ा ना बारा मा की कम आपू खेती ने अलावा कहीं अलग अलग हूँ आपू करी सकी तेना बारा मा आपू वाते करते ला तो हाव इनी चर्चा ने आपू आगाड़ी बढ़ाऊ हूँ पर तीनता आगाड़ी आपू हमली हाव एक अपन संस्कृति नु एक प्यारू थुसू एक गीत

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: जानकारी नो थोड़ा अभाव है इनी वजह थी आपू इनमें घना कम है हमने अपने आप देखी तो आप खाली वाड़ी करिए आप थोड़ी सी केम घेर खाए इतना
2: खावा पूर्ति
1: है ना घेर खावा पूर्ता आप हमने करिए है अधिकतर तो आप सोयाबीन में लागेला है अपन मक्की है सोयाबीन है अपन जुवार है ना तो अपन पारंपरिक धान हजू तक साली रो है साली रो से पर हाँ अपना कोदरा ने याद खोवाई गया क्या
2: बद्दू खोवाई गया
1: हाँ कोदरा खोवाई गया राड़ो खोवाई गयो
2: तीन लोक
1: आउटो
2: हमने ना स्वरा ओळखे ही नहीं
1: ओळखे
2: भी है तो अगाड़ी डोकरा हूँ बोलता है हामली करीन
1: हामली हाँ
2: फिर बादली
1: बादली
2: एक हूँ बोलता कुरी
1: कुरी
2: फिर राड़ो
1: राड़ो
2: गुजरो
1: गुजरो
2: कोदरा
1: कोदरा
2: ये सीजन हमने स्वरा हमने आप उवा पीढ़ी तो ओळखे ही नहीं
1: ये हाँ हमने आप अगर आप तीन अगाड़ी या आप एक एक धान फिर कटोरी कटोरी धान मिलती ते भी नहीं ओळखा
2: नहीं ओळखा है ना ये वो सीजन नहीं ओळखा
1: नहीं ओळखा है पर देखे जाए तो अपन कोदरा तो तुम कहीं वरुण उदा मिली दो कभी हड़े लीन गले नहीं
2: था कहीं नहीं था दड़ी धान जो कोदरा खा लेता उठाने का डगरू भी बैठू था जाए इतनी ताकत कोदरा में आती
1: हाँ इतनी ताकत कोदरा में आती खरी।
3: नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। आइए जानते हैं झाबुआ के मौसम का हाल। झाबुआ का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है।
2: कोदरा ने राबड़ी एवी लागे कन आले ने एवी लागे हां
1: खरी एक बावटानी एक नी कोदरानी ये अपन अगर आप देखी ना मोटा मोटा मौलू मा तार का ये असल वैसे ही रही 150 रुपए किलो तक हूं खुदे देखी ना यो तार की ते बढ़िया वैसा है पर आप ये धान जूनू धान आप थोड़ा खोई ना क्यों
2: खोई ना क्यों
1: तो इन पर भी आप मतलब करी सकी यू भी असल बढ़िया है लेकिन इन नानू रहते अवेरवा मा काटवा मा
2: हाँ थोड़ी दिक्कत
1: दिक्कत दिक्कत पड़े थोड़ी
2: नहीं गाड़ी डोकरा यूज करियो ना
1: हाँ यूज करियो यू खादो
2: गुजरो गुजरो अधिक कर गुजरानी फसल करता ज्यादा गुजरो केम के धान रेतु ने पेलखो गुजरो वेगो पाकी जातो
1: खरो
2: इनी हारू गुजरानु कमाई करता करता
1: डोकरा गुजरो है एंड फिर हमली है
2: हमली है
1: हमली
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
3: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ते हाँ आप चर्चा करी के किकम मतलब कहीं भी एक खेती आप ये करी तीन खेती में आप असल फायदो पड़ियो ते कुमान भाई तमु बतड़वा चाहो के मतलब कई नी खेती तमार हेरू असल सक्सेस री कि बढ़िया तरीके थी तिनी तमार पाक मा भी आवी कमाई भी असल थई तिनी तिनी कमाई थी।
4: देखो इस साल की कमाई तो आप देखी से के कपा मस्त रियो।
1: अच्छा
4: हाँ कपा एवी रीते मस्त रियो के कपा मा कोई पण जात नो रोग नी पड़ियो અને કપામાં કોઈ પણ પ્રકારનો જેસે કે વધારે પરેશાની નહીં આવે તો કપા અસર રહ્યો અને કપા પાક્યો બી ખરો અને કપા ઘણો મસ્ત રહ્યો અને કપાનો અસલ ભાવ બી અસલ હતો
1: બિલકુલ તે કપા મતલબ હું આપું દેખી તો એના સાલમાં કપા અસલ પાક્યો હે ને
4: હા
1: બિલકુલ બિલકુલ સલિયાભાઈ તમે હું કહેવા માંગો કે તમારી કઈની ફસલ મતલબ અસલ રહી
2: મારે તો બસ એ કપા નહીં
1: अच्छा कपास तो मुझे भी कपास करे लो
2: कपास करे लो
1: तो इन्हें मतलब बड़े साल कपा करो से या फिर
2: बड़े साल करता हूँ साल कपा नहीं फसल बढ़िया रही
1: बढ़िया रही
2: हाँ।
1: अच्छा
2: मतलब हाँ ठीक रही और इनमा हूँ है क्या भाव भी बढ़िया रही हो तेरे अमून कपा नज कमा फसल बढ़िया लगी
1: बढ़िया कमाई में भी आवी है ना ते हाँ आपते साल हूँ करवानी हो सी रहा है
2: बस आपते साल तो देख सोयाबीन करिए તો સોયાબીન ના પૈસા તો દિવાળી થાય ને પૂરા થઈ જાય
1: થઈ જાય
2: કપાસ ના પૈસા મૂન મળે હે એના લેનદેન થોડી બહોત થાય એટલે આપું કપા કરી
1: અચ્છા કિસાન ભાઈઓ આપું ચર્ચા કરી રહ્યા હે ખેતી ખેતી ના બારામાં અને એની ચર્ચાને આપું જારી રાખું અલગ અલગ હજુ નવી નવી વાતે આપણે કિસાન ભાઈઓથી આપું કરું નવી નવી વાતે આપું કિસાન ભાઈઓથી જાણવી મળે તો એની ચર્ચાને આપું આગળ તક બઢાવી તીનથી આગળ આપું લઈ એક નાનોકથો વિરામ અને હમળીએ આ હરકું એક આપણ સુંદર શું આપણ ભીલી ગીતને

0: किसान साथियों, हम सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम। वक्त हो चला है यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम को विराम देने का। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आरजे अविनाश के साथ।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

मौसम का हाल। झाबुआ का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 12.2 मिलीमीटर और अब तक की वर्षा 15.9 मिलीमीटर नापी गई है।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
0: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: आज के कलाकार को प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं आज के कलाकार एक मंच है नए गायकों का, नए टैलेंट्स का। और आज हमारे साथ मौजूद है ध्रुव कुमार। बाकी की बातचीत हम ध्रुव जी से ही करेंगे, वो अपने बारे में हमें बताएंगे, उनके हम बहुत खूबसूरत गीत भी सुनेंगे। ध्रुव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
2: गुड इवनिंग, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। मैं ऐसे प्रोफेशन में सर्विस होल्डर हूँ और किशोर दा का सॉन्ग बहुत ही पसंद करता हूँ। वैसे मैं रहने वाला हूँ वेस्ट बंगाल रानीगंज से,
1: जी
2: होम टाउन है। और किशोर दा, सानुदा, इन लोगों का मतलब किशोर दा का सॉन्ग सुनकर ही मैं बड़ा हुआ हूँ, तो उनके सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगते हैं। और मेरा जैसे माँ है, वाइफ है और दो सन है,
1: जी
2: यही है मेरा परिचय।
1: अरे वाह, अमेजिंग अमेजिंग। ये आपका जो रानीगंज है ध्रुव जी, ये किस चीज के लिए जाना जाता है, मतलब वहां की खासियत, एक कोई खासियत हमें बताइए।
2: ऐसे वो पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल का, और वो रानीगंज जो है मतलब ओल्डेस्ट कोल माइंस के लिए इंडिया में, पहले तो हम इतिहास भूगोल में पढ़ते थे।

0: जियोग्राफी में पढ़ते थे, आजकल तो बहुत सारे कोल माइंस हो गए हैं, लेकिन पहला जो हाई ग्रेड कोल निकलता था मतलब इंडिपेंडेंस से भी पहले वहां जो खदान हुआ करते थे, अभी भी है वहां, तो उसके लिए फेमस है रानीगंज।
1: ओके, अमेजिंग दुर्बो जी। तो दोस्तों आपने सुना, दुर्बो रानीगंज रहते हैं और रानीगंज क्यों फेमस है वो भी उन्होंने बताया। तो फिर चलिए बहुत देर इंतजार नहीं करते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं ध्रुवो जी की ही आवाज में इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूबसूरत, क्या बात है, क्या शुरुआत है। ध्रुव जी, आगे बढ़ते हुए, आप अपने ही क्षेत्र में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई अगर छोटा बच्चा शुरुआत करना चाहे तो उसको सलाह क्या देंगे?
1: सलाह तो यही रहेगा कि देखिए, आपको जिस चीज जिस जिस लाइन में आप आपको अपना इच्छा हो, दूसरों की इच्छा से नहीं, अपना इच्छा हो, अपना मन हो, आप उसी पर अपना पढ़ाई करें। पहले तो आप अपना ट्रेनिंग जो भी है, अगर टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, अगर नॉन टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अपना चूज करें। और जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं एकदम मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर उसी के पीछे पड़ जाएं, और फिर और मतलब आप अगर पीछे पड़े रहेंगे तो आपका मंजिल आपको मिलेगा ही, जरूर मिलेगा।
0: क्या बात कही, बहुत खूब। देखिए दोस्तों, हमारे जो यंग जनरेशन है उन्हें हमें यही संदेश देना है, और हम चारों तरफ से यही सुन रहे हैं, हम जिनसे भी बात करते हैं वो यही कहते हैं कि जो भी आपका करने का मन हो उसकी टेक्निकल नॉलेज, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम इकट्ठी करें, मेहनत करें, दिल लगा के, तो हम वो चीज बन सकते हैं, वो चीज पा सकते हैं। ध्रुव जी भी यही कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत ध्रुव जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया ध्रुव जी, मुझे बताइए ना, लोग आपके बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी क्या रखते हैं?
1: वो तो ये पहले पहले फर्स्ट पहला नजर में
0: जी
1: कोई भी मुझे देखता है तो मतलब बहुत गुस्सेल टाइप का आदमी, मतलब सोचते हैं
0: जी,
1: लोग सोचते हैं कि बहुत गुस्सेल टाइप का है, पहला पहला इंटरेक्ट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ जो भी इंसान इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ में,
0: जी
1: कुछ देर के बाद में वो ये जरूर कहते हैं कि मैंने आपको जिस तरह का सोचा था आप उस तरह का इंसान नहीं है, आप बहुत ही मिलनसार है, आप बहुत ही खुश मिजाज इंसान है।
0: जी
1: तो यही गलत फहमी अक्सर लोगों को रहता है।
0: जी ओके, ये गलत फहमी रहती है लोगों को। बड़ी ही खूबसूरत बात ध्रुव जी ने बताई, उनको पता है ठीक से कि लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी जब वो लेकिन उनसे ज्यादा बातचीत करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ध्रुव जी दरअसल ऐसे इंसान नहीं है, बहुत प्यारे हैं। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, हो जाए इसी बात पर एक और बहुत खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत बढ़िया। ध्रुव जी, हमें अपने बचपन की कोई सबसे पसंदीदा याद के बारे में बताइए।
1: याद तो ऐसा है कि मतलब मुझे सबसे ज्यादा मतलब पसंदीदा यादों में प्राइमरी स्कूल जो स्कूल की स्कूलिंग की जो टाइम थी
0: जी
1: वो बहुत ही याद आती है। मतलब उस टाइम के जो फ्रेंड्स थे, अभी तो प्राय एक भी मतलब उस प्राइमरी स्कूल का फ्रेंड्स थे वो एक भी आज आज, आज मतलब अगल बगल भी नहीं है, सब इधर कहीं कोई बाहर चले गए हैं, जहां मैं रहता हूँ वहां से अलग जगह चले गए हैं। तो उनकी बहुत याद आती है,
0: जी
1: टीचर्स की, प्राइमरी स्कूल की टीचर्स की, दोस्तों की, वो मोमेंट जो था वो चीज का बहुत याद आता है।
0: सो क्यूट। जाहिर सी बात है, हमारे लोगों में, हमारे दोस्तों में, हमारे जानकारों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने बचपन को याद करते होंगे, उन्हें बहुत मिस करते होंगे, लेकिन शायद कभी इतने खूबसूरत तरीके से कह नहीं पाए जिस खूबसूरत तरीके से ध्रुव भाई आपने कहा। बहुत खूब, क्या बात है। तो दोस्तों, चलिए फिर ध्रुव जी के ही बचपन के नाम ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बहुत बहुत ही प्यारा गीत। ध्रुव जी मुझे बताइए, आपकी सबसे बड़ी असफलता फेलियर क्या थी और आपने उससे क्या सीखा?
1: असफलता तो यही है कि मुझे संगीत तो बहुत ही बहुत पसंद करता हूं मैं संगीत,
0: जी
1: और ज्यादातर गाना गाने गाना
0: जी
1: तो, लेकिन मैं बेसिक ट्रेनिंग तक भी मैं नहीं ले सका। यही एक मुझे मतलब रह गया मेरे दिल में
0: जी
1: कि काश मैं ट्रेनिंग ले पाता, संगीत के ऊपर में मैं ट्रेनिंग ले पाता तो शायद आज और भी अच्छे तरीके से जो जो जिन गीतों को मैं सोचता हूँ कि ऐसा ऐसा गाऊं ऐसा वैसा गाऊं, लेकिन उस तरीके से नहीं गा पाता हूँ।
0: जी
1: लेकिन ये एक अफसोस रह गया है कि मैं संगीत की शिक्षा नहीं ले पाया, ये बहुत ही बड़ा रिग्रेट है।
0: ओहो, लेकिन मैं मानता हूं ध्रुव भाई, आपने एकलव्य बनकर बहुत मेहनत की। माना कि शास्त्रीय संगीत आप टेक्निकली नहीं सीख पाए, लेकिन आपने अपने आप को इतना डेवलप किया कि आपकी कला निखर कर आज हमारे सब लोगों के सामने है। तो आइए दोस्तों, हो जाए फिर एक बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी गायकी। ध्रुव भाई, आपको अगर किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो वो क्या होगी?
1: यही है कि मुझे अपने यही से गाता हूं, जो मैं गीत गाता हूं इसी चीज के लिए। मुझे सबसे ज्यादा प्यार इसी चीज चीज से है, संगीत से प्यार है। इसी चीज के लिए अगर अगर एक कोई थोड़ा सा भी याद कर ले तो बस मेरे लिए धन्य है, मैं
0: क्या बात
1: धन्य हो जाऊं।
0: बहुत बढ़िया, मतलब कोई भी याद करे तो ये कहे कि ध्रुव भाई बहुत अच्छा गाते हैं। अरे मैं ध्रुव भाई को जानता हूँ, वो रानीगंज में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में, एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर, ऐसा?
1: हाँ हाँ
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या खूबसूरत सी बात कही, कितने दिल के जज्बात निकाल के उन्होंने आपके सामने रख दिया। तो चलिए फिर एक खूबसूरत सा गीत भी सुनते हैं ध्रुव भाई की ही आवाज में।

0: बहुत ही प्यारी गायकी। ध्रुव भाई, आज तक आपको मिली सबसे अच्छी प्रशंसा, एप्रिसिएशन क्या मिला, कुछ याद है आपको?
1: जरूर जरूर जरूर याद है
0: जी।
1: और वो क्षण मैं शायद मैं मरते दम तक ना भूल पाऊं। जब मैं कॉलेज कर रहा था तो कॉलेज में एक फंक्शन सोलो सॉन्ग कंपटीशन रखा गया था कि मैं मतलब सोलो कोई भी सॉन्ग आप गा सके। उससे पहले मैं कभी स्टेज पर हो या कहीं पर भी मतलब पब्लिकली मैं कभी गाया नहीं था, ऐसे ही घर में गुनगुना लेता था। लेकिन उस वक्त तो मेरे घर के अड़ोस पड़ोस में दो चार दोस्त थे, वो शायद जानते थे कि मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ। तो जब सोलो सॉन्ग कंपटीशन होने लगा तो उसमें वो लोग मुझे मतलब कहने लगे कि तुम भी एक गाना अपना दे दो, तुम तो गाते हो घर में, अच्छा खासा गा लेते हो। मैंने बहुत डर के मना कर रहा था, लेकिन बाद में मेरा भी दिल में थोड़ा इच्छा था कि हाँ मैं तो गा तो लेता हूँ, लेकिन मैं सही गाता हूँ या गलत गाता हूँ मुझे भी पता नहीं था। तो मैं बोले चलो, कॉलेज फंक्शन में मैंने नाम दे दिया था। तो फिर जब कॉम्पिटिशन हुआ करीब 60-70 लड़कों का बीच में, तो मैं गाना गाया था उस टाइम।
0: जी
1: तो गाना गाने के बाद में मैं आश्चर्य रह गया कि मुझे वो फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें। तो वो जो फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद में जो खुशी आया था मुझे और लोगों ने जो तालियां बजाए थे, वो बहुत मेमोरेबल आज तक मेरे मेरे लाइफ का मेमोरेबल चीज है,
0: मोमेंट रहा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। किसी भी कलाकार का ऐसा ही होता है ध्रुव भाई, हर कलाकार एप्रिसिएशन ही चाहता है। बाकी तो बाकी बात सब ठीक है, फेम मिले, पैसा मिले, वो सब आ जाता है, लेकिन कोई आपको मोहब्बत से सुन ले, आपकी थोड़ी सी एप्रिसिएशन
1: बस बस
0: कर दे,
1: एप्रिसिएशन कर दे, बस यही
0: उस उससे ज्यादा तो कलाकार को कुछ कुछ चाहिए नहीं।
1: खुश हो
0: जाए। बहुत सही बात कही आपने, बड़ी वाह। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए एक और बहुत खूबसूरत सा गीत सुनते हैं ध्रुव भाई की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया ध्रुव भाई, मुझे अपने जीवन के किन्हीं तीन सबसे प्रभावशाली जो इम्प्रेसिव लोग हों उनके बारे में बताइए कि जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी पर असर डाला हो, मोटिवेट किया हो, प्रभावित किया हो, कोई कौन ऐसे तीन लोग रहे अभी तक?
1: ऐसे लोगों में तो एक ही लोग हैं, एक इंसान जो कहते हैं, जो एक इंसान जो मैं माय फादर मेरे पिताजी
0: जी,
1: उनका मतलब प्रभाव बहुत ही, वो जो उस टाइम आज आज मेरे फादर अभी नहीं है
0: जी
1: वो गुजर गए हैं, लेकिन उनका बहुत कुछ प्रभाव मेरे ऊपर में पड़ा। और दूसरा दूसरा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का मतलब उनका भी बहुत ये मतलब मैं मानता हूँ कि उनका एक एक एक ये याद मतलब बहुत दिल को छू जाता है
0: जी।
1: कि जैसे वो कहे एक पद कहे थे वो कि उनसे कोई पूछा था कि सर मैं दूसरों के साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, तो वो आंसर दिए थे कि आप दूसरों से जैसा चाहते हैं आप उनको उसी तरह का व्यवहार कीजिए।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत बात।
1: और तीसरा जो है लॉर्ड कृष्णा जी,
0: जी
1: वो के उनका जो कर्म कर्म के ऊपर में है, कर्म करता जाओ फल की चिंता मत करो,
0: जी
1: ये चीज बहुत ही दिल को छूता है और वास्तविक लगता है दुनिया के लिए। तो प्रभाव इन्हीं तीनों तीनों से मैं बहुत प्रभावित हूं।
0: जी बहुत बढ़िया बात कही है आपने। ये बात तो बहुत ही खूबसूरत है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। बहुत ही सुंदर बात। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत ध्रुव भाई की ही आवाज में।

0: ध्रुव भाई, इस समय आपकी जिंदगी में कोई चुनौती है और आप उसका सामना कैसे कर रहे हैं? कोई हर एक बंदे की जिंदगी में कुछ ना कुछ चुनौतियां तो चलती ही रहती हैं, तो आप कैसे उसका सामना कर रहे हैं? कुछ हमें मोटिवेट कीजिए, कुछ हमें बताइए।
1: नहीं, चुनौती तो बस यही फैमिली को लेकर
0: जी,
1: मैं छोटा सा फैमिली है
0: जी,
1: तो बस उन्हीं को लेकर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और दो बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको पढ़ाना उन्हीं के पीछे टाइम बीत जाता है, और इस संगीत के पीछे बस चुनौती यही है।
0: जी बहुत बढ़िया। लेकिन उसका सामना कैसे कर रहे हैं आप? कहां से ताकत लाते हैं, कहां से मोटिवेशन लेते हैं?
1: वो तो ताकत फैमिली से ही ताकत मिलता है मुझे।
0: जी
1: मेरी मिसेस है,
0: जी
1: मिसेस है, वो बहुत ही मतलब मुझे सपोर्ट करती है,
0: जी
1: हर बात पे सपोर्ट करती है, तो बस वहीं से
0: बहुत
1: प्रेरणा मिलता है।
0: बढ़िया बहुत खूब, बहुत खूब। फैमिली हमेशा एक सपोर्ट फंक्शन होती है। आदमी थक के हार कर घर पहुंचता है और फैमिली उसको सांत्वना देती है, मोटिवेट करती है। कहीं कई बार बहुत दुखी होकर भी इंसान आता है, तब भी सपोर्ट तो फैमिली से ही मिलता है। आफ्टर ऑल हम लोग सोशल क्रीचर्स हैं, सामाजिक प्राणी हैं। सही कहा आपने। तो चलिए दोस्तों, फिर इसी बात पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया ध्रुव भाई, बहुत ही प्यारी गायकी। अब हमारे प्रोग्राम के उस जगह पर हम आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, नए गायकों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए उनको।
1: मैसेज तो यही है, खुश रहिए, खुश रहिए। और म्यूजिक जो होता है वो सिर्फ म्यूजिक नहीं है
0: जी।
1: मैं जितना मैं ये किया हूं
0: जी,
1: इतना सालों से संगीत गाते गाते सुनते हुए महसूस किया हूं कि म्यूजिक जो है ये लैंग्वेज ऑफ गॉड है, जो भगवान जिस भाषा में हम लोग, जैसे कोई उड़िया, कोई बंगाली, कोई मराठी भाषा में हम लोग बात करते हैं, उस तरह म्यूजिक जो है ना वो गॉड का लैंग्वेज है। क्योंकि देखिए, आप दुनिया के किसी भी धर्म के ऊपर चला जाइए, संगीत जरूर होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: आराधना आराधना उनको संगीत से ही किया जाता है। तो ये जो है म्यूजिक जो है ना लैंग्वेज ऑफ गॉड है, भगवान का मतलब है। तो इसको हम लोग जितना अच्छा बना के रख सके, मेलोडियस अच्छे अच्छे गाने सुने
0: जी,
1: गाने की कोशिश करें, बस यही है संदेश।
0: आपने सही कहा, संगीत दरअसल जैसा ध्रुव भाई ने बताया, ईश्वर की, ऊपर वाले की, देवताओं की भाषा है। तो जाहिर से बात है, जितने भी हमारे टैलेंट हैं, जितने भी हमारे गायक हैं, वो दरअसल देवताओं की भाषा बोल रहे हैं। कितनी प्यारी बात कही ध्रुव भाई ने आज, बहुत मजा आ गया सुन के। ध्रुव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।
1: थैंक यू, थैंक यू, आपने भी मुझे मौका दिया आपके चैनल पर, आपके शो पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
0: थैंक यू सो मच ध्रुव भाई, अपना ख्याल रखिए।
2: अब हमको खबर थी ऐ दिल, रंगीन शहर भी होगी।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।
3: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा, देखो तुमसे अच्छा।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: ये लीजिए दोस्तों, आज के कलाकार का बिल्कुल ही नया, बिल्कुल ही मासूम, बिल्कुल ही प्यारा सा एपिसोड लेकर हम फिर से हाजिर हैं। और आज जो टैलेंट, जो गायक हमारे साथ हैं, आइए ना मिलते हैं उनसे। वो हैं तुषार सामंत भाई। बाकी तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम इन अवर प्रोग्राम। एंटायर फैमिली इज वेटिंग फॉर यू। प्लीज
1: सर, नमस्कार। आपको भी नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार।
0: बहुत खूब। बस मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी सुनने वालों के लिए, अपना परिचय दीजिए ना। आप भला कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: सर, मैं रिटायर्ड स्टाफ हूँ भारत पेट्रोलियम का। मैंने भारत पेट्रोलियम में सर्विस की 34 इयर्स। उसी के साथ एक म्यूजिकल संस्था है, रुदेश आर्ट्स नाम, उसमें भी बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता के स्वरूप में काम किया है, जो म्यूजिकल इवेंट अरेंज करती है। पार्ला में बहुत ही बड़ा नाम है रुदेश आर्ट्स करके। तो सर्विस के साथ साथ मैंने संगीत से भी जुड़ा हुआ मैंने बहुत सारा कार्य किया है। और गाने का अभी तक ये नहीं था, वो अब मैंने गाना अभी चालू किया है 2-3 साल पहले ही। लेकिन बहुत बचपन से मैं तबला सीख रहा हूँ और ये करते करते संगीत क्षेत्र से जुड़ गया हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को सुनना मिला गाना, नजदीक से उनके साथ परिचय हुआ, उनके साथ बहुत ही संगीतमय वातावरण में मैं पला बड़ा हूँ।
0: तुषार भाई, थैंक यू सो मच। मैं देख पा रहा हूँ आपके डीपी पे, मेरे ख्याल से आप आशा भोसले मैम के साथ हैं।
1: यस सर।
0: आह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, मुझे तो जलन हो गई साहब आपसे। बताओ यार दोस्तों, आपने
1: मंगेशकर
0: जी,
1: मंगेशकर परिवार से हमारा बहुत ही एक फैमिली रिलेशन रहा है इतने सालों से। ये जो रुदेश आर्ट्स संस्था है,
0: हाँ,
1: उसका नाम भी हृदयनाथ मंगेशकर के नाम से, वो रुदेश आर्ट्स ऐसे करके हुआ। और हमारे ये संस्था का औपचारिक मीन्स उद्घाटन समारोह जो बोलते हैं ना, तो आशा जी के हस्ते ही हुआ है।
0: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।
1: तो आशा जी ने हमारी ये संस्था चालू करके दी है हृदयनाथ मंगेशकर से नाम से, रुदेश ये नाम करके। और हमारे अविनाश प्रभावकर जी है जो हमारे इस ग्रुप के हेड करते हैं, मेन है। तो लता दीदी साक्षात सरस्वती देवी,
0: या
1: 40 बार हमारे फंक्शन में आ चुकी है।
0: ओ बाप रे, ओके।
1: तो उनके साथ और उनके परिवार के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल है हमारा।
0: बहुत खूबसूरत,
1: सौभाग्य है संगीत से जुड़े हुए। और कोई सर्टिफिकेट की लगती है कि कोई जरूरी ही नहीं है।
0: हाँ हाँ, अरे मतलब ही नहीं है। आशा भोसले
1: सेवा करने का जो मौका मिला है ना, और हम लोग बोलते ना कि जिंदगी में और क्या चाहिए, ये तो सबसे बहुत ही भारी चीज मिली है कि साक्षात देवी का वो मिलने का, जुड़ने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला, यही हमारा सौभाग्य है।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। मुझे तो ऐसा लगता है सारा प्रोग्राम खत्म हो गया बस यहीं पर।
1: क्या बात है, सही बात है।
0: अरे यार,
1: इसके आगे हम लोग कुछ
0: क्या बोलेंगे।
1: यस यस, बिल्कुल
0: कुछ बात करने को ही नहीं रह जाता है। अगर लता मंगेशकर मैम खड़ी हैं और आशा भोसले मैम खड़ी हैं तो बात खत्म। वाओ दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार तुषार जी का डीपी जरूर देखिए, डिस्प्ले प्रोफाइल कितना सौम्य, कितना पवित्र, देखकर ही मजा आ गया साहब। बहुत खूब, मेरा तो दिन बन गया आज, क्या बात है।
1: यस, धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: तो चलिए दोस्तों, फिर आशा ताई और लता मंगेशकर जी का आशीर्वाद मिला हुआ है जिनको, उनकी आवाज में ये गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत बढ़िया। तुषार भाई, आपने मुझे अभी अभी कहा अपने बहुत ही प्यारे से परिचय में कि आप बचपन से गाते तो नहीं थे लेकिन आप तबला बजाते थे, सही कहा ना सर? तो तबला बजाने की जो मोटिवेशन था या इंस्पिरेशन था, तबला बजाने का जो आइडिया था, वो दरअसल कहाँ से आया? किसने आपको मोटिवेट किया कि बेटा आपको तबला बजाना है, सीखो इसको? आपको
1: इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बोलता हूँ।
0: जी,
1: मेरे डैडी सर्विस करते थे, मेरी सिस्टर में तभी 8-10 साल का था और सिस्टर स्कूल में जाया करती थी दोपहर को, मेरी स्कूल सुबह रहती थी और माँ और मैं घर में दोनों ही रहते थे, लेकिन मम्मी जब भी बाहर जाती थी तो मैं घर के सारे बर्तन बाहर निकाल के उनका गमसेट बना के बिलन बिलन से जो भी बजाना वो धांगर धिंगा बोलते जैसे मराठी वो, हाँ वो घर में होता था और हमारा घर मेरे दोस्तों को लेके एक ऑर्केस्ट्रा का रूप होता था।
0: ओके।
1: और मम्मी आने के बाद बाजू वाले सब बोलते थे कि तू घर से बाहर मत निकल, हमको क्या क्या सब बर्तन की आवाज सुननी पड़ती है करके। लेकिन वो ये
0: oh my God.
1: साल था 70-72 का। पिताजी ने ये देखा और पिताजी ने मेरे को पहले तबला क्लास के लिए ये किया, और तभी वो मेरे पहले गुरु थे पंडित प्रकाश जी गोरे, जो वसंतराव देशपांडे के साथ संगत करते थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके साथ मीन्स मेरा तबला का ये प्रवास शिक्षा शुरू हो गई, और उनके साथ जाते जाते मैं वसंतराव देशपांडे, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, ये लोगों के साथ जिधर भी गुरु मेरे तबला बजाते थे तो मैं उनके साथ उनके तबले उठा के लेके जाता था और वो सब लाइव परफॉर्मेंस सुनने मिला। इतने बहुत प्रोग्राम सुने हैं मैंने, कटियार का आजाद घुसली जैसे नाटक उनको उसी समय जो बजता था तबला बजाते थे गुरुजी, तो वो 25 बार तो मैंने वो ड्रामा देखा हुआ है वसंतराव देशपांडे जी का।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या एक्साइटिंग, क्या इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर होता होगा। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, अगर कभी आपने किसी भी लाइव परफॉर्मेंस को देखा हो, सुना हो, कोई भी सिंगर हो या कोई ऑर्केस्ट्रा हो, एक अलग वाइब्स होती हैं, बिल्कुल अलग, जो कि हमारे डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड पर हो ही नहीं सकती। उस चीज को एक्सपीरियंस करना अपने आप में स्वर्ग पाने जैसा होता है दोस्तों, ट्रस्ट मी। चलिए आगे बढ़ते हुए तुषार भाई का ही प्यारा सा एक गीत सुनते हैं, फिर तुषार भाई के बारे में, उनकी एक्साइटिंग जर्नी के बारे में और जानेंगे। आइए ना।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपने तबले की बात जब कही थी, उसके बाद आपने कहा कि जाहिर से बात है लता दीदी और आशा ताई के खानदान के साथ, परिवार के साथ आपके संबंध होने के नाते संगीत में तो आप हो ही गए थे। फिर आपने कहा कि अभी बस दो एक साल पहले से आपने गायन शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, ठीक है ना। तो दो साल पहले जब आपने गाना शुरू किया तो कैसे आपके मन में आया, किसी ने आपको कहा कि यार तुषार जी अब आप शुरू कर लो गाना, या किसी ने मोटिवेट किया, किसी ने छेड़ दिया?
1: मोटिवेट किया।
0: कौन?
1: कोविड का जो सीजन चालू था 2020 का, ये 2020 में, तो बीपीसीएल के ऑफिस में हमारे एक महेंद्र कुमार करके मेरे जनरल मैनेजर थे, तो उन्होंने एक फंडा निकाला कि ओनली फ्राइडे, मीन्स फ्राइडे को फ्राइडे खाना विद गाना। तो लोग खा रहे हैं लेकिन इधर कराओ के सिंगिंग, जिसको गाना है वो इधर आके गाए, उसका गाना सुने और खाते खाते गाने का भी लुत्फ उठा, ऐसे वो सब माहौल था।
0: वाओ।
1: तो मैं हमेशा किसी को अरे अप्रिशिएट करने के लिए, अरे बढ़िया गाया, लेकिन वो सर ने मेरे को बोला तू म्यूजिक फील्ड से हो तो आपको स्टेज पे आना ही है। तो मैंने बोला मैं तबला बजा लेता हूँ, लेकिन सर एक गाना ये मेरा फील्ड नहीं है, मैंने बहुत सुना है ये सब ठीक है लेकिन नहीं। तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को ये फ्राइडे आप किसी भी हालत में स्टेज पे चाहिए, और वो जबरदस्ती उधर से मीन्स बोलते ना कि मेरा स्टेज पे एंट्री हो गई मेरी। बहुत डर के मैंने मीन्स दो दिन मैंने कराओके कभी सिंगिंग किया नहीं था, लेकिन कराओके सिंगिंग की दो दिन कस के प्रैक्टिस की मैंने, बहुत डर के मैंने स्टेज पे गया, स्टेज पे पेश भी गया गाना, और वो गाना था ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे।
0: अरे वाह।
1: ये गाना गाने के बाद लोगों ने जो मेरे को सराहा है और जो तारीफ की है मेरी, तो मेरे को लगा अरे मैं अच्छा गा लेता हूँ, क्यों नहीं, ये मेरा नया फील्ड मेरे को जो मिला है उसमें मैं थोड़ी एंट्री करके देखूं, और गाना चालू हो गया मेरा।
0: तो
1: बीपीसीएल का स्टेज और महेंद्र कुमार, उनका मैं अभी ये एसएन रेडियो को बोलते समय एक मौका लेता हूँ कि उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को जबरदस्ती स्टेज पे लेके आएगा।
0: बहुत खूब। सर ये मौका आपके पास नहीं, हमारे पास भी है, हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। अगला गाना हम उन्हीं को डेडिकेट कर रहे हैं। साहब तुषार साहब ने आपसे मोटिवेशन लिया था, आपसे आशीर्वाद लिया था, आइए ये गाना तुषार जी का हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू। यस सर।

0: बहुत खूब बहुत खूब। तो जिस वक्त आपने वैसे अभी अभी कहा कि आप को स्टेज पर उन्होंने कहा कि फ्राइडे को चाहिए, आपने करियोके की जबरदस्त प्रैक्टिस करी और आप स्टेज पर पहुंचे, थोड़ा सा तो आपने बताया, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि जब आप स्टेज पे पहुंचे तो कैसा फील किया आपने? माइक हाथ में लिया तो कैसा फील किया? म्यूजिक बजा तो कैसा फील किया? जब शुरुआत करी गाने की तो कैसा फील किया? और इसके बाद जब आप बह गए तो कैसा फील किया?
1: सही बात है, मेरे को दो दिन ऐसे लगा कि मैंने उनको बोला था कि सर ये मेरे को जमने वाला नहीं, तो सर ने बोला कि कितना भी बेसुर गाओ, कुछ भी गाओ, कितना भी बेसुर, लेकिन हमको सुनना है कि तुम कितना बेसुर गाते हो, और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा ही गाओगे। मैंने बहुत सोचा घर पे कि मेरे खुद को जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो मेरे में नहीं है, लेकिन मेरे बॉस को है। अगर बॉस मेरे लिए इतना बोल रहा है तो क्यों ना मैं मेहनत करके और वो दिखाऊं, प्रूव करूं कि जी हाँ मैं गा सकता हूँ। दो दिन मैंने कस के मेहनत की, मेहनत करने के बाद मैंने जब भी गया स्टेज पे तो भी थोड़ा सा एक डर बैक ऑफ द माइंड तो था ही, फिर भी एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए डरता नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों के साथ प्रोग्राम और स्टेज शो देखने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस मेरे में है।
0: करेक्ट,
1: कि लोगों को मिलना जुलना और स्टेज के ऊपर से सबको देखना, तो एक डर सा था कि मैं गा पाऊंगा या नहीं, लेकिन जैसे मैंने गाना शुरू किया और म्यूजिक बज गया और मेरे वो दिमाग में खाली हुआ अभी मेरे को ये स्टार्ट लेना, ये पहला है, ये मेरा ये है, और वो होने के बाद जैसे मैंने गाना चालू किया, एक अलग सा सन्नाटा, एक अलग सा माहौल वही कैंटीन में हमारा कैफेटेरिया में हो गया कि सारे लोग खाना खाते खाते हुए उनके हाथ वैसे थम गए और मेरा गाना अलग लेवल से लोग सुन रहे थे, ये मेरे को महसूस हुआ वहां पे। और गाना खत्म होने के बाद भले जो खाना हुआ था वो उधर से चिल्लाना कि बहुत बढ़िया, वंस मोर, ये करो वो करो सब, ये इतने दिन क्यों नहीं गाया, ये सब हो चुका, लेकिन तभी एक अलग सा कॉन्फिडेंस, और मैं जाके महेंद्र कुमार साहब को बोला कि ये सब गाना जो भी मैंने आज गा पाया इसका क्रेडिट ये सब आपका है।
0: ओह गॉड, ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये स्टेज का एक्सपीरियंस जो होता है ना दोस्तों, अपने मन में, अपने जहन में, अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। रिमेंबर योर स्टेज परफॉर्मेंसेस एंड देन चलिए आइए तुषार जी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं।

0: बहुत बढ़िया तुषार भाई, चलिए आपकी पसंद और आपकी गायकी के बारे में थोड़ा सा बात करते हुए, आपने कैसा फील किया स्टेज पर वो समझ में आ गया। अब जब कभी, वैसे तो 2 साल ही हुए हैं आपको गाते हुए, लेकिन हजारों लाखों गाने आपने गा लिए होंगे आई एम श्योर। तो जब आप गाना चुनते हो कि ये वाला गाना मेरे को गाना है, तो किस वजह से, व्हाट इज द रीजन यू चूज अ सॉन्ग? इट्स मेलोडी, इट्स लिरिक्स, इट्स सिंगर, इट्स एक्टर, इट्स म्यूजिक प्रोड्यूसर, किस बात पे आपको गाना पसंद आ जाता है?
1: गाना चुनते समय सबसे पहली बात, मैं मेरी आवाज की रेंज का ये गाना है, ये मेरे दायरे में है या नहीं है, ऊपर के सुर नीचे के सुर मेरे लगेंगे या नहीं लगेंगे, सुर के साथ भी लय भी संभालनी होती है। तो गाना चुनने के समय ये सब मैं सोचता हूँ, लिरिक्स क्या है, उसके शब्द का अर्थ क्या है, उसके शब्द के अर्थ के पीछे भावना क्या है। अगर शब्द शब्द ही नहीं समझे, उसके भाव ही नहीं समझे, तो वो गाना गा के कुछ फायदा ही नहीं, मीन्स वो भाव आएंगे भी नहीं वो गाने में। और मेरे को लगता है श्रोतागण कैसे है ये भी गाने चुनने से पहले, अगर कॉलेज का क्राउड रहेगा तो मेरे ये गजल और ये कोई सुनेगा नहीं, ऐसे मेरी हमेशा एक सोच रहती है। जैसे मैं कभी गजल ज्यादा में गा लेता हूँ तो घर में बोलते हैं, क्या डैडी आप बाहर जाके जो भी गाते हो क्यों रोना धोना आपको पसंद है, बाहर जा रहा अल्ला गुल्ला वैसे गाने सुन चुनो करके। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे मेरी जो गायकी मेरे मेरा जो जो बोलते ना पसंद है, जो गाना मुझे पसंद आए वही गाना मैं दिल से गा पाता हूँ। जबरदस्ती कोई बोलेगा नहीं नहीं यही गाना और ये, तो ये सब मैं सोचता हूँ
0: वैसा नहीं
1: कि गाने गाने से पहले ये सब सोचना जरूरी है।
0: श्योर श्योर, यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट ब्रदर। जाहिर से बात है कोई गाना हमारे पर्सनालिटी के साथ रिलेट ना कर रहा हो, रिजोनेट ना कर रहा हो, तो वो आपकी आवाज में वो मोहब्बत आएगी ही नहीं,
1: आएगी नहीं। बरोबर,
0: चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आइए ना एक और गीत का लुत्फ उठाएं।

0: से बात हो रही थी तुषार भाई, एंड देन हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि इनका जो इरा रहा, इनका जो लीगेसी रही, उससे हम शायद अगले 100 साल भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इतना जबरदस्त इन्होंने लीगेसी क्रिएट की है, अपने टैलेंट का, अपना जो प्रतिभा का, अपना जो एक एनवायरनमेंट फैला है, उसे अगले 100 साल भी हम निकल नहीं पाएंगे। सीखेंगे, बहुत सीखेंगे, लेकिन उनसे ऊपर नहीं।
1: इसके पीछे उनकी संगीत साधना भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो स्ट्रगल, तो स्ट्रगल सबके लिए है, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल करते करते गाना सीखना, उर्दू लैंग्वेज सीखना, उसके उच्चार के लिए भी टीचर रखना,
0: करेक्ट,
1: ये जो छोटे छोटे चीज है ना कि क्यों वो नंबर वन पे है, इसका भी संगीत साधना करते समय आपको सोचेंगे तो आपको समझता है कि क्या है, क्या क्या करना चाहिए। हम लोग बोलते कि चलो एक गाना गाया तो मेरे को बहुत आ गया, नहीं ऐसे नहीं है। ये एक सागर है, ये सागर में तुम कितना नया नया खोजते हो और क्या करते हो, ज्ञान सागर में रहना जरूरी है, साधना करनी जरूरी है।
0: That's very right. बिल्कुल सही फरमाया तुषार भाई आपने, साधना साधना साधना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस
1: प्रैक्टिस, रियाज
0: रियाज। चलिए आगे बढ़ते हुए इस गीत का लुत्फ उठाएं।

0: गाई की ही गहरी। तुषार भाई मुझे ये बताइए, आपने बताया वैसे कि आप अभी फुल टाइम, आई मीन यू आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, तो
1: सही बात है।
0: तो अपने जो आज की जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें म्यूजिक को कितना वक्त देते हो और बाकी चीजों के साथ उसको उस वक्त को कैसे तालमेल बैठाते हो? मतलब आई मीन टू से आई जस्ट विश टू लाइक टू नो योर रूटीन, हाउ मेनी आवर्स यू सिंग या कोई और एक्टिविटीज।
1: अभी क्या है ना कि गाना सुनना ये भी एक रियाज का पार्ट होता है।
0: पार्ट होता है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: या जैसे अभी मैं तबला बजा लेता हूँ तो एक डेढ़ घंटे का तबला प्रैक्टिस ये भी चालू रखी है मैंने अभी भी।
0: वेरी नाइस।
1: मैंने हाल ही 2 साल पहले ही सैक्सोफोन, मेरे को कभी से बचपन से सीखना था।
0: ओह माय गॉड,
1: ये मेरी ख्वाहिश थी। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सैक्सोफोन सीखना चालू किया। तो ठाकुर सिंह नागी करके है सैक्सोफोनिस्ट, इन्होंने लता मंगेशकर और आशा जी, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ पूरे वर्ल्ड की टूर की है सैक्सोफोन के माध्यम से।
0: वाओ।
1: तो उनसे मैं शिक्षा ले, मेरी मेरी चालू है सीखना। तो वो सैक्सोफोन की मैं प्रैक्टिस करता हूँ एक आधा घंटा एक घंटा जैसे। और मैं अभी इनके पास सीखता हूँ, मेरे गुरु है श्रीकांत जोशी करके
0: जी।
1: तो श्रीकांत जी से मैं अभी वोकल क्लासिकल सीख रहा हूँ और थोड़ा फिल्मी इंडस्ट्री ये हिंदी गाने मराठी गाने वो सीखता हूँ। लेकिन क्लासिकल मेरे को कराओ के गाने के बाद एक महसूस हो गया कि नहीं, आपको थोड़ी तो क्लासिकल की जानकारी जरूरी है। अगर नोट आपके गाने के बराबर लगते हैं या नहीं इसकी भी आपको जानकारी चाहिए तो ही आप आगे जा सकते हो। एक कह रहे हो कि खाली मैं ऐसे ही गा रहा हूं तो नहीं, आपको एक लेवल ऊपर आना है तो ये सीखना जरूरी है, गुरु होना जरूरी है। और गुरु से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने दी हुई दिशा में प्रॉपर रियाज करके आपको देना है। तो मैं ये पूरे दिन के अगर सोचो कि ये 5-6 घंटे तो मैं ये अलग अलग मीन्स इंस्ट्रूमेंट के लिए जैसे सैक्सोफोन तबला और वोकल के लिए देता हूँ, मेरा दिन अच्छा बन जाता है पूरा। एक दिन रियाज नहीं किया तो लगता है कुछ तो आज हुआ है नहीं, ये मेरा गड़बड़ है। तो ये जरूरी है कि तुम आप टाइम कैसे अलॉट करते हो और वो उसका कंटिन्यूटी बहुत ही अहम मीन्स रखती है उसको।
0: ऑलराइट, अमेजिंग। दोस्तों एक बहुत ही सेंसिटिव बात कह दी तुषार भाई ने, मेरे दिल को छू के गई है। जैसा तुषार जी ने कहा कि वो सैक्सोफोन सीख रहे हैं प्रॉपर सैक्सोफोनिस्ट से, एंड दैट टू फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड सैक्सोफोनिस्ट। मेरा भी बचपन से सैक्सोफोन सीखने का इच्छा रहा है, वो अभी भी मेरे जहन में है, मेरे चरित्र में है, मेरी पर्सनैलिटी में है। कभी ना कभी ये जरूर मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस तरह बढ़ रहा हूँ। दैट इज इन माई बकेट लिस्ट, विश लिस्ट पे
1: है। क्या बात है।
0: मेरे को सैक्सोफोन बहुत बहुत बहुत प्यारा लगता है, तो वो तो कभी मेरे को सीखना जरूर है। थैंक यू सो मच तुषार भाई, आपने बड़ी प्यारी बात कही जो मेरे को दिल को छुई है। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा मोहब्बत से भरपूर ये गीत सुनते हैं तुषार भाई का, फिर आगे बढ़।